103 MHz पर हम आकाश वाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संबत 1948 के श्रावण मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 20 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी की डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों के बाद हम पुनः अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। आइए अभी जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपे ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजीपे प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर 5वां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों के बाद स्वागत है आपका। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। नर्सरी प्रबंधन एवं प्रवर्धन पर जानकारी दे रही हैं प्रतिमा वर्मा।
3: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, फल उद्यान की सफलता नर्सरी पर आधारित है, अतः नर्सरी की भूमिका किसी भी उद्यान के संस्थापन में अहम होती है। नर्सरी में पौध उत्पादन के सही तरीके का इस्तेमाल करते हुए पौध तैयार किए जा रहे हैं या नहीं, इस बात पर ध्यान देना अति आवश्यक है। नर्सरी पौध प्रबंधन करने का विशेष क्षेत्र होता है, जिसमें विशेष रूप से देखभाल और उचित प्रबंधन में पौधे से पौध तैयार किए जाते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, फलों की नर्सरी तैयार करने के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, जैसे बीज की क्यारी, वृक्ष लगाने का क्षेत्र, रास्ते और सड़क, सिंचाई की नाली, पानी निकास नाली, सिंचाई व्यवस्था, खाद के लिए गड्ढे, पौध संरक्षण और अन्य देखभाल। बिल्कुल किसान भाइयों, फल नर्सरी स्थापित करने के लिए स्थल का चयन होना अति आवश्यक है। इसमें मुख्य रूप से भूमि के प्रकार का ध्यान देना आवश्यक है, जो उत्तम प्रकार की हो, जैसे दोमट या बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें पानी निकास की सुविधा हो और कंकरीली पथरीली ना हो। इसके साथ ही आवागमन के साधन से परिपूर्ण हो, जिससे आसानी से पौध तैयार कर किसी भी स्थान पर मांग के अनुरूप पौधा भेजा जा सके। किसान भाइयों, एक बात हमेशा ध्यान में रखें, बीज की क्यारी जो मूल वृंद के लिए उगाई जाती है, खुले स्थान में होनी चाहिए, जिससे पर्याप्त रोशनी मिल सके। इसके साथ ही क्यारी में पर्याप्त नमी और खाद तथा उर्वरक का प्रबंध भी रखना चाहिए। किसान भाइयों, कलम काटने के उपरांत पौधों को आंशिक छायादार स्थान पर ही रखें। एक फल की विभिन्न किस्मों की अलग अलग क्यारी बनाएं। क्यारी का इस प्रकार रेखांकन करें कि सभी के रास्ते मुख्य रास्ते में मिलते हों। इसके साथ ही मिट्टी, रेत एवं खाद मिलाने और भरने के अलग स्थान होने चाहिए। किसान भाइयों, नर्सरी की सिंचाई बरसात के दिनों को छोड़कर आवश्यकता के अनुसार सुबह शाम करनी चाहिए, जिससे नर्सरी में उचित नमी बनी रहे। आदर्श फल नर्सरी के लिए आवश्यक बात यह है कि पैतृक वृक्ष, जिसे कलम या शाख ली जानी हो, वह नर्सरी के अंदर हो। किसान भाई, इसके साथ ही नर्सरी में क्यारी चक्र भी अपनाया जाना चाहिए, जिससे स्वस्थ पौधे के निर्माण में सहायता मिल सके। खाद का गड्ढा एक कोने में रखें और स्वयं की खाद बनाकर सड़ी खाद का प्रयोग करना चाहिए। रोगग्रस्त पौधे से किसी भी दशा में शाख का चुनाव कभी ना करें। पौधों को समय समय पर उचित खाद और उर्वरक देते रहना चाहिए। पौधों पर समय समय पर कीटनाशक और रोगनाशक दवाओं का प्रयोग भी करते रहें। बीजों को उपचारित करने के बाद ही क्यारी में लगाएं। पानी निकास का प्रबंधन उचित रूप से करें। किसान भाइयों, नर्सरी के प्रवर्धन से तात्पर्य इस बात से है कि नए पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में बीज एवं वानस्पतिक प्रवर्धन के माध्यम से तैयार किया जा सके। जी हाँ किसान भाइयों, बीज द्वारा प्रवर्धन करने से बीजों में भिन्नता पाई जाती है, जिसे बीजू पौधे या सीडलिंग कहते हैं, तथा फलन देर से आती है। इसके साथ ही पौधों के किसी वानस्पतिक भाग जैसे तना या जड़ से जब प्रवर्धन करते हैं, तब मातृत्व पौधों में पूर्ण रूप से समानता पाई जाती है, परंतु कुछ पौधे में आसानी से वानस्पतिक प्रवर्धन

0: संभव नहीं हो पाता है। वनस्पतिक प्रबंधन को अपनाकर कम समय में मांग के अनुरूप अधिक से अधिक पौधों को तैयार किया जा सकता है। साथ ही जिस पौधों से पौधा तैयार किया जाता है उसके गुण, जैसे पौधे में समानता और फल में समानता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप अच्छी प्रजातियां के पौधे आसानी से किसी जगह पर तैयार कर लगाते हुए आसानी से उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। इसके द्वारा तैयार पौध में फलन शीघ्र प्रारंभ हो जाती है। किसान भाइयों, कलम द्वारा पौधों के प्रवर्धन की विधि एक आसान प्रक्रिया है। इसमें पौधों के वानस्पतिक भाग या तना, परिवर्तित तना और जड़ के किसी भी भाग को अलग कर पृथक रूप से भूमि या तैयार क्यारी में लगाकर उपयुक्त वातावरण देने पर पूर्ण रूप से नया पौधा विकसित हो सकता है। इस प्रक्रिया में तैयार पौध मातृ पौध के समान ही मिलते हैं। कुछ पौधों में आसानी से यह विधि अपनाई जाती है, जैसे अनार, अंजीर, अंगूर एवं नींबू वर्गीय फल। किसान भाइयों, इस प्रकार कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देकर हम फलों की नर्सरी का प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज बातें बस यही तक। दीजिए हमें अनुमति।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस गान का। आइए सुनते हैं कड़ी संख्या 219।
2: नंबर 219 219।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानी करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस कांड। समय हो चुका है चिंतन कार्यक्रम का। अहंकार पर आइए सुनते हैं चिंतन निर्मला तिवारी से।

अहंकार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में अहम अर्थात मैं से हुई है। मैं में केंद्रित होने वाला व्यक्ति अहंकार रूपी रोगों से ग्रसित हो जाता है। छोटा सा बच्चा जब वह जन्म लेता है तो उसके भीतर किसी तरह का कोई भी अहंकार नहीं होता, निश्चल होता है उसका मन। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह बड़ा होता है, उसके अंदर भी प्रतिस्पर्धा का भाव जगने लगता है, कुछ अलग करने की, दूसरों से अलग दिखने की, और धीरे धीरे उसके अंदर भी अपने भाई बहनों के प्रति प्रतिस्पर्धा के भाव आ जाते हैं, यानी उसके अंदर भी अहंकार का बीज पनपने लगता है। शुरू में तो यह भाव आवेग हमारे वश में होता है, पर समय बीतने पर यह इतना बलशाली हो जाता है कि हम उसके अधीन हो जाते हैं। हमारे सारे कार्यकलाप ही अहंकार पूर्ति से प्रेरित होने लगते हैं। अहंकार वह पात्र बन जाता है जो कभी भी भरने का नाम ही नहीं लेता। धन, पद, प्रतिष्ठा, यश पाकर भी हम हमेशा अतृप्त रह जाते हैं। जीवन उस मरुस्थल की तरह, रेगिस्तान की तरह बन जाता है जिसमें अहंकार तृप्ति की प्यास मृग तृष्णा की जैसे बन जाती है। अहंकार से मानव रोगों से ग्रसित होने लगता है। अहंकार के बलवती होने से जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण और जटिल हो जाता है। अहंकार के मद में हम और अधिक गहरे डूबते चले जाते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, ये सब लक्षण उभरने लगते हैं जो अहंकार के कारण होते हैं। अहंकार के चक्रव्यूह को तोड़ पाना आसान नहीं है। उसके लिए सबसे पहले मन में नम्रता, समर्पण और त्याग को अपनाना होगा, और जब हम इसे अपनाएंगे तभी हमारे अंदर का अहंकार मिटेगा। क्योंकि यह अहंकार हमारे मन मस्तिष्क में छुपा हुआ होता है, इसलिए हमें अपने मन मस्तिष्क को साफ रखना होगा, किसी के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं पालना होगा, तभी जाकर हमारे अंदर का अहंकार मिटेगा। अहंकार से छुटकारा पाने के लिए हम अपने इस सुंदर शरीर से, जो कि सांसारिक है, और ये पद प्रतिष्ठा जो कि क्षण भंगुर है, इससे हम बच कर रहे हैं। यानी जब हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि ये सब तो बस दिखावे के लिए ही है, तो हमारे अंदर अहंकार नहीं पनप पाएगा। अंतर मन की आत्मा से जो व्यक्ति जुड़ जाता है उसके अंदर अहंकार नहीं जम हो पाता है। अहंकार का अंधेरा अपने आप छटने लगता है यदि हम उस प्रकाश को महसूस कर लें, लोगों के प्रति ईर्ष्या को दूर कर दें, सभी को अपना समझें, तब जाकर हमारे अंदर का अहंकार मिटने लगता है। इसलिए अपने अंदर के अहंकार को मिटाने के लिए हमें समभाव की नीति अपनानी होगी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई धनी नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सभी समान हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र में, कार्य यात्रा में वो लगे हुए हैं। और जब हम ऐसा सोच पाएंगे तो हम अहंकार से रहित हो जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन कार्यक्रम। आइए, समय हो चुका है भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम आराधना का। इस कार्यक्रम में ये सुनते हैं मौसमी से भक्ति गीत।

0: भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम आराधना के तहत आज आप सुन रहे थे मौसमी को। समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में दांतों की देखभाल पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ता कर रहे हैं डॉक्टर सिबतुल्लाह रांची, भेंट करता है एस के लाल।
1: मित्रों नमस्कार। हर व्यक्ति अपने आप को खूबसूरत दिखना चाहता है, और यदि आपके दांत चमकीले हो, मोती जैसे चमक रहे हों, तो यही दांत आपके खूबसूरती को बहुत बढ़ा देता है। यदि आपके दांत चमकीले और स्वस्थ हैं तो हर व्यक्ति अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ पाता है। तो आज हम बात करेंगे कि आपके दांत कैसे स्वस्थ रहें, कैसे चमकीले रहें, और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, और खान पान में किन चीज़ों का सेवन किया जाए ताकि आपके दांत स्वस्थ रहें और आप भी स्वस्थ रहें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिबतुल्लाह। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। दांत मोती जैसे हमेशा चमकता रहे, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए?
2: सबसे पहले दांतों की देखभाल बहुत ज़रूरी है।

0: चलन शुरू होता है और उसके साथ साथ बहुत सारे बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे आज 100 में 90% लोगों के साथ जब ब्रश करेंगे तो ब्रश के साथ ब्लीडिंग होता है, तो लोग अनदेखा कर देते हैं। तो इस अनदेखे में अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपकी समस्या धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, और अगर छोड़ देंगे बढ़ते बढ़ते जो आज हम अपने लैंग्वेज में पारिया जो बोलते हैं, तो उससे ग्रसित हो जाएंगे, जहाँ पे पूरे दांत हिलने लगेंगे, फिर दांत निकालना पड़ेगा, वक्त से पहले दांत ख़त्म हो जाता है। तो खान पान पर ध्यान देना है, ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ नहीं जाना है। अगर कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं तो अच्छे से खाने के बाद कुल्ला कर लेना है। रात में अगर दूध वगैरह या फिर चॉकलेट या किसी तरह का मीठा सेवन कर रहे हैं तो खाने के बाद अच्छे से ब्रश कर लेना है कि उसका मीठापन दांत के अंदर या जो हम स्वीट्स लिए हैं को लगा ना रहे। अगर वो लगा रहता है तो आपके दांत वक्त से पहले कैविटी सड़न शुरू हो जाएगा। सड़न शुरू हो गया तो धीरे धीरे आप निगलेक्ट करते चले गए, डॉक्टर से नहीं मिले, तो वो धीरे धीरे एडवांस स्टेज में चला जाएगा। तो फिर RCT की नौबत आ जाएगी, रूट कैनाल करना होगा या तो फिर दांत निकालना होगा। अगर अर्ली स्टेज में आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं, परामर्श लेते हैं, दिखाते हैं, तो रेस्टोरेशन करके भर के बचाया जा सकता है। तो इससे सबसे पहले हुआ कि ब्रश अच्छे से करें, सुबह में भी ब्रश करें, रात में भी ब्रश करें, कुछ मीठा चीज़ खाएं तो अच्छे से कुल्ला करें। अगर आपके दांतों के अंदर को खाना फंसता है तो उसको आप फ्लॉश करके दांत को क्लीन रखें। जब ये सब चीज़ें आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, मोती जैसे चमकीले रहेंगे। अपने चेहरे को आईने में निहारते हैं, हर चीज़ को आईने में देखते हैं कि खूबसूरती कैसा है, मेरे चेहरे में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहा। इसी तरह आज हमारे मुंह के अंदर भी निहारने की ज़रूरत है, जो अंदर गाल है उसमें भी चेंजेस देखना है। अगर कुछ चेंजेस दिखता है तो डॉक्टर से इमीडिएट परामर्श लेना है। और अगर आपके दांतों में सड़न दिख रहा है, ब्लैकनेस दिख रहा है, या फिर पीलापन दिख रहा है दांतों में, टाटर जमा हुआ दिख रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करें, जो आपको एडवाइस करें आप उनसे ट्रीटमेंट लें। तो इससे हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे और सुंदर भी रहेंगे।
1: हम लोग दो टाइम ब्रश नहीं करते हैं, सुबह का ब्रश तो करते हैं लेकिन सोने के पहले बहुत लोग ब्रश नहीं करते हैं। खाया, मुँह धो लिया, कुल्ला कर लिया और सो गए, तो बहुत सारी चीज़ें अंदर ही रह जाती है।
0: अगर खाना का कोई पार्टिकल्स दांत में फंसे रह गए, या फिर हम मीठा चीज़ कुछ लिए और मीठा खाकर डायरेक्ट कुल्ला नहीं किए या ब्रश नहीं किया और डायरेक्ट सो गए, तो इससे भी दांतों को नुकसान है, क्योंकि कैविटी जो लगता है मीठापन से ज़्यादा होता है। बच्चों में भी ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चे बोतल से दूध पी रहे हैं, पीते पीते सो गए, तो उनके दांत में कैविटी अर्ली स्टेज में आ जाता है, उसको हम लोग नर्सिंग बोतल कैरीज बोलते हैं। इसी तरह बड़ों में भी आदत है, बहुत से दूध पिए, दूध पीने के बाद सो गए, कुल्ला नहीं किए, बहुत सा ऐसा मिथ भी है कि दूध पीने के बाद पानी नहीं पीना है, या ऐसा है। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो हमारे दांत वक्त से पहले ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ब्रश नहीं किए, खाने का पार्टिकल फंसा रहा, तो फिर दांतों से मसूड़ों से, मसूड़े जो अटैच है वो फिर धीरे धीरे लूज़ होता चला जाएगा, जिससे ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग होगा तो फिर पारिया का रूप लेगा। दोनों वक्त ब्रश करना बहुत ज़रूरी है।
1: कुछ चीज़ें खाते हैं तो झंझनाहट होती है, जलन होने लगता है, और कभी ठंडी चीज़ें खा लिया तो उसमें यह परेशानी आने लग जाती है, ऐसा क्यों होता है?
0: जो झंझनाहट और सिलसिलाहट की जहाँ तक बात होती है, या तो हम रॉन्ग टेक्निक से ब्रश करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रश करते हैं, हार्ड ब्रिसल वाले ब्रश करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उससे हमारे दांतों के साइड में कटना शुरू हो जाता है। जैसे पहले हम लोग देखते थे कि कुआं से लोग पानी भरते थे, कुआं के ऊपर लकड़ी का रखा रहता था और रस्सी से खींचते थे तो लकड़ी के ऊपर दाग आ जाते थे रस्सी, उसी तरह दांतों के साइड में दाग आ जाते हैं, जिससे इनामिल के लेयर हट गया, डेंटिन आ गया, तो डेंटिन सेंसिटिव होता है, जिससे ठंडे गर्म का महसूस होता है। एक ऑप्शन तो ये हुआ। दूसरा वजह यह होता है कि अगर हम कोई वैसा पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, या फिर दांत का पाउडर जो मंजन हम लोग बोलते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एब्रेसिव ज़्यादा हो, तो वो रगड़पन ज़्यादा होता है, जिससे इनामिल वहाँ भी वेयर ऑफ हो जाता है। तो वो जहाँ से इनामिल वेयर ऑफ हुआ, इनामिल हटा, सेंसिटिव हो जाता है। तो अब अगर ये चीज़ है तो आप इमिडिएटली डॉक्टर से परामर्श लें। अगर आपके इनामिल हट गए हैं तो उसके लिए टूथपेस्ट वगैरह आते हैं जो आपको रिपेयर अनप्रोटेक्ट करेंगे कि आगे हटने। अगर आप रॉन्ग टेक्निक ब्रश यूज़ कर रहे हैं, या रॉन्ग टेक्निक से यूज़ कर रहे हैं, या हार्ड ब्रिसल यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको चेंज करना है। आपको जो डायरेक्शन में यूज़ करना है, ऊपर वाले दांत के लिए ऊपर से नीचे, और नीचे वाले दांत के लिए नीचे से ऊपर, इस डायरेक्शन में आपको यूज़ करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इससे क्या होगा कि आपके दांतों को जो साइड में कटता है वो कटेगा नहीं, और सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश यूज़ करना है जिससे वो साइड में ख़राब ना हो।

0: अगर एग्रेसिव ज्यादा है तो उससे भी वेयर ऑफ होगा इनामेल, तो उससे भी बचना है।
1: तो किन किन चीजों का सेवन हम करें और कौन कौन सी बुरी आदतों से हम दूरियां बनाएं?
0: खान पान में जहां तक की बात है, जिससे बाहर की चीजें, आज हमारे
1: यहाँ फास्ट फूड का बहुत,
0: हमारे यहाँ एक फैशन हो गया फास्ट फूड। फास्ट फूड से बचना है, दांत तो हमारे खराब होंगे, दांत के साथ साथ बॉडी भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे क्षतिग्रस्त होंगे, आप पीड़ित हो जाएंगे, बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, तो वो फास्ट फूड से अवॉइड करना है। और हाइजीन खाना लेना है, जो भी हो घर का खाना लें। घर का खाना लेने से आपको पूरा प्रॉपर हाइजीन मिलेगा।
1: और कौन कौन चीजों से हम दूरियां बनाएं?
0: सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि गुटखा नहीं लेना है, पान नहीं लेना है, अगर स्मोकिंग की आदत है तो स्मोकिंग छोड़ना है, क्योंकि इससे दांत तो आपके पीले होंगे, दांत खराब होंगे, साथ साथ आपके गाल में जो मुकोसा है वो भी खराब होंगे, तो उससे लैकेन प्लेनस होगा, लीकोप्लेकिया होगा, गाल में जलन शुरू हो जाएंगे, गर्म चीज़ नहीं खा सकते, वो धीरे धीरे फिर कन्वर्ट कैंसर की तरफ जा सकता है। तो ये सब चीज़ों से बचना है। ज़्यादा मिर्च नहीं लेना है, मिर्च लेंगे उससे भी नुकसान है, तो ये सब चीज़ों से बचना है और दूसरों को भी बचाना है।
1: हमारे माता पिताओं को क्या कहेंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन होने लग गया है, लापरवाही ज़्यादा हमारे बच्चों में दिखाई पड़ने लग गया है, तो दांतों का वो ख्याल कैसे रखें, माता पिताओं को क्या संदेश देंगे?
0: बच्चे छोटे हैं तो वो ब्रश अगर नहीं कर पाते हैं, जैसे एक साल के बच्चे हैं, दो साल के बच्चे हैं, जनरली वो ब्रश नहीं करते, तो वो कॉटन के कपड़े से लेकर उनके दांतों को साफ करना है, सुबह में भी वही चीज़ करना है, रात में भी वही चीज़ करना है। और कोशिश करें जब भी बच्चा दूध पिए तो अच्छे से कॉटन के कपड़े साफ़ कर लें, कि दूध का अंश जो हम शुगर ऐड कर रहे हैं उसका अंश मुंह में ना रहे, इससे क्या है कि लॉन्ग रन चलेंगे। और अगर बड़े बच्चे हो गए हैं तो सुबह में भी उसको प्रैक्टिस कराना है, अपने उसके साथ लगे रहना है ब्रश के लिए, सुबह में भी ब्रश कराना है, रात में भी ब्रश कराना है, नहीं तो बच्चे ब्रश के साथ खेलेंगे, मुंह में डालेंगे, दो सेकंड बाद मम्मी ब्रश हो गया, तो वो चीज़ देखना है। और जहां तक खान पान की बात आई, फास्ट फूड तो ऐसे भी हानिकारक है हेल्थ के लिए।
2: दांतों की देखभाल पर अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सिबातुल्लाह रांची और इनसे बातचीत कर रहे थे इसके लाल। इसके साथ ही स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: यम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा तत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने समर्पितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्रीप्रधानः अवदत् यत् गत दश दिनेषु छात्राणां विरोध प्रदर्शनानन्तरं उत्पन्नया परिस्थित्या सः अत्यन्तं व्यथितः अभवत्। एतद् स्वस्य प्रतिष्ठायाः विषयः नास्तीति इत्यपि तेन उक्तम्। असौ नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तर स्थले विद्यमानां स्थितिं समग्र देशस्य परिस्थितिं चावलोक्य निर्णयम् अकरोत्। श्रीप्रधानः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शनाय, विश्वासाय, निरन्तरसहयोगाय च कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रसेवा तस्य जीवनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति, सहैव जीवनपर्यन्तं तस्यै समर्पितः भविष्यतीति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः केन्द्रीयमन्त्रिपरिषदः धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रं तत्क्षणप्रभावेण स्वीकृतवती। धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लादजोशी नूतनशिक्षामन्त्री भविष्यति। वर्तमानदायित्वेन सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया देशानां आधिकारिक यात्रां सम्पन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती। अस्यां यात्रायाम् अनेकानि ऐतिहासिक सोपानानि स्थापितानि, तेषु कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिक यात्रा, सहैव त्रिदशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा सम्मिलिता अस्ति। समग्र यात्रावधौ राष्ट्रपति पदासीना मुर्मुः विभिन्न देशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ताः अकरोत्। व्यापार मञ्चान् सम्बोधितवती तथा भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्। प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतत् विधेयकं सोमवासरस्य लोकसभा कार्यसूचौ समाविष्टम्। एतेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनं भविष्यति। केन्द्रीयमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतत् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् गतशुक्रवासरे केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गे, परीक्षासु च अनुचितसाधनप्रयोगप्रकरणेषु द्रुतन्यायालयानां स्थापनाय, दोषिषु च कठोरतरदण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूपविधेयकम् अनुमोदितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 स्वीय मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं 37-100 संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः, दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी, दूरदर्शनं, प्रधानमन्त्रिकार्यालयः, सूचनाप्रसारणमन्त्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सायं 4:30 दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीयमाध्यमेन 26-2000 विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। 20-20 पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन त्रिस्पर्धात्मक श्रृंखलायाः द्वितीय क्रीडायां जिम्बाब्वे दलं 90 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
2: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जाए।

जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवा जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस वर्ष नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा के कुल 10 जत्थे भेजे जाने हैं। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। भारत की युवा स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलेम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। अब उनकी नजर लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है कार्यक्रम विवरण। अब से बस कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा। शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग का समय है 7:30। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संतूर वादन पंडित शिव कुमार शर्मा से। सुबह के 8 बजे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 8:45 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कड़ी संख्या 2। सुबह के 9 बजे का समय होगा जोहार पलामू कार्यक्रम के लिए। 9:30 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्में गीत। सुबह के 10 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे। 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। 10:55 पर हमारे दिल्ली केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र की जनता से मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 11:30 पर पुनः मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे।

दिन के 1 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। दिन के 2 बजे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी समाचार, 2:15 पर हिंदी समाचार और 2:30 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। 3 बजे मुंबई केंद्र से पुनः विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। शाम 4 बजे रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से जारी होंगे। 5:05 आप सुनेंगे पुनः प्रादेशिक समाचार। 5:30 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। 5:35 पर युववाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे जो युवाओं को संबोधित होगा। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी कारगिल विजय दिवस और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कैसे करें, इस विषय पर आप सुनेंगे वार्ता मिथिलेश कुमार सिन्हा से। 6:02 पर खेतीबाड़ी कार्यक्रम होगा। 6:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम जननी, महिलाएं अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और बेटियों को दें आत्मरक्षा का ज्ञान, इस विषय पर चर्चा होगी। शाम 7 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 7:10 पर जिले में आजकल, 7:15 पर आप सुनेंगे स्वरांजलि कार्यक्रम में गुलाम अली को। 7:45 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा महुआ। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। रात्रि 8:30 गीत संगीत कार्यक्रम।

रात्रि 8:45 पर दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे। रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर दिल्ली केंद्र से ही उर्दू में समाचार। रात्रि 9:30 मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे फिल्म गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर होगी हमारी सभा की समाप्ति।

सभी बच्चों को हमारा नमस्कार, सुप्रभात। आज है संडे का दिन और बच्चों आज आप आराम से उठते हैं और उसके बाद अपनी दिनचर्या निपटाते हैं, लेकिन इन बातों के बीच आप यह भी याद किया कीजिए कि आज का दिन आपके लिए क्या है कुछ ख़ास, यानी आज के दिन का महत्व क्या है, यह हर सुबह आपको याद करना चाहिए। तो आज है बच्चों 26 जुलाई, कारगिल युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यह लड़ाई लद्दाख के कारगिल में बहुत ऊंचे पहाड़ों पर लड़ी गई थी। बच्चों, भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए सभी चोटियों पर फिर से तिरंगा फहराया और जीत हासिल की। इसलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आपको मालूम होगा बच्चों, आपको यह याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कारगिल युद्ध की मुख्य बातें क्या थी। बच्चों, इस पर भी आइए कुछ बातें करते हैं। इसकी शुरुआत की बात करें तो पाकिस्तान के सैनिकों ने चुपके से आकर कारगिल के ऊंचे पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था। बात ऑपरेशन विजय की करें तो भारतीय सेना और वायुसेना ने घुसपैठियों को भगाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। कठिन परिस्थितियां भी आईं सैनिकों के जीवन में। हमारे सैनिकों को बर्फीली और बहुत ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर लड़ना पड़ा था। वीर नायकों की बात के बगैर कारगिल युद्ध की चर्चा अधूरी रह जाएगी। बच्चों, विक्रम बत्रा और मनोज कुमार पांडे जैसे कई वीर सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। बात करें ऑपरेशन विजय की तो भारतीय सेना और वायुसेना ने घुसपैठियों को भगाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया था। आपके लिए इस युद्ध से सीख क्या है बच्चों, इसकी बात करते हैं। आपको प्रेरणा मिलती है साहस की, यानी मुश्किल काम से कभी नहीं डरना चाहिए। आपको प्रेरणा मिलती है देश प्रेम की, देश की सुरक्षा सबसे पहले है। आपको प्रेरणा मिलती है एकता की, मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो कारगिल युद्ध से यह सारी बातें हैं जो आप सीख सकते हैं। 1999 भारतीय इतिहास का वह गौरवशाली दिन है जब भारतीय सेना ने कारगिल की दुर्गम चोटियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ कर तिरंगा फहराया और अदम्य साहस का परिचय दिया। वो तारीख थी 26 जुलाई, यानी आज ही की तारीख। इस ऐतिहासिक विजय की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने, वीर सैनिकों का सम्मान करने और युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपके स्कूलों में भी कार्यक्रम हुए होंगे या होंगे। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित होती हैं। विद्यार्थियों को कारगिल युद्ध का इतिहास, भारतीय सेना के शौर्य और शहीदों के बलिदान के बारे में बताया जाता है। इस मौके पर निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता, कविता, देशभक्ति गीत, स्लोगन लेखन, क्विज, पोस्टर मेकिंग, चित्रकला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे आयोजन होते हैं। कई संस्थान एनसीसी कैडेट्स की परेड, शपथ ग्रहण समारोह और शहीदों को श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन करते हैं। तो बच्चों, अगर आपके स्कूल में भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो आप उसमें अवश्य हिस्सा लें और कारगिल विजय दिवस को आप भी अपने तरीके से मनाएं और देश के प्रति अपना प्रेम बनाए रखें।

बच्चों, कारगिल युद्ध के कुछ नायकों की आइए हम बात करते हैं। 1999 के सबसे प्रमुख और सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित हीरो कैप्टन बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार मुख्य हीरो हैं इस युद्ध के, और जिन्होंने अपने दम्य साहस से दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। परमवीर चक्र विजेता मुख्य नायक कैप्टन विक्रम बत्रा PVC पॉइंट 5140 और पॉइंट 4875 को फतह करने वाले, जिनका प्रसिद्ध नारा ये दिल मांगे मोर भारतीय सेना के जोश का प्रतीक बना। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की बात करें तो बटालियन सेक्टर में खालूबार चोटी पर दुश्मनों के कई बंकर तबाह करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव PVC टाइगर हिल की लगभग सीधी चट्टान पर कई गोलियां लगने के बावजूद असाधारण साहस इन्होंने दिखाया। राइफलमैन संजय कुमार की बात करें तो पॉइंट 4875 के मशकोस सेक्टर में आमने सामने की लड़ाई में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। अन्य प्रसिद्ध वीर योद्धा थे नायक दिगेंद्र कुमार MBC तोलोलिंग की चोटी पर अकेले 18 पाकिस्तानी बंकरों को तबाह किया और महावीर चक्र से सम्मानित हुए। कैप्टन हनीफुद्दीन तुतुक सेक्टर की पहाड़ियों पर अदम्य वीरता दिखाते हुए शहीद हुए। मेजर DP सिंह कारगिल युद्ध में गंभीर रूप से घायल योद्धा, जो भारत के पहले ब्लेड रनर बने। तो इन सारे योद्धाओं को हमारा नमन है, हमारा सलाम है, प्रणाम है। और कार्यक्रम के अंत में आपको यह गीत ये सुनवाते हैं।

इस गीत के साथ ही बच्चों आज के बाल सभा कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। आप सभी बच्चों को हमारा नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे बच्चों को संबोधित कार्यक्रम बाल सभा। समय हो चुका है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग का। इस कार्यक्रम में ये सुनते हैं संतूर वादन राग सोहनी में पंडित शिव कुमार शर्मा से।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आपने सुना संतूर वादन राग सोहनी में पंडित शिव कुमार शर्मा से। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली के अंदर लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। रांची केंद्र से 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे। आइए अभी समाचारों के लिए दिल्ली चलते हैं।

0: मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। इसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
3: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर

0: असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPay के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPay ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPay ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जाँच 2 महीने में होगी पूरी। वहीं नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: Ruqayya Salim 3-0 in the girls' singles final of the World Junior Championships at Niagara-on-the-Lake, Canada. The 18-year-old Indian prodigy overcame second seed Salim 11-3, 11-7, 11-9 to win the gold medal. This is a significant achievement as a player from Egypt had won this title for 16 consecutive years and Anahat broke that monopoly without dropping a game. Union Minister Mansukh Mandaviya congratulated Anahat Singh after winning the title. In a social media post, Mr. Mandaviya said, "History has been made and it is a proud moment for every Indian." Indian sub-junior men's team thrashed arch rivals Pakistan 3-1 in the gold medal match of the FIH Youth Hockey F5S Asian Championship. Goals from Romit Pal, Captain Ketan Kushwaha and Shahrukh Ali crowned India as the Asian champions. With this victory, the Indian men's team also finished at the top of the elite pool table. By virtue of reaching the final, both India and Pakistan have qualified for the inaugural FIH Youth Hockey 5S World Cup. In the women's competition, the Indian sub-junior women's team bagged the silver medal after a hard-fought contest in their final against China, ensuring both Indian contingents return home with medals. The India Meteorological Department IMD has issued a red color warning for extremely heavy rainfall over Madhya Maharashtra and Odisha today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sara Mujtaba.
1: Thank you, Sunil. The resignation of Dharmendra Pradhan is the top news in most days. Pradhan steps down, Gen Z steps up, headlines Hindustan Times. With the withdrawal of the protest by CJP, all 18 Delhi metro stations in Delhi, which had remained shut due to security reasons, have reopened, reports the Asian Age. To curb unfair practices in examinations, the centre is tabling its amended bill in the Lok Sabha tomorrow, which proposes 2-month deadline for a probe, writes the Tribune. A day after the US announced permanent tariffs on imports from 60 trading partners, the center said that about 45% of India's exports to US remain outside the purview of the new 10% tariff, reports The Hindu. A US federal appeals court has rejected President Trump's bid to revive the H-1B visa fee of $100,000 for highly skilled foreign workers, reports Hindustan Times. Flood situation in Assam remained grim even as water level has started receding, reports The Pioneer. India's ancient Buddhist site of Sarnath has been inscribed on the UNESCO World Heritage List after a 28-year wait, reports The Statesman. The Times of India has quoted an international study that reveals that over half of world's migratory bird species are on a decline. And finally, in a significant technological step forward for the tea plantation sector and in a first, a tea company in Munnar is using drone-based transport to move freshly harvested green leaves to weighing centres and processing factories in Kerala, writes The Hindu. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Diwas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. And Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championships. Women's team bagged silver medal. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. Adab.
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। संदेश के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
5: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
6: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
5: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को करेंगे संबोधित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, 15 मिनट में जरूरतमंदों तक एम्बुलेंस पहुंचाने का है लक्ष्य, राज्य में 108 सेवा को अत्याधुनिक बनाने की तैयारी। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता मामले में सीआईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा, दो और आरोपी गिरफ्तार। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा समेत राज्य के कई जिलों में 28 जुलाई तक के लिए जारी की भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और महिला एशियन हॉकी के सेमीफाइनल में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, भारत ने कजाकिस्तान को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवा प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वे नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पिछले 12 सालों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
7: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
3: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार ने 108 एम्बुलेंस सेवा को पूरी तरह आधुनिक और मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। पुरानी एम्बुलेंस को हटाकर अत्याधुनिक एम्बुलेंस लाई जाएंगी। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी आपात स्थिति में 15 मिनट के भीतर एम्बुलेंस मरीज तक पहुंच जाए। व्यापारियों का प्रतिनिधि संस्था फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। संस्था के महासचिव रोहित अग्रवाल ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में मीडिया से बातचीत की।
8: पूर्ण सपोर्ट मिला हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का, हमारी सब कमेटी चेयरमैन का, पूर्व अध्यक्ष गंजू है, सबका भरपूर सपोर्ट मिला और ये साल वाकई में मील का पत्थर साबित होगा। हमने जो भी ये साल में किया वी वर जस्ट द फेस, इसका परिणाम विगत सालों से जो भी प्रयास होते आ रहे हैं हर कमेटी उससे ही हुआ है। दावोस का एक यात्रा हुई, बहुत बड़ी उपलब्धि थी झारखंड सरकार के लिए भी और चेंबर के लिए।
9: झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से लाकर सीआईडी की टीम ने मुख्यालय में पूछताछ की। सभी से अलग अलग और फिर आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। इधर सीआईडी ने आयोग के पूर्व परीक्षा उप नियंत्रक सरोजनी एनी तिर्की के आप्त सचिव सोनू कुमार और अभय तिवारी के सहयोगी अरविंद मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आकाशवाणी के ताजा

0: इन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि कुछ फर्जी वेबसाइटें एयर सुविधा के नाम पर यात्रियों को गुमराह कर रही हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति में मंत्रालय ने बताया कि एयर सुविधा की सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क हैं और स्व घोषणा पत्र जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। लद्दाख में 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन कल शाम द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। रांची जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 99.95% मतदाताओं के बीच एनुमरेशन फॉर्म का वितरण पूरा हो गया। अब तक 86.69% फॉर्म का डिजिटाइजेशन और 80.21% फॉर्म का सत्यापन किया जा चुका है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शेष मतदाताओं से जल्द फॉर्म जमा करने और अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। जामताड़ा जिले के उपायुक्त आलोक कुमार ने नाला प्रखंड में करीब 95 एकड़ रकवा में फैले काजू बागान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि काजू की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
1: एक एकड़ में आप प्लांटेशन हो रहा है तो उसमें किसानों को कितना पैसा मिल रहा है, तभी हम लोग वो अवेयरनेस किसानों तक पहुंचा पाएंगे और उनको मोटिवेट कर पाएंगे कि अगर वो काजू का प्लांटेशन करते हैं, क्लाइमेट है सुटेबल है, तो हम लोग और किसानों को इंकरेज कर सकते हैं। साथ साथ कि काजू प्रोसेसिंग प्लांट के लिए प्रपोजल है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है, यहाँ के लोगों को उससे रोजगार भी मिलेगा।
0: हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने केरेडारी प्रखंड स्थित एनटीपीसी की कोल परियोजना चट्टी परियातू का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने विस्थापित परिवारों की समस्याओं को जाना। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन जल्द इन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेगा।
2: विस्थापित परिवारों को देखने ही नहीं आए बल्कि समग्रता में उनका विस्थापितों को व्यवस्थित तरीके से पुनर्वासित किया जा सके, उनके जीवन की गुणवत्ता को कैसे बेटर किया जा सके और कैसे सारे रिसोर्सेज उन तक पहुंचाया जा सके, इसी कंटेक्स्ट जिला प्रशासन जिले भर की पूरी टीम आज ये देखने के लिए आई सभी पहलुओं पर उन विस्थापित परिवारों के लिए एक समेकित तरीके से एक कार्य योजना बनाई जाए।
0: मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा समेत आसपास के जिलों में 28 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने के कारण राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ बारिश होगी। मस्कट में चल रही महिला एशियन हॉकी 5S चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने कजाकिस्तान को 8-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। झारखंड की खिलाड़ियों संदीपा कुमारी और श्रुति कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1-1 गोल जबकि पुष्पा मांझी ने हैट्रिक लगाकर जीत में अहम भूमिका निभाई। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकतर प्रमुख अखबारों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन खत्म होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की हेडलाइन है, धर्मेंद्र अब शिक्षा के प्रधान नहीं, सीजेपी का आंदोलन खत्म। हिंदुस्तान ने लिखा है, केंद्र सरकार ने सीजेपी की सभी 3 मांगे मानी, जंतर मंतर पर देर रात तक जश्न मनाते रहे प्रदर्शनकारी। दैनिक जागरण की लीड है, जेपीएससी के गिरफ्तार आरोपियों से सीआईडी ने पूछे सवाल, काली सूची में डाली गई कंपनियों को परीक्षा लेने का जिम्मा कैसे मिला। दैनिक भास्कर लिखता है, चक्रधरपुर रेल मंडल में भ्रष्टाचार पर सीबीआई की कार्रवाई, रेलवे के इंजीनियर 4 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में

देशवासियों को करेंगे संबोधित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, 15 मिनट में जरूरतमंदों तक एम्बुलेंस पहुंचाने का है लक्ष्य। राज्य में 108 सेवा को अत्याधुनिक बनाने की तैयारी। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता मामले में सीआईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा, दो और आरोपी गिरफ्तार। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा समेत राज्य के कई जिलों में 28 जुलाई तक के लिए जारी की भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और महिला एशियन हॉकी के सेमीफाइनल में झारखंड की खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, भारत ने कजाकिस्तान को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: मीडियम में 546.45 मीटर यानी।
1: समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कड़ी संख्या 2।
2: We bring you a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science.

0: Science and Environment, and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
1: Community, एक community जब कोई problem से जूझते हैं, ये हो सके कि एक खराब air quality हो, या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो court नहीं जा पाता है. Court final stage पे आता है, and court इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि court पे एक चीज मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारा देश में, that is justice. अब environment दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पे प्रेशर आते जा रहे हैं, उस पे जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं. अब एक कोई गाँव के एक कम्युनिटी उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं. एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है, वी गेट इट इन सुपर मार्केट. तो ये जो ग्रास रूट कम्युनिटी है, लीगल रेमिडीज की जरूरत उनसे सबसे ज़्यादा है. हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इशूज़ के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पर बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे हैं, वेटलैंड से लेके, जंगल से लेके, कोस्टल एरिया से लेके, सारे कुछ चीज़ों पे एक रेमिडीज मिलने का ऑप्शन, एक एवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है. पर जो सबसे इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज को कैसे कम्युनिटी क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते. हर प्रॉब्लम के लिए उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए किस किस इशूज पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो इसके चलते मैं तीन चीज़ों का बात करूंगा. एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक सीआरजेड नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे. ईस्टर्न इंडिया पे, बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे सीआरजेड एक केस कैसे एनजीटी का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे. एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसा बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ भी है. तो पहले हम शुरू करते हैं ईआई नोटिफिकेशन के बारे में. ईआई नोटिफिकेशन पे जो है इट्स बेस्ड ऑन अ इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज इज वाइडली डिस्कस्ड इन आवर कोर्ट, जो हमारा कोर्ट पे भी डिस्कस किया गया है, दैट इज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. So there is a proverb called precaution is like, you know, it's better than cure. Prevention is better than cure. So that's the idea that we should take some precaution before we are coming up with some activity which is impacting the environment. For example, if we are coming up with an industry which is taking such and such groundwater, such and such cutting such that amount of forest, what will be the impact of that project on the local people, local environment, that need to be assessed before the project is constructed. This is the provision which is this precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consultation.
0: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: Now, as a group of organized, a community, how they can participate in that area? So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is in the our law gives that and gives the provision that this consultation when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो local news media हो उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो national media हो सारे उसका जो local language है उस पर वो project के बारे में बात करके ये एक announcement होना है एंड उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी जो इम्पैक्टेड कम्युनिटी है प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली है उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारा एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीका से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसका क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज़ लीगली किया गया उसके बाद ये चीज़ जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करते हैं उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए उनका जो इश्यूज है उन पर बात करने के लिए उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक स्कोप हमें देता है। एक केस एक दिन हमारा उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैंग्रोव एक जंगल का मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहा है तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है उनको उतना रेमेडीज नहीं मिले तो उनको कोर्ट के पास जाना है तो हम लोग उनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकड़ सब एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है वहाँ पे मैंग्रोव काटा जा रहा है एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पर वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है उससे हम लोग देखे कि उसका क्या परिवर्तन पहले क्या वहाँ पे मैंग्रोव हुआ करता था उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैंग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैंग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लिटिगेशन बनाए उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाय कोर्ट जिस पे बस 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है एनवायरमेंटल is we read in class 8 book that environmental is everything around us it impacts most the public everyone and what is needed is that when we talk about environmental justice we should talk about strengthening the ground where the public is actually staying certainly rules and regulations are made in the top tier but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial so that the every regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the high house in Delhi so that's how we can achieve environmental justice when it's top down rather than it's a bottoms up approach it should be there
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ने क्या लिए? 2018 में परिवेश पोर्टल Ministry of Environment ने introduce किया है NIC के साथ, जिसमें एक comprehensive legal window, single window दिया गया है for addressing the applications. कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है, इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनकैप जो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी सिटीज़ के लिए एनकैप का प्रोविजन बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है जो कि आप सारे ही जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी और क्लियरेंसेस दे दी, उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना। उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी सिक्स मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट। उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं, स्टेट लेवल पे सीआ करती है एंड सीपीसीबी भी, एसपीसीबी भी करते हैं। अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वायलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रेस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना। एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉब्लम सेटल नहीं हुआ तो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है। अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से, कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60। सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसीबी है, एसपीसीबी है, सीआ को या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी लिख सकते हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment, and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की कड़ी संख्या 2। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आइए पेश है आपके लिए कार्यक्रम जोहार पलामू।
3: जोहार पलामू।

जोहार पलामू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सभी को हमारा नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। तो इस सुविचार के बाद मौसम अपडेट आपके लिए। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश होगी और साथ ही थंडरिंग की भी आशंका है। वज्रपात की भी संभावना जताई जा रही है। कल यानी कि 27 जुलाई को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो आप इस मौसम में अपना ख्याल रखें। घर से बाहर जब भी निकलें तो साथ में आपके रेनकोट या छतरी होनी चाहिए, और अगर आप भींग जाते हैं तो घर वापस लौटते ही तुरंत अपने कपड़े बदलें, बालों को ठीक से पोछें और साफ़ सफाई बरतें, यानी पैर हाथ को फिर से एक बार धो लें और सूखे तौलिए से उसे सुखा कर, और उसके बाद ही आप घर के अंदर रहें। और साथ ही अगर आपके बाल भींग जाते हैं, आपका बदन भींगा रहता है, तो ऐसे में अदरक वाली चाय आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, और आप उसे पीते हैं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही और भी आप नेचुरल जो काढ़े आते हैं, तुलसी पत्ता, गिलोय वगैरह का भी इस्तेमाल अगर इस मौसम में करते हैं तो आप काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। और मौसम की जानकारी के बाद, सुझाव के बाद आपको सुनवाते हैं एक गीत।

इस खूबसूरत गीत के बाद आपको लेकर चलते हैं खबरों की दुनिया में। 28 तक पूरी हो श्रावण मेला की तैयारियां, यह कहना है सुदिव्य घोष का। मेले के दौरान वीआईपी दर्शन रहेगा बंद, श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा पर विशेष जोर। नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक शनिवार को देवघर परिसदन के सभागार में हुई। इस दौरान देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भूमानिया एवं दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने एक एक कर विभागवार मेला क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा और नए तकनीकों के उपयोग से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी पीपीटी के माध्यम से दिया। बैठक के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि 30 जुलाई से 28 अगस्त तक राजकीय श्रावणी मेला की तिथि निर्धारित है। ऐसे में संपूर्ण मेला क्षेत्र में जाने वाली तैयारियों एवं श्रद्धालुओं की तमाम सुविधाएं और व्यवस्था 28 जुलाई तक हर हाल में दुरुस्त कर ली जाए। व्यवस्था ऐसी हो कि बाहर से आने वाले श्रद्धालु सुलभ व सुरक्षित जलार्पण के साथ एक अच्छी अनुभूति के साथ लौटें। उन्होंने कहा कि राजकीय श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर वीआईपी दर्शन को पूर्ण रूप से बंद रखा जाए ताकि मेला के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। घुरती रथ यात्रा के साथ जगन्नाथ महोत्सव का श्रद्धापूर्वक समापन। मौसी बाड़ी से लौटे भगवान जगन्नाथ, जय घोष से गूंजा मंदिर परिसर। श्रद्धालुओं ने की सुख समृद्धि और राज्य में शांति एवं खुशहाली की कामना। राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में शनिवार को भगवान श्री जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और वाहन सुभद्रा मौसी बाड़ी से शनिवार को अपने धाम पहुंचे। इसी के साथ ही रथ यात्रा महोत्सव का समापन बेहद श्रद्धा भक्ति और उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। 9 दिनों तक मौसी बाड़ी में प्रवास के बाद शनिवार को मुख्य पुजारी रामेश्वर पाढ़ी और सुधांशुनाथ सहदेव ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा सम्पन्न कराई। पूजा के बाद भगवान को रथ पर विराजमान कराया गया। जय जगन्नाथ के जय घोष के नारे लगाए गए। इसके बाद श्रद्धालुओं ने रथ को खींचते हुए भगवान को उनके धाम जगन्नाथपुर मंदिर तक पहुंचाया। उपायुक्त ने एकलव्य विद्यालय की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। छात्रावास, खेल मैदान और भोजन व्यवस्था का किया निरीक्षण। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने शनिवार को मनातू स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर शैक्षणिक, खेलकूद एवं छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में आयोजित इंटर हाउस स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग ले रही छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। खो खो प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उपायुक्त ने खेल भावना, अनुशासन और नियमित अभ्यास के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने छात्रावास में मेस का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने तथा स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने फुटबॉल मैदान को व्यवस्थित रूप से विकसित कराने का अनुरोध किया, जिस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय भवन के कुछ हिस्सों में छत से पानी रिसने की समस्या भी सामने आई। उपायुक्त ने संबंधित एजेंसियों में अधिकारियों को जल्द ही मरम्मत कार्य कराने तथा भवन की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद उपायुक्त सर्वतंत्र से प्रभावित एक परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर हर संभव प्रशासनिक सहयोग का भरोसा दिलाया तथा परिवार की एक बच्ची को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर सहायक समाहर्ता मेहता, अंचलाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। पलामू के ग्रामीण विकास को प्राथमिकता मिलेगी, यह कहना है रमा खलखो का। महिला कांग्रेस नेताओं ने उठाया सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे। पलामू जिला महिला कांग्रेस की नेत्री सुनीता देवी ने रांची में झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व महापौर रमा खलखो से शिष्टाचार मुलाकात कर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पलामू के कई गाँवों में अब भी सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार नहीं हो पाया है। राज्य सरकार से इन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पहल करने का आग्रह किया ताकि ग्रामीणों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर खलखो ने कहा कि पलामू का समग्र विकास उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों और मंत्रियों के साथ समन्वय स्थापित कर पहल की जाएगी।
एस आई आर अभियान में बड़ी उपलब्धि, सभी 52 मतदान केंद्रों का 100% डिजिटाइजेशन पूरा हुआ, निर्धारित समय से पहले लक्ष्य हासिल, वीडियो ने टीम की सराहना की। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण एस आई आर अभियान के तहत केतार प्रखंड ने सभी 52 मतदान केंद्रों का 100% डिजिटाइजेशन निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा करने पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि यह सफलता पूरी टीम की मेहनत, समर्पण और समन्वय का परिणाम है। वीडियो प्रशांत कुमार ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी, सुदृढ़ एवं त्रुटि रहित बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। 58 विद्यालयों में SMC पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत खरौंदी प्रखंड के 58 सरकारी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नई व्यवस्था के अनुसार समिति का कार्यकाल अब 2 साल का होगा। शनिवार को 3 विद्यालयों में चुनाव प्रस्तावित था। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मझिगावां में मोहब्बत हुसैन अध्यक्ष तथा ललिता देवी उपाध्यक्ष चुनी गई। वहीं कोस्टल बार विद्यालय में दामोदर सिंह अध्यक्ष और कलावती देवी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई। NPS गोबरदाहा में पर्याप्त अभिभावक उपस्थित नहीं होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया। BPO ने बताया कि सभी 58 विद्यालयों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पारदर्शी तरीके से समिति का गठन किया जाएगा। इन खबरों के बाद आइए आपको लेकर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में।

पलटते हैं इतिहास के पन्ने। इतिहास के पन्नों में क्या कुछ है खास 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1999 में इसी दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक पूरा कर कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर तिरंगा फहराया और घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। 1876 में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई को हुई थी। 1965 में मालदीव ब्रिटेन के नियंत्रण से आज़ाद हुआ था। तारीख थी 26 जुलाई। 2005 में मुंबई में भारी बारिश के दौरान एक ही दिन में रिकॉर्ड 944 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी 26 जुलाई के दिन। 1951 में आज की तारीख को नीदरलैंड ने जर्मनी के साथ युद्ध खत्म किया था। 1956 में मिस्र ने स्वेज नहर पर कब्जा किया था आज की तारीख को। सन 2005 में नासा शटल डिस्कवरी का प्रक्षेपण आज की तारीख को किया गया था। 1997 में श्रीलंका ने क्रिकेट एशिया कप आज की तारीख को जीता था। तो यह थी आज के इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातें। आज है 26 जुलाई और इस जानकारी के बाद आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सावन का महीना आने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं दोस्तों, लेकिन बरसात का महीना तो है ही, बरसात का मौसम तो है ही, जिसका आप आनंद उठा रहे हैं कुछ दिनों से। बरसात के मौसम में सेहतमंद रहना भी एक चुनौती है। इसके लिए हमेशा साफ और उबला हुआ पानी पिएं, बाहर का खुला या स्ट्रीट फूड खाने से बचें और व्यक्तिगत स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। अगर बरसात के पानी से आप भीग गए हैं, पहले तो भीगने से बचें, और अगर भीग गए हैं तो तुरंत नहाकर खुद को सूखा रखें। खान पान में भी आपको सावधानी रखनी है, हमेशा ताज़ा और घर का बना गर्म खाना खाएं। पानी को अच्छी तरह उबाल कर और छान कर पिएं। कटे हुए फल और बाहर मिलने वाले जूस से दूर रहें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तुलसी, अदरक और काली मिर्च की चाय या काढ़ा पिएं। साफ सफाई और अपना बचाव कैसे करें यह भी आपको मालूम होना चाहिए। कुछ भी खाने के पहले और बाहर से आने के बाद साबुन से अपने हाथों को धोएं। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें ताकि मच्छर पैदा ना हो। त्वचा को फंगल संक्रमण से बचाने के लिए पैरों और शरीर को हमेशा सूखा रखें। नमी से बचने के लिए हवादार सूती कपड़े पहनें। अगर इन चीज़ों को आप अपने जीवन में शामिल करते हैं, यानी ये सब सावधानियां बरतते हैं, एहतियात बरतते हैं, तो बरसात के मौसम का आप भरपूर आनंद उठा पाएंगे। इसके बावजूद भी अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपकी सेहत ख़राब हो जाती है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। किसी भी नीम हकीम या झोला छाप के चक्कर में बिल्कुल न पड़ें और अपना इलाज स्वयं करने की भी चेष्टा ना करें। थोड़ा बहुत काढ़ा वगैरह आप ले सकते हैं, गर्म उबला हुआ पानी आप ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से घर पे ही इलाज करने से बचें और अपने नज़दीकी चिकित्सा केंद्र में आप जाएं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनके द्वारा बताई गई चीज़ों पर अमल करें और दवाइयों का समय पर सेवन करते रहें। इन तमाम सावधानियों से आप अगर रहेंगे तो आप बरसात का आनंद उठा पाएंगे और आने वाले सावन के महीने का भी आप लुत्फ उठा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के जोहार पलामू कार्यक्रम से हमें अनुमति दें। नमस्कार, जोहार।
1: जोहार पलामू।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू, प्रस्तुति स्वर शर्मिला वर्मा का, संयोजन एवं प्रस्तुति प्रशांत गौरव की। और अब इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए कुछ फिल्मी गीतों का लुत्फ उठाते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म पहचान से, आवाज़ मुकेश की।

यह बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे जीने की राह फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आइए सुनवाते हैं आपको सिकंदर आजम फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में।

प्रेम पुजारी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ में। आइए सुनते हैं कर्मा फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में।

इस खूबसूरत गीत के साथ ही आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हम समाचारों के लिए चलेंगे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आइए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।

0: छोड़ो।
1: सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद

0: प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वे नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। इस बीच दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुल गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया कि सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी करेगा। समग्र राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफल और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत के ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। भारत के युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी बन गई हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held the third round of discussion with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
3: जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। कंसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम।
2: On the 5-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. CJP's chief spokesperson Saurav Das announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. Union Minister Prahlad Joshi will be the new education minister following the resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi has been assigned the charge of the Ministry of

0: Education, in addition to his existing portfolio. Mr. Joshi is currently serving as the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Talking to media after the announcement, Mr. Joshi said he will try his level best to meet the expectations from him.
1: Thank Honorable Prime Minister for giving such a huge responsibility, and with a great trust he has assigned this responsibility to me. I can only say at this moment I will perform and I will try to come to his expectation in this particular department. With full strength I will try to work with all humility and honesty.
0: President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Dharmendra Pradhan from the Union Council of Ministers with immediate effect. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honour the bravery of Indian soldiers who had sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. Yemen's Iran-backed Houthi rebels has said that they launched missiles and drone attack on Saudi Arabia in response to Saudi airstrikes on the strategic Red Sea port city of Hodeidah, marking a fresh threat over the security of key shipping routes. Houthi military spokesperson Brigadier General Yahya Sari said the attack targeted Aramco facilities in the Red Sea cities of Yanbu and Jizan. Meanwhile, Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi called for diplomacy and dialogue to resolve the Yemen conflict, urging all sides to avoid further military confrontation in remarks published by Iran's state-run newspaper. IMD has issued a red color warning for extremely heavy rainfall over Madhya Maharashtra and Odisha today. IMD has forecast heavy to very heavy rainfall conditions over Chhattisgarh, Gujarat, Konkan and Goa till tomorrow. In Delhi, prediction is of cloudy sky with a spell of very light to light rainfall during the day. And in squash, top seed Anahat Singh has scripted history by becoming the first Indian to clinch the World Junior Championships. Anahat defeated Egypt's Rukhaya Saleem 3-0 in the girls' singles final of the World Junior Championships at Niagara-on-the-Lake, Canada. And that is the end of this news bulletin.
2: एक संगीतकार बनने के लिए उसको इन चीजों का अनुभव होना जरूरी है तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं बेसिकली डांस मास्टर भी रहा और मैं डांस करता भी था किया भी है मैंने गोविंदा जी के साथ एक फिल्म मेरी आई थी अनाड़ी नंबर वन जिसमें मैंने गोविंदा जी के साथ काम किया जबकि गोविंदा जी स्टार है
3: जी।
2: और सुपर स्टार के अलावा उनके सामने डांस करना इतना मामूली बात नहीं थी फिर भी सरोज जी ने उन्होंने निभाया और वो गाना मेरा काफी लोगों को पसंद आया आज भी लोग देखते हैं
3: बिल्कुल
2: तो नृत्य की एक रहा और उससे मुझे कंपोजिशन करने में बहुत मतलब आसानी रही क्योंकि देखिए जब मैं कोई गाना कंपोज करता था मैं और समीर जी जब बैठते थे क्योंकि समीर जी भी कथक डांस सीखे हुए हैं
3: अच्छा
2: और उन्होंने भी बाकायदा गणेश जी हमारे हुए हैं गणेश मास्टर जी से उन्होंने डांस की तालीम ली क्योंकि अब हम भले ही हमारे भाई साहब से हमने सीखा मगर जब तक बाहर का कोई गुरु आप अगर अपना नहीं लेते हैं जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होती क्योंकि घर वाला ही होता है वो और बाहर वाला जब आता है तो वो एक गुरु की नजर से आता है
3: जी।
2: तो हम लोगों ने वैसे तालीम ली और उसके अलावा मैं बता दूं कि आप अगर हमारे कुछ गाने देखेंगे तो कोरस प्रधान गाना होता है कोरस आपको जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं अभी तक शायद भी मुझे नहीं लगता कि किसी संगीतकार ने किया हो जैसे कि मिसाल पे जैसे मेरा एक गाना जो हिट हुआ था पहला गाना हम लोगों का जैसे चला उससे पहले जुल्म की हुकूमत आ गई थी,
3: उसमें
2: भी जैसे जो हिट हुआ था, जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा तक दिन आगे दिन दिन दिन ना दिन तक, अब ये दिन तक दिन दिन एक गाने का पार्ट ही है। अब जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा टनारंग टनारंग टन टन, ऐसे भी कर सकते थे, मगर ताक दिन दिन आने से उसके एक अंदर एक ब्लाइंड हो गया। ऐसे ही एक गाना हमारा और चला था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले ओले, तो इसमें ओले ओले एक पंचलाइन बने। फिर हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर जोर शोर अर अर अर ओरे, तो इस तरीके से जो कोरस पार्ट होता है हम लोगों का ये एक गाने की शक्ल में ही होता है। ये हमारे दिग्गज जितने भी बड़े जो गुणीजन जिनको मैं स्कूल मानता हूँ, मेरी नजर में जैसे नौशाद साहब, खयाम साहब, मदन मोहन जी, शंकर जय किशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी, खेमचंद प्रकाश जी, मेरे पिताजी, या जयदेव जी, मदन मोहन जी, श्री रामचंद्र जी, वसंत देसाई जी, अपना ये जयदेव जी, सलील चौधरी जी, मैं इनको स्कूल मानता हूँ। क्योंकि ये स्कूल इसलिए मानता हूँ, खयाम साहब, इन्होंने जो काम किया है, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन जी, इनका काम देखेंगे तो एक एक लाइब्रेरी नजर आएगी आपको। जब आप लक्ष्मीकांत जी की तरफ जाते हैं तो वो एक अलग स्कूल है, शंकर जय किशन जी एक अलग स्कूल है, नौशाद साहब एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक अलग स्कूल है, ओपी नैयर साहब एक अलग स्कूल है, कल्याण जी अलग स्कूल है, एच डी बर्मन जी एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक, तो ये मेरे लिए एक स्कूल है।
3: बिल्कुल,
2: तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती थी। जब हम संगीतकार बने तो संगीतकार बनने के साथ साथ हमने इनको भी फॉलो किया, इनको भी सुना। मेरा ये आपके प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग ये सुन रहे हैं
3: जी,
2: और जिनको फिल्म लाइन में आके अगर संगीतकार बनना है तो वो बनने से पहले अपने गुणीजनों को सुनो।
3: बिल्कुल,
2: कि हमारे पहले क्या म्यूजिक दिया लोगों ने। देखिए आज का साउंड जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, क्योंकि टेक्नो साउंड भी जरूरी है, क्योंकि समय समय पर संगीत बदलता है, वो अपना चोला चेंज करता है, मगर मेलोडी जो है, जो हमारी संस्कृति है,
3: वो वही,
2: जो हमारी रागे हैं, जो हमारा फोक है, जो हमारा कल्चर है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो आजकल संगीत के अंदर नहीं मिलता आप लोगों को। तो हम लोगों ने जो मेरी 90 के दशक तक हम लोगों ने जितनों ने भी काम किया, वो राइटिंग वाइज, कंपोजिशन वाइज, मेलोडी वाइज, हम लोगों ने वो चीज छोड़ी नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर हमको कोई सपोर्ट मिला 90 के दशक में, तो मैं इसकी सारी क्रेडिट, बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी जगह है, चाहे वो यशराज हो, गुड्डू धनवा जी हो, कुकू कोहली जी हो, दीपक सरीन जी हो, नरेश मल्होत्रा जी हो, के रविशंकर जी हो, राहुल गुप्ता जी हो, और भी कई लोग हैं जी, मगर इनमें एक शख्सियत ऐसी थी जिनका नाम है गुलशन कुमार जी।
3: जी,
2: गुलशन कुमार जी के आने से म्यूजिक में एक अलग
3: क्रांति आ गई,
2: क्रांति आई, और एक ऐसा बहाव आया कि जिस वक्त आप समझ लीजिए कि 90 के दशक के हम जो म्यूजिक डायरेक्टर थे या हम लोगों ने जो काम किया वो आज भी सुना जाता है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे कि जब तक हम लोगों ने काम किया तो कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा को और हमारे कल्चर को हम लोग संभाल के रख सके।
3: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दिलीप सेन साहब, जैसा कि बात चल रही थी कि आपका जो घराना है शास्त्रीय संगीत का घराना है, और आप लोगों ने विधिवत शिक्षा ली एक डांसर के रूप में और संगीत के रूप में, पहली फिल्म आपको कैसे मिली जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और किस तरह से 90 के दौर में अपना पहला ब्रेक पाने का जो अनुभव था वो कैसा था, किस तरह से
2: देखिए फिल्म, मैं बता दूं आपको, जब डांस मास्टर था तो थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका।
3: हाँ हाँ बिल्कुल।
2: डांस मास्टर 70 के दशक में क्या था कि एक पैसा, दो पैसा, तीन पैसा चलता था।
3: हाँ।
2: और बसों की टिकट होती थी 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा अंधेरी अगर आना हो तो बोरीवली से। तो हम लोग क्या करते थे कि डांस मास्टर के नाते कि यार ये 5 पैसा या 10 पैसा बचाना है, तो हम 2 स्टॉप पैदल चल लेते थे।
3: हाँ।
2: या कभी 3 स्टॉप पैदल चल लेते थे कि यार ये 10 पैसा 5 पैसा बच जाए। तो वो सब समय देखा हुआ था, तो जहन में एक, जब मैं सुजानगढ़ से मुंबई आया
3: जी,
2: तो फिल्मों में एक्टर बनने आया था, तो शक्ल तो हीरो जैसी थी नहीं कि हीरो बन जाऊं, और इतने कोई पढ़े लिखे भी हम नहीं थे कि हम कोई करेक्टर रोल में या निकल जाए। तो पिताजी ने मुझे दूसरी लाइन में पहले ट्राई किया कि मैं ये कर लूं या वो कर लूं, बाद में उन्होंने देखा कि ये कहीं नहीं जमेगा, तो मेरे बड़े भाई थे मदन सेन जी, उनके साथ ऐसे मुझे असिस्टेंट के बतौर रखा लिया कि भाई तू भाई के साथ रहे। तो उन्होंने एक स्कूल खोली, तो वो स्कूल खोलना, उसमें जो बच्चे आते थे उनको अटेंड लेना, उनको देखना,

0: तो देखते देखते तीन तीन चार साल में मैं इस लायक हो गया कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूं।
1: अच्छा
0: तो वो जो चीजें थी, तो आगे बढ़ने के लिए एक था कि यार, मतलब उस जमाने में आप यकीन मानिएगा, जैसे 5 रुपया मेरे पास थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बैंक में खाता खोला, तो मेरे एक सहकारी बैंक थी, तो उस बैंक में मैंने 5 रुपया का खाता खोल लिया। अब 5 रुपये के खाते के लिए वो चेक लगता था, फोटो लगती थी कि जब आप चेक
1: जी,
0: लेने जाएंगे
1: जी,
0: या
1: जी,
0: पैसे
1: बिल्कुल
0: दो के 2 रुपया या 1 रुपया या 8 आना लेना है,
1: बिल्कुल
0: तो बैंक में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से फोटो दिखानी पड़ती थी। तो एक बहुत लिमिटेड बजट होता था और बड़ा आदमी बनना था। तो मैं अक्सर, मेरे जो पार्टनर समीर सेन जी हैं, ये परकशन में नंबर वन है, इंडिया के एक माने हुए परकशन हैं, जो कि रिदम में मतलब अभी भी कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, चाहे ढोलक, तबला, कोंगो, बोंगो, तुम्बा, ये जो वो प्ले करते हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि उनके बराबरी में कोई ऐसा म्यूजिशियन हो।
1: जी
0: वो इसलिए नहीं कि मेरा भतीजा है,
1: नहीं नहीं जो
0: क्योंकि जो
1: है।
0: उनकी अपनी मेहनत थी, लगन थी, बड़े भाई साहब ने उनको उस तरीके से तैयार किया था, उनको तालमनी टाइटल भी मिला हुआ है। मैं उनसे अक्सर बोलता था कि यार बड़ा आदमी बनना है यार, तो बोले क्या बड़ा आदमी कैसे बनोगे चाचा, तुम डांस मास्टर हो, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या बनना चाहते? तो मैं बोले यार अपन संगीतकार बन जाए।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: तो 80 के दशक में संगीतकार बनना इट इज नॉट जोक। उसने बोला यार मेरी अच्छी खासी दुकान चल रही है म्यूजिशियन में, मैं दिन में दो दो तीन तीन टेक बजा रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। उस वक्त 150, 200, 300 रुपया म्यूजिशियन को एक गाने का मिलता था, वो तीन चार गाने बजाए तो 1000 रुपया रोज मिल
1: कमाई
0: जाता था।
1: जी।
0: बोले ये खामों का म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, लोग बुलाना भूल जाएंगे। अरे मैं बोला कोशिश तो करके देख, तो वो माने नहीं। तो उस दौर में क्या हुआ कि मैं रहता था महाकाली में, शमशाद खान इकबाल खान के यहाँ, तो वो एक फिल्म बना रहे थे प्यारी भाभी। तो एक उम्मीद थी कि यार ये फिल्मी प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं पहली मरतबा उनके यहाँ लग गया कि चलो यार इन्हीं के यहाँ रहता हूँ, थोड़ा माहौल भी मिलता था। वहां असद भोपाली साहब आते थे
1: अच्छा गीतकार।
0: गीतकार, तो असद भोपाली साहब जब मुझे देखते थे, वो कोई लाइन लिखते थे तो मैं उस पर कोई ऐसी डमी धुन बना देता था। तो मुझे हर बार शाम के वक्त जो बैठक होती थी इन लोगों की, बड़े लोगों की, हम तो खैर बच्चे ही थे उस वक्त, तो उस बैठक में मेरे को मौका मिलता था उनको धुन बना के सुनाने का। कभी कभी वो दिन में मुझे बोलते थे यार तेरे में जम्स है, तू म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, तेरे पिताजी वाली बातें हैं तेरे में, क्योंकि मेरे वालिद साहब के काफी नजदीक में थे वो।
1: जी
0: तो मैं असद भोपाली साहब को बोला मैं चाचा कौन, मुझे कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा। उन्होंने एक दिन एक सीटिंग रख दी, बोले काम कर 2 दिन बाद मैं तेरे को एक जगह लेके जाऊंगा, मुझे बताया नहीं कहाँ ले जाएंगे। मैंने जाके समीर जी को बोला, समीर सेन जी को, मैं बोला बेटा ऐसा ऐसा है, समीर यार एक जगह सीटिंग है, अपने को फिल्म मिल सकती है। तो वो हंसने लगा, भाई साहब हंसने लगे, बोला तुमको कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा यार, कौन इतना ऐसा बड़ा आदमी आ गया जो तुमको लेगा। मैं बोला जाके आने में क्या बुराई है, बोले जाओ। तो हम गए साहब, हम लोगों को सोचा कि शायद ये तो म्यूजिशियन है, कोई इनका बड़ा आदमी आएगा तो सुनाएगा। तो हम लोग 10-11 बजे गए, तो 3-4 बजे तक कोई हमारी से सुनवाई नहीं। तो असद भोपाली साहब ने जगदीप साहब को बोला यार जगदीप तुम आ जा गाने सुन ले। तो बोले इनका कौन सुनाने वाला कौन है इनमें, बोले यही बच्चे, बोले ये बच्चे सुनाएंगे, ये तो किसी एंगल से ही लग रही थे मुझे डॉक्टर, वाकई में नहीं लग रहे थे। अब इस एंगल में तो कोई शक्ल तो थी नहीं हमारी,
1: बिल्कुल।
0: और दुबले पतले से थे हम। तो खैर उन्होंने जब सुना, सुनने के बाद में आप यकीन मानिए हम लोगों ने 4, 4:30 बजे शुरू किया, रात के 12-1 बज गए। 12-1 बजे के बाद में उन्होंने कहा कि भाई देखो गाने तो तुम्हारे काफी अच्छे लगे हमको, हम खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि इसमें से कौन सा ओके करें कौन सा नहीं करें, आप सुबह आ जाइए, आप हमारी फिल्म कर रहे हैं। तो मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हम सुबह पहुंचे, उस वक्त मैं जगदीप साहब एक फिल्म कर रहे थे मोहब्बत, जिसमें अनिल कपूर, विजेता पंडित और जगदीप साहब थे।
1: जी
0: तो वो शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैं घर पहुंचा, बोला भैया तुम लेट हो गए हो, मैं तो निकल रहा हूँ, बच्चे लोग हैं तुम अंदर चले जाओ। तो हम अंदर गए तो एक छोटा सा लेटर था, वो साइन करवाया, हमको एक छोटा सा एक लिफाफा दिया। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं बोला
1: जी
0: भाई पिक्चर मिल गई। तो
1: जी
0: आप यकीन मानिए कि वो खुशी खुशी हम खुश हो गए,
1: वो फिल्म सुरमा भोपाली
0: सुरमा
1: थी।
0: भोपाली। मगर इस बात के लिए मैं एक चीज के लिए क्रेडिट देना चाहूंगा जगदीप साहब को, उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि एक सिचुएशन पे एक ही मुखड़े की कितनी धुन बन सकती है। तो ये स्टाइल उन्होंने सिखाया मुझे, तो मैं उनके यहां सीखता गया। उन्हीं के यहां मैंने एडिटिंग सीखी, उन्हीं के यहां मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सीखा, फोली क्या होता है, जो इफेक्ट वगैरह होते हैं फिल्म के, यानी टोटल मेकिंग जो होती है फिल्म की, वो 5 साल में मैंने जगदीप साहब के यहां सीखी, जो मुझे बाद में इतना बेनिफिट की वो चीज कि आज जब मुझे, मतलब जब मैं सक्सेस हुआ, तो मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं जगदीप साहब का भी हाथ है।
1: जी
0: जैसे गुलशन जी को हम मानते हैं,
1: जी जी
0: मगर कंपोजिशन में बनाने में जगदीप साहब का हाथ रहा। तो आज अगर एक सिचुएशन आती है, तो जैसे एक एग्जांपल अगर आप बुरा ना माने तो सुनाना चाहूंगा,
1: बिल्कुल।
0: हमने ये दिल लगी के सारे गाने कंपोज कर लिए थे।
1: हाँ
0: तो यश जी ने कहा कि मुझे तानसेन बोल देते,
1: जी
0: बोले तानसेन मेरा ये जो लड़का है ये करोड़पति घर का है मगर प्ले बॉय है। तो प्ले बॉय मतलब मैंने, वो क्या होता है, बोले बिगड़ा हुआ। तो मैंने समीर राइटर जो हमारे अनजान है, मैं बोला यार बिगड़ा हुआ लड़का

0: करोड़पति का क्या अलग होता है, या वो झोंपड़पट्टी का अलग होता है क्या, ये बिगड़ा हुआ क्या कर। बोला ये भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला गरीब वाला। बोला ये झोंपड़पट्टी वाला भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला यार धुन क्या बनेगी, तो हमने इसकी जगह धुन बनाई एक, पहले प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू कू आई लव यू तू नाक धुन तू धुन तू नाक धुन तुम।
1: बिल्कुल
0: फिर उसके बाद में एक धुन इसी सिचुएशन पे बनाई, वो ये दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो। फिर इसी सिचुएशन पे तीसरा गाना हमने बनाया अपना, ये जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मगर हम अक्सर ये दो धुनें यश जी को सुनाते थे, ये गाना सुनाते ही नहीं थे। तो इसका ये रहा कि ये हमको 2-3 महीने हो गए अब ये गाना, बाकी गाने सब कंपोज हो गए। यश जी का क्या सिस्टम था कि सारे गाने कंपोज करवा लेते थे, और सारे गानों की राइटिंग और धुन और म्यूजिक तक फाइनल करके फिर रिकॉर्डिंग में जाते थे। ऐसे ही हमने आईना की थी, तो सेकंड पिक्चर के लिए भी सारे गाने कंपोज हो चुके थे, खाली ये एक बचा था। तो ये हम सुनाते नहीं थे, क्योंकि इसका जो वर्ड था जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, मैं बोला कहीं यश जी ये नहीं पूछ ले यार ये
1: ये
0: ओले ओले
1: ओले
0: क्या
1: ओले
0: है,
1: क्या है,
0: तो फिर क्या जवाब दूंगा।
1: जैसे इलू इलू क्या है, ये
0: हाँ
1: प्रश्न उठा
0: नहीं,
1: था।
0: ओले तो देखिए ओले मराठी में ओले बोलते हैं गीलेपन को,
1: अच्छा
0: और वैसे ओले जो गिरते हैं।
1: इस पर मैं बात करूंगी आपसे, क्योंकि ये गीत कैसे रचा गया था। पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं, आप बताइए और थोड़ा गा के सुनाइए। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप, अपना
0: मैं
1: ही?
0: आपको एक बात बताऊं कि मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं इनको, अपना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को।
1: अच्छा
0: इनका एक गाना मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, वो इसलिए पसंद है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, ये जो अंदाज था उनका ये कमाल था
1: तो ये गीत सुन लें।
0: जी।
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: बात चल रही थी दिलीप सेन साहब की गाना कैसे बनते हैं। आपने कहा कि आशा भोसले की आवाज में आपने पहला गीत ये रिकॉर्ड किया था जिसका जिक्र, तो उनके साथ आशा ताई के साथ काम करने का ये जो नया नया अनुभव था जब आप बिल्कुल नए थे, कैसा रहा?
1: मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि मंगेशकर परिवार जो है, मेरे परिवार से वाबस्ता तो था ही, क्योंकि पिताजी को जानते थे, फिर बड़े भाई साहब को जानते थे,
0: जी
1: तो वो एक रिस्पेक्ट, वो प्यार तो था उनके दिल में। मगर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तो जब उनके साथ बैठने से पता चला। पर आशा जी ने जब ये गाना सुना तो नुशा साहब आए हुए थे, तो गाने सुनने के बाद में समीर उनके साथ काम करता था पहले, अब मुझे देख के खुश भी हुई कि ये डरा डरा साहब बोल डर नहीं, अच्छा कर रहा है, तुम बहुत अच्छा करता है। नुशा साहब को बोला कि नुशा साहब ये गाना उल्टा लग रहा है, तो फिर समीर जी को बुलाया उसने, आशा जी ने बोला समीर इधर आ, ये गाना क्रॉस से आता है तो उल्टा हो जाता है। समीर ने जब देखा बादल सताए हम लोग गाना लगा, तो मेरे को समीर बोलता है यार गाना तो उल्टा हो गया। तो मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी थे मेरे साथ, तो भाई साहब बोले भाई तू गाना बनाया, तेरे को बनाते वक्त ध्यान नहीं था, अब इसको सम में कैसे लाएगा। मैं बोला भाई साहब ये 8 मात्रा का नहीं है, 4 मात्रा का है। बोले 4 मात्रा कैसे? मैं बोला लेजिम ठेका है, दिन ताक दे दिन आग दिन ताक दिन ताक दिन ताक दिन, तो 4 बीट का गाना है।
0: अच्छा,
1: ये जो लेजिम एक आते हैं हमारे मराठी में, आपने देखा होगा बच्चों को सिखाया जाता है, तो मैं बोला उस ठेके पे बना हुआ गाना है
0: जी,
1: ये 4 बीट का ही है, तो आप सम 4 बीट में लोगे तो ये परफेक्ट आएगा, आप 8 मात्रा में गिनोगे तो उल्टा हो जाएगा।
0: हाँ।
1: तो इस तरीके से वो रहा। तो आशा जी इस बात को नोट करती रही और उनको लगा, उन्होंने
0: कि एक नई बात है,
1: नहीं नई बात के अलावा उन्होंने समीर को बोला कि यार लगता है तेरे चाचा में कुछ बात है। तो ये उन लोगों के आशीर्वाद और दुआ रही। और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक सपना होता है, बाकियों की बात नहीं कहूंगा मैं अपनी करूं, कि जिन्होंने मंगेशकर परिवार के साथ काम किया, जैसे लता जी के साथ आशा जी के साथ काम करना एक एक ड्रीम होता है, और वो ईश्वर ने यशराज फिल्म में मेरा कंप्लीट किया
0: जी।
1: कि दोनों बहनों के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया
0: जी,
1: आईना और ये दिल लगे में
0: जी। तो आप कितने भाग्यशाली रहे दिलीप सेन साहब कि एक शुरुआत में ही आपको यश जैसा बड़ा बैनर मिला, यश चोपड़ा जी का, और आईना और ये दिल्लगी जैसी फिल्में मिली, आशा जी और लता जी के साथ गाने का
1: मौका मिला
0: बहुत बड़ी बात थी आपके लिए।
1: बहुत बड़ी नहीं, ड्रीम था, सपना था।
0: मतलब पूरा हो गया इतनी जल्दी, जो उम्मीद भी नहीं होती। तो कैसा लगा होगा, आपकी मनस्थिति क्या रही होगी, और लता जी के साथ काम करने का भी कोई अनुभव हमसे साझा कीजिए आप।
1: देखिए दीदी के साथ तो पहला तो मैं ये कहूं कि दीदी की एक आदत थी कि वो बहुत सॉफ्ट बोलती थी।
0: अच्छा।
1: बात करने से पहले चश्मे को थोड़ा नाक पे लेती थी।
0: अच्छा।
1: फिर ऊपर करके कैसा बरा ठीक है, इतना सॉफ्ट बोलती थी
0: जी।
1: तो पहला गाना जब मैंने उनके साथ किया था गोरिया रे गोरिया रे, तो क्योंकि डरा हुआ था तो एकदम खुल के बैठ भी नहीं सकता था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा तक दिन आगे दिन दिन तीन ना, उन्होंने वैसे ही गा दिया
0: जी।

0: अच्छा, मुझसे इन लोगों ने कहा था, क्योंकि जब डबिंग हो रही थी तो दीदी अकेली थी जब उनकी डबिंग के वक्त, क्योंकि उस वक्त ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मुझे ये कहा गया था कि बार बार टॉक बैक से इनको बोला नहीं जाता था।
1: अच्छा,
0: दीदी से अगर कुछ बात करनी हो तो आपको कट करके फिर उनके रूम में,
1: जाके ही।
0: जहाँ पे सिंगिंग रूम है वहाँ जाके बोलना पड़ता था। तो मुझसे कहा गया था बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुपचाप बैठे रहो, गाना होने दो। गाना पूरा हो गया तो मैं ऐसे रहा नहीं गया, फिर मैं उठ के गया, दीदी को हाथ वाथ जोड़े। तो दीदी ने मेरी तरफ देखा मुस्कुराते हुए, पूछा कैसा, ठीक हो गया? बोला दीदी गाना तो बहुत अच्छा हो गया, मगर एक जगह रह गई। फिर वो जरा क्वेश्चन मार्क से मेरी तरफ देखी, बोले मेरे से जगह रह गई? क्या रहा, जगह कैसे रह गई, कोई सुर कम लगा? मैं बोला नहीं, सुर कम नहीं लगा, वो मींड रह गई। बोले कैसे? बोला आपने गाया सजना वे मेरे नींद के ले जा, ताक दिन आगे दिन। बोला हाँ ऐसे ही तो गाया है। मैं बोला यहाँ ये एक बार मेरा रह गया, तू कैसे चाहता था? मैं बोले सजना वे मेरे नींद के ले जा ताक, तो मैं बोला ये ले जा
1: यार
0: ताक। अच्छा, हाँ ठीक है मैं गाती हूँ। मैं बोला नहीं, अब तो मेरे को गुस्सा करेंगे, रहने दीजिए, हो गया, नहीं तो पूरा गाना गाना पड़ेगा। हाँ बोले मैं गाऊंगी ना। मतलब इतनी बड़ी स्टार सिंगर,
1: नम्रता, इतनी
0: नम्रता के
1: विनम्रता।
0: अलावा उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं नया कल का
1: नहीं।
0: लौंडा हूं, जबकि उन्होंने मेरे पिताजी, भाई साहब और उनके अलावा दिग्गजों के साथ काम किया हुआ।
1: लेकिन एक महान
0: मगर
1: कलाकार।
0: उन्होंने ये देखा कि ये बच्चे ने काम किया है और ये जगह उसने सही बनाई है, तो मुझे इसको डोमिनेट नहीं करना है। उन्होंने सीधा प्रेम जी को बोला, टैगोर को बोला आप ये दोबारा करो, मैं गाऊंगी। तो गाया और वो गाना कमाल हुआ।
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो ये दोनों बहनों में ये बहुत खास बात थी कि इतने प्यार से। और एक किस्सा आपको और सुनाना चाहता हूँ दीदी का। हम जब सेकंड पिक्चर कर रहे थे ये दिल
1: ये
0: लगी,
1: दिल लगी।
0: तो उसमें एक गाने के लिए आई थी वो, गोरी कलाई कलाई में कंगना है कंगना ने लिया तेरा नाम हो सजना।
1: वाह, बहुत सुंदर।
0: तो दीदी को 12 बजे का टाइम हमने दिया था, तो हमारे पास पुरानी गाड़ी थी फिएट, तो हमको 12 बजे के बजाय 12:15 तक हम लोग पहुंचे। मैंने जाते ही दीदी के पैर छुए, माफी वाफी मांगी, तो फिर बैठी हुई गाना सुन रही थी। बोला नहीं, ठीक है, दूर रहते हो ना, कोई बात नहीं, मैं गाना सुन लिया है, बोल कैसे क्या करना है। मैं बोला ऐसा ऐसा है, गाना हो गया। मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ 3 लाइन है आपकी। तो मेरी तरफ देखी और बोली क्यों, मैं अच्छा नहीं गाती क्या, गाने में 3 लाइन ही मेरी रखी है। मैं बोला नहीं दीदी, वो गाना ही ऐसा है। कैसा है? तो गाना 3 सिंगरों का था।

0: से दिल लगी, सुना उन्होंने बोला इस तरीके से। तो गाना ये भी हो गया। मैं बोला दीदी खाना आ रहा गहलोत से। बोला दीदी एक गाने में सिर्फ बातचीत करनी है। बोला क्यों, तूने धुन नहीं बनाई? मैं बोला नहीं, आपका एक गाना था ना वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, अच्छा तो हम चलते हैं।
1: हाँ
0: तो बोले क्या तूने वो चोरी किया है धुन? मैं बोला नहीं चोरी नहीं की है, मेरा गाना सुन लीजिए आप वो कैसा है। मैं बोला नाम क्या है प्यार का मारा, घर का पता दो, दिल
1: दिल
0: है
1: है
0: तुम्हारा,
1: तुम्हारा।
0: क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है प्यार का मारा। ये भी सुना उन्होंने, सुनते बोला ठीक है अच्छा है, नया स्टाइल है, गाती हूँ। ये भी गा दिया उन्होंने। तब तक खाने में थोड़ा और लेट
1: टाइम
0: हो रहा
1: लग
0: था।
1: गया। हाँ
0: मैं बोला दीदी अब खाना आने ही वाला है, एक काम कीजिए एक गाना सिर्फ आप सुन लीजिए, गाएंगे नहीं।
1: हाँ
0: बोला क्यों, तुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं? मैं बोला दीदी बहुत है, ये मेरे दिल के करीब है।
1: जी
0: बोला अच्छा। तो अक्सर मैं क्या करता हूँ, जब कोई गाना है, उस दौर में जब ये ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मैं अपनी वॉइस में गा के रख देता था कि अगर मैं थोड़ा लेट हूँ तो सिंगर वो गाना सुन के लिख भी लेता था और धुन भी याद हो जाती थी। तो मैंने मैंने बोला एक रफ गाया है मैंने, सुन लीजिए आप। तो गाना इस तरीके से था।

0: दो मिनट तो मेरी तरफ देखी, फिर मुस्कुराई, लाचा
1: अच्छा
0: लिखा मुझे। लिखने के बाद में उन्होंने दमन सूद साहब से बोला कि सूद देख ले, अगर मेरी वॉइस क्रैकनिंग होती है तो एक ट्राई करके देखते हैं। मैं बोला रहने दीजिए दीदी, क्योंकि अब आप भी थक गई होंगी 3 घंटा। बोले नहीं, ट्राई करते, नहीं हुआ तो फिर बाद में देखेंगे। अब उन्होंने वन टेक में ही गाना परफेक्ट गा दिया,
1: क्या बात
0: गाना हो गया। उसके बाद में जब तक खाना आ गया था तो यश जी भी आ गए थे। तो
1: जी।
0: यश जी बोला, यार मैं तो एक गाने के हिसाब से पेमेंट आया, तुमने तो चारों कर दिए। अरे ये जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ
1: जी
0: कि दीदी ने, लता दीदी ने एक ही स्टूडियो में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर का, एक ही फिल्म का,
1: चार
0: एक ही
1: गाने,
0: समय में 4 गाने गाए हूं।
1: क्या
0: ये मेरे
1: बात
0: लिए
1: है,
0: बहुत
1: ये
0: नसीब
1: क्रेडिट आपको गया
0: जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात रही। और
1: जी
0: मैं समझ रहा हूं शायद दुनिया में ये पहला ऐसा मौका रहा होगा दीदी के लिए।
1: जी

0: फिर खाना खाते खाते मैंने दीदी से पूछा, मैं ये बात आपके रेडियो के माध्यम से पब्लिक तक जो सिंगर बनना चाहते हैं उनको कहना चाहूंगा कि देखिए सिंगर ऐसा ही बड़ा नहीं बनता है
1: जी।
0: सिंगर के कुछ नियम होते हैं जो कि हर आज नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जब दीदी से मैंने ये बात कही कि दीदी आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से हर बार बोलती थी, क्यों, उनकी एक आदत थी, जैसे मैंने गाना गाया गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जाता, फिर बोलती थी एक बार और, ऐसे करके 5-6 बार सुनती थी।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा दीदी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से बोलती थी कि एक बार और एक बार और? तो हंसने लगी, बोले दिलीप मैं गाना तो सुनते ही मुझे याद हो जाता है।
1: अच्छा।
0: मगर मैं गाना बार बार इसलिए सुनती हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर जब गाना बनाता है उस वक्त वो अलग शक्ल में होता है, फिर उस पर वो गाना लिखता है तो वो अलग शक्ल बन जाती है, फिर वो गाना डायरेक्टर तक जाता है तो उसकी और शक्ल अलग हो जाती है, फिर वो प्रोड्यूसर सुनता है तो और शक्ल हो जाती है, फिर म्यूजिशियन के पास आते आते और अलग हो जाता है, और जब सारे म्यूजिशियन मिक्स होकर करते हैं तो वो परफेक्ट एक सॉन्ग बनता है। तो म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर वो पूरा गाना वार्म अप हो जाता है। तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर के एक्सप्रेशन नोट करती हूँ कि वो गाते वक्त उसके चेहरे के हाव भाव क्या हो रहे हैं,
1: क्या बात है,
0: और कौन से शब्द पे वो सांस ले रहा है, कौन से शब्द पे उसके चेहरे के क्या हाव भाव चेंज हो रहे हैं, तो मैं वो ऑब्जर्व करके फिर अपनी फील देती हूँ। और ये आज के सिंगर को हमेशा होना चाहिए कि आप जब गाना आते हैं किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का, चाहे वो नया म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे पुराना हो या आपके बराबर ही हम दोस्त भी हो, आप पहले गाने को सुने, उसकी सिचुएशन सुने, प्लस उसके एक्सप्रेशन के अलावा, क्योंकि जो शब्द आप गाओगे वही एक्सप्रेशन देगा आपका हीरो
1: बिल्कुल
0: या हीरोइन
1: बिल्कुल।
0: तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि भाई मैं जिस तरीके से गाऊंगी वही एक्सप्रेशन डांस डायरेक्टर वहां पिक्चराइज करेगा, वही एक्सप्रेशन हीरो हीरोइन देंगे। तो वो अच्छा लोकेशन भी पूछना चाहिए, पिक्चराइजेशन का समय भी पूछना चाहिए, जैसे कि पुराने सिंगर पूछते थे अच्छा कहाँ हो रहा है, नाइट में हो रहा है या डे में हो रहा है, आउटडोर हो रहा है कि इंडोर हो रहा है, नदी के किनारे हो रहा है कि गार्डन में हो रहा है, कि बर्फीली पहाड़ियों में हो रहा है, कि खंडर में हो रहा है, कि डेजर्ट में हो रहा है, कि रेतों में। तो ये जो सिचुएशन है पहले पूछते थे,
1: मतलब इतनी गहराई में जाना होता है एक कलाकार को, एक सिंगर को, एक संगीतकार को,
0: जिस तरीके से संगीतकार जाता है, जैसे मैं जाता
1: हूँ, गीतकार भी जाता होगा निश्चित रूप से,
0: नहीं डेफिनेटली हमको सबको जाना पड़ता है उसमें, क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि जो कंपोज हम करेंगे, जो शब्द हम कंपोज करेंगे, जो भाव सिंगर देगा गाने में, जैसे उतार चढ़ाव, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब गाना गवाते हैं सिंगर से तो गाना तो उसी वक्त याद हो जाता है, मगर उसको डबिंग करते वक्त 2-3 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन होते हैं शब्द के हम वो उससे करवाते हैं। जैसे कि एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, जैसे हरिहरन जी चित्रा जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए सिंगर हैं, दोनों क्लासिकल के माहिर हैं,
1: चित्रा जी
0: मद्रास के, साउथ की,
1: चित्रा जी
0: बोलते हैं उनको, उनका जब मैंने पहली फिल्म उनके साथ की थी जिद्दी, तो मेरा गाना था हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए।

0: से है ना।
1: क्या बात है, बहुत
0: तो ये गाना उन्होंने 2 घंटे में गा दिया।
1: जी जी
0: जब सैम दोनू सिंगर मेरी फिल्म आई अफलातून, जिद्दी में भी डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, बबलू पचीसिया जी प्रोड्यूसर थे, अफलातून के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी। तो उसका एक गाना था,

0: बहुत गहरा गाना
1: अब
0: था
1: ये
0: ये।
1: गाने में उनको 4 घंटा लग गए। अब होता क्या है कि जब आप किसी बड़े सिंगर के साथ काम करते हैं तो आप बार बार कट नहीं कर सकते हैं।
0: जी
1: तो आपको क्या है कि उनके रिस्पेक्ट को भी रखना है, उनकी जो ओहदा है, जो उनकी पोस्ट है,
0: उसको भी रखना है।
1: उसको भी कायम रखना है, और हमें हमारी जो चीज चाहिए वो भी निकलवानी है। तो उसके लिए क्या करता था मैं, आधा घंटा 15 मिनट किया, फिर मैं ब्रेक ले लेता था। फिर उन लोग पूछते थे क्या हुआ, मैं बोला नहीं मैं 1 मिनट थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। फिर जाता था उनके कैबिन में, हॉल में जाके फिर बैठते थे, आइए जरा 2 मिनट बैठते हैं, क्या हुआ सर कुछ, नहीं, मैं बोला बहुत बढ़िया हो रहा है,
0: जी
1: उनको ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या कमी हो रही है। फिर बैठ के बातचीत करते थे, फिर बातों बातों में मैं बोला जैसे ये जगह ना, पलकों के साए में सो जा तू, फिर उधर थोड़ी सी बातें मैं अंदाज ऐसे ही बता देता, ऐसा नहीं बताता था कि आपसे नहीं निकल रहा है। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं आप लोग, हाँ हाँ सर कर सकते हैं, मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं, जाओ तुझे मैं छुपा लूं, ओ, तो ये मुर्गी रिमाइंड ये भी आ सकती है शायद, हाँ आ सकती है सर। तो जैसे बच्चों को कैसे हम लुबराते
0: जी
1: हैं,
0: साइकोलॉजिकल।
1: तो वैसे उनके, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ या इतने बड़े सिंगर को आप बार बार अगर ऐसे करेंगे तो वो कहीं ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए, प्लस कहीं फंस ना जाए। अच्छा सिंगर अक्सर ऐसा फंस जाते हैं, वो लूप अगर लग गया उनको तो फिर अटक गए, तो अटक गए,
0: अटक गए
1: तो बहुत ही बच्चों की तरह ट्रीट करके उनके साथ वो निकलवा के, क्योंकि वो इस काबिल थे और
0: थे बिल्कुल।
1: काबिल हैं।
2: आप सुन रहे थे संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात, प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
5: कहाँ
6: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल

और मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। PV सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का
पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब के स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई।

लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी

विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ मां के नाम लगाएं, आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटोक्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं

जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहां बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षक

0: शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने चित्रपट संगीत। ये उपकार फिल्म का गीत है महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर। गुलशन बाबरा के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: शांति माथुर और साथियों के स्वरों में आप सुन रहे थे सन ऑफ इंडिया फिल्म का ये गीत।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और
3: आ गया। जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

0: घरों दा सफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। इंदीवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। आइए अब सुने घरौंदा फिल्म का गाना भूपिंदर और रूना लैला की आवाजों में, गुलजार के बोल जयदेव का संगीत।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी
2: दो दीवाने शहर में।

0: अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
0: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की। देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये उन अनगिनत नायकों को याद करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये दायित्व सौंपा गया। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत के अनहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म एलओसी करगिल से। आवाज है रूप कुमार राठौड़ की, जावेद अख्तर की रचना है, अनु मलिक का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं क्रांति फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। संतोष आनंद की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

0: रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ?
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा,
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
2: सखी सहेली।

0: अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से यह विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देशभर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे कालासागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण कालासागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports, or political cooperation.

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वीरों को किया याद, आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर, कैच द रेन अभियान और हथकरघा दिवस में जन भागीदारी का आह्वान। आज देशभर में मनाया जा रहा है करगिल विजय दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा राज्य मंत्री ने वीर शहीदों को किया नमन। राज्यभर में 28 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा हेल्दी लीवर कैंपेन। हेपेटाइटिस बी और सी की जांच तथा समय पर उपचार पर रहेगा विशेष फोकस। झारखंड पुलिस ने अभियान चलाते हुए 890 चोरी हुए मोबाइल बरामद कर वास्तविक मालिकों को लौटाए। लोगों से अपील, ऑनलाइन दर्ज

0: पेशकारी शिकायत। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप का करेंगे उद्घाटन। टिकट या पास से ही मिलेगा प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है और हर भारतीय को गर्व से भर देता है।
1: आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
0: कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से यह विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। करगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि करगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च समर्पण का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक रुकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस से 12 अगस्त तक हेल्दी लीवर कैंपेन चलाया जाएगा। अभियान के दौरान सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में हेपेटाइटिस बी और सी की जांच की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान के तहत साहिबगंज जिले में मतदाता सत्यापन और डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से जारी है। जिले के सभी 8,72,148 मतदाताओं तक एन्यूमरेशन फॉर्म का 100% वितरण पूरा हो चुका है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल, AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए कई नई पहल शुरू की है। इसके तहत झारखंड सहित 5 राज्यों में वरिष्ठ नागरिक गृहों का उद्घाटन किया गया तथा बुजुर्गों के कल्याण के लिए बिरला ओपन माइंड्स फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड पुलिस ने विशेष अभियान और CIR पोर्टल की सहायता से राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 890 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए हैं। पुलिस ने लोगों से मोबाइल गुम होने पर CIR पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र स्थित NTPC की पकरी बरवाड़ी कोयला परियोजना में अपराधियों ने 2 हाईवा वाहनों पर फायरिंग कर शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए। घटनास्थल से एक आपराधिक गिरोह के नाम का पर्चा बरामद हुआ है, जबकि सोशल मीडिया पर जारी एक ऑडियो में हमले को लेकर अलग दावा किया गया है। कोडरमा जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। बीती रात हाथियों के झुंड ने नवलशाही थाना परिसर में घुसने की कोशिश की और आसपास के गांवों में भी नुकसान पहुंचाया। कोडरमा के जिला वन पदाधिकारी सौमित्र शुक्ल ने बताया कि फसलों या घरों को हुए नुकसान का नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।
3: 25 से 30 हाथियों का झुंड पिछले 20 दिनों से लगातार कोडरमा में भ्रमणरत है, मरकच्चो एरिया में, जयनगर एरिया में। हमारी टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही है और गांव से दूर रखने की कोशिश कर रही है। सभी से यही अपील है, वन विभाग के नंबर प्रसारित हैं, उन पर सूचित करें। टीम लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है कि फसल का भी नुकसान होता है या कोई दीवार वगैरह भी टूटती है तो निर्धारित मुआवजा ससमय आपको दिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंड कप का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: झारखंड के खेल इतिहास में आज का दिन एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है। एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें ड्यूरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। सुरक्षा के मोर्चे पर रांची पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और मोराबादी क्षेत्र में ड्रोन तथा CCTV कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: इधर भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर खिताब जीत लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वीरों को किया याद, आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर, कैच द रेन अभियान और हथकरघा दिवस में जन भागीदारी का आह्वान। आज देशभर में मनाया जा रहा है करगिल विजय दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा राज्य मंत्री ने वीर शहीदों को किया नमन। राज्यभर में 28 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा हेल्दी लीवर कैंपेन। हेपेटाइटिस बी और सी की जांच तथा समय पर उपचार पर रहेगा विशेष फोकस। झारखंड पुलिस ने अभियान चलाते हुए 890 चोरी हुए मोबाइल बरामद कर वास्तविक मालिकों को लौटाए। लोगों से अपील, ऑनलाइन दर्ज करें शिकायत। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंड कप का करेंगे उद्घाटन। टिकट या पास से ही मिलेगा प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी कराची केंद्र है। अब समय हो चला है कार्यक्रम अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत का। आज आप सुनेंगे मित्र पिलो।

महल फिल्म का गाना किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने संगीतकार का नाम गलत लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में बंदूक से निशाना लगाना अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गंगा दशहरे के मेले में मिट्टी के बर्तन लाते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में नवरात्रि के मेले में जाता था तो मुझे किसी भी रखी वस्तु पर लकड़ी की रिंग डालना अच्छा लगता। उसमें जिस वस्तु पर रिंग गिरेगी वो वस्तु अपनी हो जाती थी, लेकिन मुझे कभी कोई वस्तु मिली नहीं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में जाकर दादाजी के साथ चुटहिया जलेबी खाना याद आ गया। क्या बात है भाई, वो जलेबी कहीं कहीं कभी कभी मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल्ली के लाल किले के मैदान में मेला लगता रहता है और विभिन्न प्रकार के झूले लगते हैं। मैं जब भी मेला जाता हूँ सबसे पहले ऊंचाई वाला झूला ज़रूर झूलता हूँ, जिसे जॉइंट हील कहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने वाले बर्तन ज़रूर मैं खरीदती थी और वो कपड़ों वाली गुड़िया भी। फिर हम अपने छोटे से घरौंदे में गुड़ियों के साथ खाना पकाते, शादी ब्याह करते। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में एक छोटा सा प्लास्टिक का गिलास, कीमत हर माल 6 आना का खरीदा। उसमें पानी भरने पर अंदर फिल्मी हीरो हीरोइन की फोटो दिखाई देते थे, उसे स्कूल के साथियों को दिखाते थे। क्या बात है भाई, गजब के अनुभव हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊंचे झूले पर आज तक हम नहीं बैठ पाए। और गानों के बोल बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बलिया में ददरी मेला लगता है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा से वो मेला शुरू हो जाता है और 1 महीना चलता है। उस मेले में गुड़ की जलेबी और गांव की महीन कारीगरी डलिया सूप और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। शादी के बाद मेरठ में नौचंदी मेला लगता है जो रात के टाइम लगता है और पूरी रात चलता है। इस मेले में नौटंकी भी आप देख सकते हैं और संगीत भी सुन सकते हैं। सचमुच एक ज़माना था जब मेले में नौटंकी भी खेली जाती थी, तो नौटंकी देखने के लिए अलग से घर वालों से परमिशन लेना पड़ता था। आपके साथ भी ऐसा हुआ? एक श्रोता ने लिखा है कि 90 के दशक में हमारे इंदौर शहर के गांधी हॉल में सावन का मेला लगता था और उस मेले में हर सोमवार को बहुत भीड़ होती थी। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत पीपल के पेड़ पर रस्सी पर बंधा हुआ पटिया लगा हुआ झूला हुआ करता था। अब बहुत सारे श्रोताओं ने शब्द लिखे हैं, सपने, वादा, वफा, कांटे, दुनिया, दिन वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है, प्रेम की भावना को इस सतर्क दृष्टि से जीना कि वो अंततः सुखद होगी या दुखद। प्रेम है, प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। टूटने बिखरने की पीड़ा, धोखे का दर्द और प्रेम की राह पर आने वाले धूप छांव, इन सब से इतर वो जब होता है तो बस होता है। आप चाहें न चाहें वो आपके साथ हो लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें जीवन की सच्चाई समझ आने लगती है। शांत स्वभाव यूं ही नहीं हो जाता, परिस्थिति और जीवन की समझ आप

आपको राख में परिवर्तित करके आपके मन को ठंडा रखती है। प्रेम और जीवन का कोई बदलाव फिर आप पर असर नहीं करता, आप हर समय चुपचाप चलना सीख जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं ये गाना। बूझिए कौन है हीरो और बूझिए गीतकार का नाम। हीरो का नाम फटाफट बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिल्म है दिल ने पुकारा।

दिल ने पुकारा। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी इंदिवर की, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इसका जवाब हमारे श्रोताओं ने सही दिया और कलाकार का नाम भी बिल्कुल सही लिखा है, शशि कपूर। हालांकि इस गाने में वफा शब्द आता है जो हमारी इबारत में है, लेकिन असल में तो है बेवफाई का गाना। तो आपको अभी कौन सा गाना सुनना है? इस समय आपके जहन में कौन सा शब्द और कौन सा गाना गूंज रहा है? हम जो सुनवाने जा रहे हैं यही या कोई और, जरा ये बताइएगा। और जो अभी गाना सुनवाएंगे उससे जुड़े हुए कौन से गाने आपके जहन में कौन थे ये भी बताइएगा। फिलहाल आपने क्या लिखा है जरा हम बता दें। जिंदगी किसी किताब की तरह नहीं, एक हम सफर की तरह होती है। हर दिन एक नया पन्ना नहीं, एक नया एहसास देती है। जो उसकी हर बात को दिल से सुन ले, उसके सफर में शिकायतें कम और मुस्कानें ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर बात बेवफाई की हो तो फिर शिकायतें ही शिकायतें। जरा सुनिए ये गाना और बताइए इस समय आपके जहन में कौन से गाने आ रहे हैं जिसमें वफा शब्द हो और बेवफाई भी हो। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, हीरो हीरोइन का नाम बूझना है और गीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में गुलजार के बोल थे, खयाम का संगीत था। और अब मेले का जिक्र चला तो हमारे बहुत सारे श्रोता, यूं कहें कि सभी श्रोता मेले में चले गए हैं और मेले से निकल नहीं पा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। चलिए हम भी गुम हो जाते हैं उसी मेले में। अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में जाना, जलेबी खाना, मिट्टी की गोलक, लकड़ी का घोड़ा बचपन में लेना नहीं भूलता था। एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, लिखा है कि हामिद का चिमटा याद आया, दादी की कहानियाँ याद आई। तो अब हामिद के चिमटे से मुझे प्रेमचंद की कहानी याद आई, तो ज़रा आप बताइए कि ये जो हामिद का चिमटा, हामिद चिमटा ले जाते हैं अपने दादी के लिए, सारे बच्चे बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं मेले में जाकर, और ईद का त्यौहार है और हामिद अपना जो पैसा बचाता है और अंत में दादी के लिए चिमटा खरीदता है और अपने दोस्तों में बहुत पुल बांधता है, डींग हाँकता है, देखो मैं तो कितनी अलग तरह की चीज़ खरीदता हूँ। तो पहले सारे बच्चे उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लेकिन बाद में उस चिमटे के लिए ललक दिखती है बच्चों में। तो बहरहाल अब आप ज़रा बताइए, थोड़ी सी कहानी भी मैंने बता दी तो कौन सी कहानी है? अब आपको कहानी का शीर्षक पूछना है। हाँ, हमें आपके जवाब का जल्द इंतज़ार रहेगा। अगर आपने पढ़ी होगी कहानी तो ज़रूर बता सकते हैं। और अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि बाजार का मेला और जीवन के मेले में बहुत अंतर है। दुख सुख मान अपमान सभी तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन ये जीवन है। दरअसल ये दुनिया भी तो एक मेला है। इस मेले में हम सब कहीं कई बार गुम हो जाते हैं, बस उसी मेले से निकल बाहर आते हैं और अपनी राह चुनते हैं। राह चुनने के लिए कई बार अवरोध भी पैदा होता है। तो आप ये भी बताते चलिए हमें कि क्या कभी आपने कोई राह चुनी मंजिल के लिए और किसी अवरोध का, किसी स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ा? मतलब बहुत सारे टोक टाक घर वालों ने वो मंजिल जाने पर, मंजिल तक पहुंचने पर ब्रेक लगा दिया हो और कहा हो कि नहीं, इस रास्ते से आप नहीं चलेंगे। तो ये बताते चलिए। और मुझे लगता है कि इस बात से जुड़ा हुआ कोई गाना आपके जहन में आ रहा होगा, जो हमारी इबारत में है शब्द, तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गोराई बीच के पास जहां विविध भारती मुंबई रेडियो स्टेशन है, उसके पास एसएल वर्ल्ड है, कहीं पर बहुत सारे राइड्स हैं, उनमें से रेनबो में बैठे थे। जब ऊपर जाते तब तो ठीक था, लेकिन जब नीचे सीधा उल्टा आता था तो सांस फूल जाती थी। तब 55 राइड थी उसमें और उनमें से 50 राइड्स में हम सब बैठे थे, लेकिन उसके बाद जाने का नाम नहीं लिया। अब तो बहुत सारे राइड्स हैं और ऐसे राइड्स हैं कि जिसमें जो ट्रेन की शक्ल में जो चलती है तो फिर ऐसी चीख सुनाई पड़ती है कि आप एकदम डर से कांप जाएं। बहरहाल अपने अपने अनुभव, लेकिन वो जो असली मेला लगता था, खुले मैदान में बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारे लोग मिलते थे और एक दूसरे से सुख दुख साझा करते थे, उस मेले की बात ही अलग है। अब कहाँ है वो मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मैं 6 वर्ष का था तो पिताजी की उंगली पकड़कर चला जा रहा था। एक छोटा पड़ा हड्डी का टुकड़ा उठा लिया, भीड़ में पिताजी ने अपने कंधे पर बिठा लिया। उस 5 इंच के टुकड़े से मैं अपने पिता के सिर पर टक टक बजाता जा रहा था। उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने नीचे उतार दिया और फिर उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया और थोड़ी देर के लिए बहुत नाराज़ हो गए। ऐसी तमाम बातें श्रोता याद कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो 24 घंटे मेला मोबाइल में लगा रहता है, सभी तरह के तमाशे और सभी तरह की खरीदारी हो सकती है। तो ऐसे में

कौन सा वाला मेला आपको अच्छा लगता है, वो वाला मेला, बचपन वाला, ये, या फिर मोबाइल वाला मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊंचे झूले पर आज तक नहीं बैठे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अभी बिहार में राजगीर में अधिक मास का मेला लगा था जो एक महीने तक चला। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के मेले, दिवाली के मेले, दशहरे का मेला और भी बहुत सारे मेले देखे। बचपन में गुड्डे गुड़िया, चरखी फिरकी आदि, मिट्टी के लकड़ी के खिलौने, गुल्लक आदि खरीदते थे, पर अब तो भीड़ भाड़ से भी डर लगता है। अब भीड़ भाड़ का भरोसा भी नहीं रहा कि कब कौन आपके पैर कुचल के आगे बढ़ जाए, क्योंकि अब वो संवेदना कम हो रही है लोगों में। इस संवेदना को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहरहाल, बात हमने पूछी थी आपसे कि जब आप कोई राह चुनते हैं तो उस राह पे चलते हुए क्या कभी कोई अवरोध पैदा किया किसी ने, आपके परिवार ने, समाज ने, ये बताइए। और साथ में ऐसा ही एक गाना और बताइए जो इस गाने से मेल खाता हो। और हाँ, एक सवाल और था, हामिद का चिमटा दादी के लिए प्रेमचंद की लिखी ये कौन सी कहानी है? फिल्म तपस्या है, आपको पूछना है साथ में हीरो हीरोइन का नाम। बहुत सारे सवाल हैं एक साथ, देखते हैं कौन कौन से सवालों के जवाब आप दे पाते हैं।

0: उस राह पे राह ही चलते जाना रे तपस्या फिल्म का गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं ने सही और त्वरित जवाब दिया, राखी और परीक्षित साहनी। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए सिटी से बाहर जाना था लेकिन दादा दादी ने रोक लिया, यही पढ़ाई करो, बाहर नहीं जाने मिला। और एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी एक सफर है जिसमें विभिन्न पड़ाव आते हैं, उन पड़ावों से गुजरते हुए कई मुकाम आते हैं, आज के सफर में वही यादों का सफर है। एक श्रोता ने लिखा है कि रिटायर्ड होने के बाद जब गुजरी जिंदगी का हिसाब देखता हूं तो पता चलता है कितनी कठिन थी ये जिंदगी, लेकिन पत्नी का साथ और ईश्वर के आशीर्वाद से आरामदायक रही जिंदगी। और अब जो हमने सवाल पूछा था उसकी बारी है, हामिद का चिमटा दादी के लिए जो लाना होता है वो किस कहानी का शीर्षक है, मतलब कहानी का शीर्षक हमने पूछा था, प्रेमचंद की लिखी कहानी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ईदगाह। और हमें लगता है बचपन में सभी ने ये कहानी पढ़ी होगी और पढ़ने की शुरुआत ईदगाह से होती है और बहुत सारे पाठ्यक्रम में भी शामिल थी ये तो कहानी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईदगाह की कहानी हमारी हिंदी की किताब में होती थी, हामिद की माँ हाथ रोटी सेकते हाथ जलता जल जाता था, 3 रुपए का चिमटा खरीद लाए थे। दरअसल हामिद की माँ नहीं, हामिद की दादी थी। हामिद के माता पिता बचपन में ही नहीं रहे और इस वजह से दादी ने पाला था और बहुत गरीबी में पाला था, और दादी का भी उसमें बहुत, दादी की संवेदना है कि वो हामिद को ईद के दिन क्या तोहफा दें, क्या लाएं, और हामिद के लिए ईद किस तरह से खुशगवार हो। यहाँ दादी सोच रही होती है और हामिद अपनी दादी के लिए चिंतित होता है कि दादी का हाथ जलता। बहरहाल एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कोई साधारण भावना नहीं बल्कि आत्म अन्वेषण की एक गंभीर और दीर्घ यात्रा है। प्रेम अपने भीतर अनेक विरोधाभासों को समेटे रहता है जो अपने स्वरूप को प्रकट भी करते हैं। प्रेम अपार आनंद का स्रोत होने के साथ ही विरह और पीड़ा का अनुभव भी कराता है। दरअसल प्रेम में फूल होते हैं तो कांटे भी होते हैं, और फूल के साथ कांटों का साथ होना बहुत स्वाभाविक है। और जो सबसे अच्छा सुंदर फूल लगता है उसमें तो कांटे ही रहते हैं, गुलाब का फूल। ऐसे और कौन से फूल हैं जिनमें कांटे होते हैं, बता सकते हैं आप? फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना।
1: फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली।
0: फिल्म का नाम जरा बताइए।

अनोखी रात फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल रोशन का संगीत था और सभी श्रोताओं ने बगैर पूछे ही बताया है, परीक्षित साहनी जाहिदा सही बताया है, फिल्म थी अनोखी रात। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, यहाँ कुंभ मेला लगता है तो बड़ा आनंद आता है। बहुत सारे श्रोताओं ने प्रयागराज कुंभ मेले की बात लिखी है और एक श्रोता ने लिखा है कि सपने ही सपने कब हुए अपने, आँख खुली और टूट गए, नींद के सपने हकीकत में बहुत अंतर होता है, कई बार सपने बुनने में आनंद भी आता है और सपने जब दो लोग मिलकर साथ साथ पूरे करते हैं तो उस सपने की बात ही अलग होती है। ज़रा बताइए कौन है वो दो लोग जो मिलकर सपने बुन रहे हैं, फिल्म लव स्टोरी, हीरो हीरोइन का नाम आपको बूझना है। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ें, हीरो हीरोइन का नाम बताइए जल्द।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग।

आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। फिल्म है जब जब फूल खिले, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

0: कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

भीगी रात फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। छोटी छोटी बातें, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना है शैलेंद्र की।

छोटी छोटी बातें, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। रचना थी हसरत जयपुरी की और इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश भेजी थी आप सभी श्रोताओं ने। शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहरुद्दीन कैशरद्दीन और नजमुद्दीन, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, श्रीमती प्रमिला ज्योति श्याम कुंवर और इनके अन्य साथी। इसी गाने की फरमाइश आई थी वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे की ओर से।

आपकी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता मनोहर, लक्ष्मण देवुलकर और इनके परिजन। और इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार की ओर से, और रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिवंगर गद्रे, राजेश शुभांगी और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई थी जबलपुर बरगी नगर से। चलिए अब सुने अगला गीत ये।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये था सूरज फिल्म का गाना। रचना थी हसर जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश थी आप सभी की कमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और इनके साथी। और इसी गाने की फरमाइश थी नेकी राम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल, धनराज बांसीवाल की, श्री गंगानगर से, धमणी मानोरा से पेंटर तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, पेंटर संदेश डेरे, आदेश, किरण प्रज्वल और अनुत डेरे की फरमाइश थी। सुनिए अगला गाना, ये अपनी ही फरमाइश पर।

कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश देवांगन, आशीष रवि शनी कान्हा और आदित्य इसी गाने की फरमाइश भेजी थी आप सभी ने। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत और प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरमीत, गुरुशब्द, राहुल यहीं से मतलब जिला अंबाला से। आप सुन रहे थे रखवाला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत आप सभी की पसंद का। ये गीत फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म थी गीत। गीत को सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। कर्नाटक चिन्ना तिरुपति से प्रकाश, श्यामला, अश्विनी, रमेश, आनंद, अन्वित और इनके परिजन। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, अशोक श्याम कुंवर, दीपक और आसमा।

संतकर्ता हमारे ये श्रोता थे छत्तीसगढ़ बोर तालाब से शत्रुघ्न लाल यादव, गौतम यादव, संगीता यादव और सचित यादव, अलीवाड़ा तामिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवी राम इनावती, दामिनी इनावती।

तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना थी हजरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने गांव कोटगा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान पटेल, टीना दांगी और लक्षित डांगी ने। इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, सुनील प्रसाद और इनके परिवार की ओर से। चांदनी चौक गवई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविंद्र रौनक सेन और इनके साथियों की ओर से आई थी फरमाइश। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक वो आएगी। इसके लेखक हैं तस्वीर आबिदी, निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। तो आइए सुनते हैं नाटक वो आएगी।

0: रोज़ बच्चे कुछ कहना चाह रही है।
1: इतनी जोर से कॉफी हाउस में नहीं हंसा जाता।
0: वही नहीं हंसा
2: जाता। इतनी जोर से नहीं हंसा जाता।
0: सही बात है।
3: इस कॉफी हाउस के गोशे की बहस पर ये तीन अजनबी, तीन दिमाग, तीन अलग अलग विचार रखने वाले तीन इंसान एक साथ इस तरह घुल मिल कर बातें कर रहे हैं, क्या ये एक इत्तेफाक है या ये तीनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं? जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है, जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था, जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: आज भाई भाई का दुश्मन क्यों? क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी।
2: ये कौन है?
1: वो आएगी।
2: आखिर ऐसे क्यों घूमता है?
1: वो आएगी। वो आएगी। वो आएगी। वो आएगी।
3: काफी साहब,
4: मेरे दोस्त, तुम किस सोच में पड़ गए? क्या मनोविज्ञान के किसी चैप्टर में खो गए?
5: ओह, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आएगी। महानगरीय शोर शराबे के सीने को छीटती हुई ये आवाज तुमने सुनी?
4: हाँ, मैंने भी सुनी।
5: आखिर वो किसको बुलाता है?
4: देखो दोस्त, मैं तुम्हारी तरह फलसफी तो हूं नहीं।
6: हाँ भाई, एक सियासी आदमी फलसफी हो भी कैसे सकता है?
4: मेरा नजरिया है कि वो यकीन की उस रोशनी की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी हर किरण प्रेम का पैगाम है। वो सत्य है जिसकी गगनचुंबी इमारतें ऋषियों, मुनियों और महात्माओं के उपदेशों के आधार पर खड़ी है।
6: हो सकता है मेरे दोस्त तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे विचार सही हो, लेकिन सच पूछो तो ये एक विज्ञान का दौर है। अब हम जमीन की बातें कम और आकाश की ज्यादा कर रहे हैं। जरा सोचो, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने ऐसे ऐसे रहस्यों को उद्घाटित किया है
4: जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
7: हाँ, ये तो है।
0: आइए मैं आपको उस जगह ले चलूं जहां इस कहानी ने जन्म लिया।

0: बस करो सुधीर।
1: सुहेल डियर, काफी अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं, और वो भी एक अजीब बात के सिलसिले में। खैर छोड़ो, फिर किसी वक्त बताऊंगा। तुम अपनी सुनाओ, शादी वादी भी की? अरे हाँ, ठीक याद आया, तरन्नुम और तुम्हारे डैडी,
0: तुमने बहुत से सवालत कर डाले।
2: कोई डॉक्टर।

0: गॉड, बेचारा, देखो कितनी बुरी तरह जख्मी हुआ है। एक इंसान के खून की
1: कहानी इसी सड़क पर खत्म हो जाती है जहां से
0: कहानी। ओह, मगर तुम इधर कहां जा रहे हो? क्या घर?
1: हाँ।
0: क्यों?
1: कुछ नहीं।
0: ओह, तो तुम काफी सीरियस हो रहे हो, इसकी वजह
1: है मेरे दोस्त।
0: तो क्या तुम मुझको नहीं बताओगे?
1: जरूर बताऊंगा। सो गया मेरे बचपन का दोस्त, बिल्कुल नहीं बदला। और मैं कितना बदल गया हूं। उफ, कितना थक गया हूं मैं। जीने की तमन्ना नहीं, अभी तो मुझे फौजिया की निशानी, मेरी अपनी बच्ची फौजी की परवरिश करना है। कितनी शरीर है। कौन? ओह, कुछ नहीं, मेरा वहम। आज मुझे फौजिया की याद फिर सता रही है। फौजिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी और फरुख की मोहब्बत कितनी सच्ची थी। कौन? कुछ भी तो नहीं। आज कितना डर लग रहा है मुझे, अंधेरा भी तो छाया है। मेरी पूरी जिंदगी ही तारीख हो चुकी है। मैं पापी जो हूं, आज मेरा शरीर खुद मुझसे नफरत करने लगा है। मैंने सुलह भी तो की है अपनी फौजिया पर।

0: शायद जिंदगी भर अब मैं इन गुनाहों की आग में सुलगता रहूं। फौजिया, मेरी फौजिया, मुझे माफ कर दे। और फर्रुख, हो सके तो तू भी इस गुनहगार को बख्श दे। फौजिया, फौजिया, माफ कर दे मेरी फौजिया, वो पागल है। तू आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी।
1: सुहेल, सुहेल, होश में आओ, ये क्या?
0: मुझे मुझे माफ कर दे फौजिया, तुझे अब अपनी निशानी की कसम।
1: होश में आओ सुहेल, क्या बात है? बोलो बोलो, कौन फौजिया, कैसी निशानी?
0: माफ करना सुधीर, मुझे मुझे डर लग रहा है।
1: क्या बात है, क्यों डर रहे हो? फौजिया कौन है?
0: कुछ नहीं सुधीर, बस डर, बस।
1: नहीं नहीं नहीं, छुपा नहीं सकते, बताओ क्या बात है? तुम शाम से ही उदास हो, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, शायद मैं तुम्हारे।
0: शुक्रिया सुधीर, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, हमदर्द हो, मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ बताकर अपना गम हल्का करूंगा।
1: शायद उस पागल के एक्सीडेंट ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है, तुम उसी वक्त से उदास।
0: हां सुधीर, वो पागल, उसकी आवाज एक अरसे से मेरा पीछा कर रही है।
1: मैं समझा नहीं, वो पागल, आवाज?
0: हाँ हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं।
1: पहले ना बुझाओ सुहेल, तुम्हारी उदासी, फौजिया, निशानी, आवाज।
0: तुम्हारा हर सवाल एक ही कहानी की कड़ियां है मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की कहानी।
1: ओ, ये तुम हो जिसकी जिंदगी कहानियों से दूर थी।
0: हाँ, कभी थी और अब एक दर्दनाक कहानी, मगर दूसरों से कहता रहा कि मेरी जिंदगी अब भी कहानियों से दूर है,
1: और खुद को धोखा देता रहा। मगर क्यों?
0: ताकि तुम्हारा समाज, तुम खुद मुझसे नफरत।
1: मगर
0: इसलिए सब कुछ छुपाता रहा, लेकिन आज
2: सुहेल साहब, आप बहुत आगे बढ़ आए हैं। कई बार चाहा कि आपको रोकूं और साफ साफ कह दूं, धोखे में ना रखूं।
0: फौसिया।
2: हाँ सुहेल साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप एक छोटी सी मुलाकात को इतनी अहमियत देंगे, वरना मैं आगे बढ़ने से आपको रोक देती। खुदा के लिए, खुदा के लिए, आप जहाँ हैं वहीं से लौट जाइए प्लीज।
0: मगर क्यों?
2: इसलिए कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, और फर्रुख

0: तो फौजिया फर्रुख से मोहब्बत करती है और मैं इस आग में जल रहा हूं। कब तक मैं अपने को इस कमरे में बंद रखूंगा, फौजिया को भुलाने की कोशिश करता रहूंगा? लेकिन क्यों, क्या ये मेरे साथ धोखा नहीं? सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार वही है जिसमें बलिदान का जज्बा हो, अपना स्वार्थ ना हो। फर्रुख और फौजिया
1: और मैं अपनी मोहब्बत
0: एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो, मेरी मोहब्बत अंधी ही क्यों ना हो, लेकिन मैं हर हालत में फौजिया को हासिल करके रहूंगा और मैं अपनी राह में आने वाले हर कांटे को हटा दूंगा।
2: रुक जा अपने नापाक इरादों से बाजा, वरना पछताएगा, जिंदगी दूभर हो जाएगी। रुक जा बाजा, रुक जा।

0: तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारी जान।
1: सुहेल साहब, आप?
0: हाँ मैं, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं।
1: तो आप मुझे अपने रास्ते से हटाकर फौजिया को अपना लेंगे? क्यों?
0: हाँ,
1: फिर भी आप फौजिया को अपना ना सकेंगे
0: तो तुम नहीं मानोगे। तो लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं तेरी जान ले लूंगा, तेरी जान ले लूंगा। एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो। फौजी,
2: आप मुझे फौजी कहकर ना पुकारा कीजिए।
0: मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि फर्रुख भी तुम्हें इसी नाम से पुकारता था।
2: मैं फर्रुख को भूल चुकी हूँ और अब आपकी बीवी हूँ।
0: फौजी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करके तुम्हारी और फर्रुख दोनों की जिंदगियों में घुल लगा दिया है। फौजिया, आंखें खोलो फौजिया।
2: अरे, इन्हें तो बेहोश हो गई।
0: फौजिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब से तुमने इस नन्ही सी जान को जन्म दिया, तुम्हारी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। मैंने दो जिंदगियों को तबाह किया। मैं कभी चल नहीं पा सकता। नीलम, मेरी फौजिया को क्या हो गया है?
2: बस करो सुहेल, जो तुमने किया, हे भगवान इसे बचा ले। मेरी अजीज सहेली, मेरी बहन, होश में आ। देख देख, मैं हूँ नीलम। लो ये दवा पी लो।
3: गॉड, नीलम।
2: हाँ फौजिया, मैं नीलम। और ये देखो तुम्हारी नन्ही फौजी, इसे गले लगा लो।
3: हाँ मेरी बच्ची। वो सुहेल कहाँ है?
0: मैं तुम्हारे पास हूँ फौजिया।
3: मैं मेरा आखिरी सलाम
0: फौजी।
3: हो सके तो मुझे माफ कर दो।
0: नहीं फौजी,
3: मैं तुम सबसे दूर, बहुत दूर जा रही हूँ। नीलम, नीलम, मेरी बच्ची, मेरी फौजी, अपनी अमानत, मैं तुम्हें सौंप रही हूँ।
0: फौजिया,

0: ये कहानी आज भी तीन सीनों में दफन है। फौजिया आज इस दुनिया में नहीं, फर्रुख पागल है और नीलम एक देवी जो आज भी वचन निभा रही है और मेरी फौजी की परवरिश कर रही है।
1: फर्रुख का क्या हुआ सुहेल?
0: फर्रुख, सुधीर, जब फौजिया का जनाजा घर से जा रहा था तो मैंने देखा।
1: क्या?
0: मैंने देखा सुधीर, जनाजे के सबसे पीछे वो फर्रुख था।
1: फर्रुख? वो हाँ, पागल?
0: हाँ सुधीर, वो चुपचाप जनाजे के पीछे चला रहा था। वो कब्रिस्तान तक गया, लगता था वो पागल नहीं है, वो रो भी नहीं रहा था, बस उसकी हालत बता रही थी कि वो पागल है।

0: लेकिन जब फौजिया की लाश कब्र में उतारी गई और मिट्टी डाली जाने लगी तो वो कुछ कहता हुआ भाग रहा था।
1: अभी अभी
0: औसी मेरी बच्ची
1: अभी आप रो क्यों रहे हैं?

0: चुप हो जाइए ना, हम आपको बहुत चाहते हैं।
1: मेरी प्यारी बच्ची।
0: अब तो नहीं रोइएगा अभी?
1: नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। सुधीर, यही है मेरी बेटी फौजी। तुम्हारी आंटी कहाँ है बेटी?
2: मैं यहाँ हूँ सुहेल भाई।
1: अरे नीलम, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो
3: आप? नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी?
2: जी, मैं नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी। मिस्टर सुधीर, आप यहां कैसे?
3: जी जी वो
1: खूब। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो?
2: नहीं सुहेल भाई, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले, सिर्फ तस्वीरों की मुलाकात।
3: वो इत्तफाक से। नीलम जी, मैं सुहेल का दोस्त हूँ।
1: और अब ये तस्वीरें हकीकत के रूप में एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। अब क्या इरादे हैं?
2: सुहेल भाई, मैं अपने इरादों पर अटल हूँ।
3: इरादों?
2: जी फौजी, जो मेरी अजीज सहेली की निशानी है, अब मेरी जिंदगी, इसकी परवरिश, मेरे सपने और इरादे।
3: आपसे इस अचानक मुलाकात से पहले मैं फौजी को सुहेल से मांग चुका हूं, मगर सुहेल ने कहा था कि फौजी पर मुझसे ज्यादा नीलम का हक है, यानी आपका।
2: हाँ सुधीर साहब, फौजी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब उसे मैंने अपनी बहन फौजिया की मौत के बाद अपनी गोद में लिया, तो मैं उसकी मां तो नहीं।
1: मां की ममता से इसकी झोली भरती।
3: फौजी के लिए अगर आज मैं आपके सामने अपना हाथ।
2: फौजी मेरी जिंदगी है।
3: नीलम जी,
2: ये नामुमकिन है मिस्टर सुधीर।
3: नीलम जी, फौजी मेरी भी है।
2: जी नहीं, सिर्फ मेरी।
0: अरे अरे, अंकल और आंटी तो लड़ने लगे अब्बी।
1: हाँ बेटी, मेरी समझ में।
0: आप रोइए नहीं अब्बी, मैं समझाती हूँ। आंटी आप और अंकल आप दोनों इधर खड़े हो जाइए।
3: खड़े हो जाइए?
0: बोलिए नहीं, बस खड़े हो जाइए।
2: नहीं फौजी, ये तुम
0: एक साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो मैं रोने लगूंगी।
3: अच्छा अच्छा, लो हम खड़े हो गए।
0: हाँ बस, अब मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे अब्बी, अब मैं कैसी लग रही हूँ?
1: बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी।
0: तो अभी हम लोग ऐसे ही रहेंगे, अब आप खुश?
1: फौजी
2: मेरी बच्ची।

प्यार मोहब्बत और कर्तव्यों के इन्हीं पाकीज़ा जज्बात की नींव पर ही मानवता की इमारतें खड़ी हैं। जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है, जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था, जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी।
0: आओ लौट चले फिर उसी जगह जहां से हम चले थे।

0: अभी आप सुन रहे थे तस्वीर आबिदी का लिखा ये नाटक वो आएगी। इसका निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नाटक दिल्ली में करने लगे। पहले तो हमने बहुत सारे मराठी जितने भी थे मराठी नाटक खेल डाले ना, मेरे अपने भी थे उसमें, पु ल देशपांडे के थे, फिर वासना कांड महेश एलकुंचवार का था, फिर ऐसे बहुत जितने भी हाथ लगे वो ड्रामे किए। और क्या होने लगा कि दो चार शोज के बाद ये पता चलता था कि पहले तो हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल, और फिर बाद में धीरे धीरे धीरे, क्योंकि दिल्ली में मराठी थे कितने, जितने
1: जी
0: थे वो तीन चार शोज में खत्म होते थे आके, फिर वो खाली हॉल। फिर हमने सोचा कि ये बात सही नहीं है, इतनी मेहनत करो और ये फिर इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रहा इसका, तो क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी कि क्यों नहीं अच्छे अच्छे लायक मराठी नाटक चुन के उनको हिंदी में पेश किए जाए,
1: वाह वाह,
0: है ना। तब हमने किया सखाराम बाइंडर, किया ये किया वो किया, और सखाराम बाइंडर के चक्कर में मुझे जेल जाने की नौबत आई थी। वो किस्सा आपको जरूर सुनाती
1: जी
0: हूँ।
1: जी
0: उन दिनों क्या था कि वो नाटक ऐसा ये बिल्कुल नहीं था व्यावसायिक तौर पे, हाँ प्रोफेशनल नाटक था ही नहीं, तो लोग फिर करते थे। और ऐसी कुछ एक संस्था थी जहां से परमिशन लेनी पड़ती नाटक खेलना अगर आपको हो, और उनको पटाना होता था कि भाई हमारा बहुत नेक ये उद्देश्य है फलां ढिमका वगैरह वगैरह, फिर वो परमिशन आपको देते थे, फिर आप टिकट लगा के नाटक कर सकते थे। तो हमने ये सखाराम बाइंडर का सोचा करने का, और कास्ट भी बहुत बढ़िया मिल गई हमको, वो लक्ष्मी के रोल के लिए सुधा चोपड़ा और चंपा के रोल के लिए सुषमा सेठ जैसे कलाकार मिले, अरुण तो सखाराम बाइंडर के रोल में वगैरह, और मैं डायरेक्टर, तो और विजय तेंदुलकर तो बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी हमको परमिशन दे दी। तो ये शो, लेकिन ये हमने इनको लिखा कि हमको ये शो करना है, उनसे जवाब ही ना आए, वो कोई दखल ही ना दे। एक बार हुआ, दो बार हम पहुंचे वहां, फोन किए, ये किया वो किया, कुछ नहीं, वहां तक कि उनके चपरासी भी रुक के हमसे बात करने को
1: राजी नहीं
0: राजी
1: थे।
0: नहीं थे। तो अब क्या करें क्या करें, हम बहुत घबराए, और थिएटर के डेट्स ले चुके थे और सबके डेट्स ले चुके थे, और वो सब पास आ रहा था, हाँ हवे की तरह। बहुत कोशिश की, कुछ नहीं बात बनी। तो फिर किसी ने ये सलाह दी कि देखो और लोग भी ये करते हैं, तुम लोग निमंत्रण छापो, हाँ कि आपको ये बुलाया है मुफ्त में, और फिर वो निमंत्रण बेचो, ओके 10 रुपए में 25 रुपए में जो भी तब होगा। तो हमने कहा हाँ ये अच्छी तरकीब है।

0: तो हमने वैसे निमंत्रण छापे, उनको बेचे, और सखाराम बाइंडर की तब बहुत हवा थी क्योंकि बम्बई में तो तूफान मच चुका था सखाराम बाइंडर को लेके, तो दिल्ली में भी फिर लोग, और फिर हमारा ग्रुप भी नाट्यद्वयी अब तक बहुत लोकप्रिय हो चुका था, तो फिर देखते ही देखते सब हमारी निमंत्रण ही कहो बिक गई। और फिर जिस दिन खेल था, हमें कुछ नहीं बताया, वो उनके लोग चुपचाप आके देख रहे थे, और बाहर भी हमने कुछ बेचने के लिए, हम बिल्कुल मतलब उसमें हमें लगा ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये तरीका दूसरा था ही नहीं, उन्होंने दरवाजे बंद किए थे, अब हम क्या करें। फिर उन्होंने वो लिए एक दो उन खरीदे हमारे निमंत्रण, और फिर हमारे घर दो तीन दिन बाद उनके लोग आए कि आपको कानूनन ये करेंगे क्योंकि आपने ये बहुत गुनाह किया है, आपने टिकट, ये गुना तो था ही। तो हमने कहा फिर क्या करें, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं नहीं वो तो वो सुनने वाले थोड़ी थे, तो और जैसा मैंने कहा उनके चपरासी भी रुक के देखने को तैयार नहीं थे हमारी तरफ, बहुत हम गिड़गिड़ाए, ये किया वो किया, उनको प्रूफ्स दिया कि हम फला दिन को हम आपके दफ्तर में आए थे, धमकाने दिन, ये देखो हमने ये इस तारीख को भेजा है लेटर, सब हमारे पास था, वो सुनने को तैयार नहीं। फिर किसी ने कहा क्या करोगे तुम, तो सचमुच जेल जाने की नौबत आ गई, मतलब दिस इज हाउ वी ऑपरेट विच इज सो सैड।
1: जी जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर जरूर।
2: दीवाना,
1: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी,
1: दो दीवाने शहर में।

0: तो वो पूरे नाटकों का दौर चलता रहा
1: हाँ जी
0: और दिल्ली में आपने बहुत सारे नाटक
1: हाँ, एक
0: लगातार किए।
1: पंजाबी में भी किया
0: जी
1: जी, पंजाबी में किया, वेंकटेश माडगुलकर का नाटक था तू वेड़ा कुम्हार। हाँ, उसका चक्का चलता है, सुरेंद्र गुलाटी ने उसका ट्रांसलेशन किया, बखूबी ट्रांसलेशन किया। और मज़े की बात ये कि वो मराठी नाटक पंजाबी भूमि में इतना मज़े से बैठ गया और उग गया कि क्या बताऊँ मैं। बहुत ही मतलब लगा कि ये पंजाब में ही ये नाटक का निर्माण हुआ है।
0: टूर भी
1: हाँ,
0: किया था उसको लेके,
1: नहीं टूर नहीं किया,
0: सिर्फ दिल्ली में किया।
1: दिल्ली में किया। हाँ, और लेकिन मजे की बात होती, पंजाबी तो मुझे आती नहीं बोलने, यार समझ में तो आती ही है, दिल्ली रहो तो हर चौथे पांचवें दिन एक बहुत ही हमारे कलाकार, और कलाकार भी बहुत गजब के थे, कुलभूषण खरबंदा, श्याम अरोरा, सुधा चोपड़ा, कीमती आनंद, ऐसे बहुत होनहार कलाकार थे। और पांच छह दिन बाद उनमें कलाकारों में एक झगड़ा होता था, और झगड़ा वो ऐसा मतलब छप्पर उड़ा देने वाला, जो तू तू मैं तू की कह रहा है शाम, वो तो चुप रहा है, वगैरह
0: अरे
1: वगैरह वगैरह।
0: बाप रे।
1: और क्यों ये झगड़ा होता था कि एक था जलंधर का, एक था पटियाला का, एक था
0: फगवाड़ा
1: चंडीगढ़
0: का,
1: का,
0: चंडीगढ़
1: और हाँ
0: का।
1: वगैरह वगैरह, हर अलग अलग जगहों से थे, और हर एक की बोली थोड़ी सी अलग थी। तो ये कहता नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे कहते, दूसरे कहते नहीं ना जी ना तू की कह रहा है, हाँ वगैरह वगैरह का। मैं चुप कोने में बैठी सुनती थी, और जब वो अपना शांत हो जाता था 10-15 मिनट झगड़ के, फिर शांत हो जाते थे, एक की जीत होती थी, नाटक रिहर्सल फिर आगे चालू। पर वो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल
0: लेकिन लैंग्वेज का एक पुल भी पार किया,
1: जी
0: मराठी नाटक पंजाबी में
1: जी
0: होने
1: जी
0: लगा।
1: हाँ।
0: यहां से दूरदर्शन का सीन कैसे आया?
1: दूरदर्शन, अब मुझे याद याददाश्त में मेरी वक्त के बारे में बहुत गड़बड़ है, मतलब क्या पहले क्या बाद में ये सही ढंग से याद नहीं आता, लेकिन
0: जहां तक मुझे याद है
1: समय
0: आप आकाशवाणी भवन गई थी।
1: हाँ नहीं वो बहुत पहले गई थी, जब मेरा कोई ताल्लुक नहीं था टेलीविजन से या कुछ भी, तब मैं सिर्फ नाटक वगैरह करती थी दिल्ली में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद। हाँ, एकदम वहाँ से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंची एज अ टीचर,
0: जी
1: प्रोफेसर ऑफ स्पीच एंड ड्रामा,
0: डिक्शन। जी
1: हाँ
0: जी
1: डिक्शन एंड ड्रामा। हाँ, तो वो एक साल ही मैंने वहाँ पढ़ाया, और मेरे ये सुन के आपको, आपके होश उड़ जाएंगे शायद, मेरे स्टूडेंट्स की नामावली सुन के,
0: बड़े दिग्गज लोग।
1: एब्सोल्युटली जलाल आगा,
0: ओहो,
1: साधु मेहर जो नेशनल अवार्ड विनर
0: श्याम
1: था
0: बेनेगल
1: श्याम
0: के
1: बेनेगल
0: एक्टर,
1: की फिल्म में, रेहाना सुल्तान दस्तक
0: दस्तक
1: की
0: फिल्म में।
1: हीरोइन, फिर राकेश पांडे
0: जी,
1: जो भोजपुरी का अमिताभ बच्चन,
0: उनको लेके
1: भोजपुरी
0: एक फिल्म
1: सिनेमा का
0: लॉन्च हुई थी संगत,
1: किसकी,
0: राकेश पांडे को लेके कुछ कुछ फिल्में
1: हाँ
0: लॉन्च हुई थी, पर उनका ज्यादा नाम नहीं हुआ।
1: नहीं उस भोजपुर में बहुत नाम, वो उसमें थे ना बाशु चैटर्जी की फिल्म थी ना सारा आकाश,
0: उसमें
1: उसका
0: थे
1: हीरो था,
0: जी,
1: हाँ राकेश,
0: बाद में
1: वेरी
0: वासुदा ने
1: वेरी
0: एक
1: नाइस
0: फिल्म
1: फिल्म।
0: लॉन्च की थी संगत, उसमें भी
1: अच्छा
0: वो हीरो थे, पर वो बनी
1: वो
0: नहीं।
1: नहीं वो उसका ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर वो भोजपुर की तरफ मुड़ गए, और भोजपुर में बहुत नाम कमाया राकेश ने, यहाँ तक कि मुझे एक बार, फिर बहुत सालों बाद हम दोनों जूरी में थे, मैं चेयरपर्सन थी उस साल जूरी में, और राकेश एक मेंबर थे जूरी, तो तब हमारी बड़ी प्यार से फिर इतने सालों बाद मिले, और किसी ने मुझे कहा कि राकेश अब भोजपुरी का अमिताभ
0: स्टार बन
1: बच्चन
0: गए।
1: है वगैरह वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के, अभी मोटे वोटे हुए थे, तब
0: जी
1: दुबला
0: जी
1: पतला था जब मेरे क्लास में था, तो ऐसे इन लोगों को सिखाया पढ़ाया,
0: शैलेंद्र
1: बहुत
0: सिंह
1: मजा
0: वगैरह
1: आया।
0: भी थे।
1: नहीं, मेरे
0: अच्छा
1: क्लास में नहीं ना, तो ये हुआ। और हाँ, जब मैं थी अगेन इश्तहार,

0: टेलीविजन तब शुरू हो गया। और हाँ, उसके पहले आपने कहा कि कब आकाशवाणी भवन गई थी, तो जब मैं गई थी जब वो सब बन रहा था, और तब सिर्फ स्कूलों का टेलीविजन होता था, स्कूल के लेसन होते थे घोंचू तरह के। हाँ, बहुत ही ड्राई और बहुत ही मतलब, लेकिन वो रोजाना एक रिहर्सल के तौर पे वो पेश होते थे। तो वो मैं ऐसे ही देखने गई आकाशवाणी भवन, अब याद नहीं क्यों गई कैसे गई, और मुझे किसने, कौन मेरे गाइड होंगे, अगेन आई एम टेकिंग द सेम नेम फॉर द सेकेंड टाइम, पुलर देशपांडे।
1: वाह वाह
0: हाँ,
1: वाह,
0: क्योंकि ही वॉज इन द फाइनल कमिटी, द मेजर कमिटी, मास्टर कमिटी जो थी टेलीविजन का पूरा वो करने वाली। हाँ, सब रवैया तो वो थे, और उन्होंने कहा अरे सही तू कदी अली सर, ये बड़े खुश हुए मुझे देख कर, क्योंकि पूना से हमारी पहचान थी आकाशवाणी से।
1: जी
0: तो फिर उन्होंने मुझे पूरा घुमाया, वो छोटा सा स्टूडियो था तब आकाशवाणी भवन में, नन्ना सा स्टूडियो, और उसमें वो तीन कैमरा, और हर कैमरा का अलग क्या उसका ये है, हर एक का की ड्यूटी क्या है वगैरह वगैरह, यंत्रणा पैनल पे कैसे पेश किया जाता है, लाइटें कैसी, वह सब उन्होंने मुझे सिखाया। और तब मुझे जरा भी मतलब एक इतना भी नहीं ये हुआ लगा कि एक दिन अपन यहाँ आने वाले हैं,
1: क्या बात है,
0: कि
1: ये
0: हाँ
1: ख्वाब भी नहीं था
0: ख्वाब
1: कि
0: भी नहीं
1: अब
0: था,
1: ये जगह
0: हाँ
1: जिंदगी ले
0: ये
1: जाने वाली है।
0: मेरी कार्यभूमि बनने वाली है 8 साल के लिए।
1: जी
0: और तब ये इश्तहार पढ़ा जब मैं ये फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, तो फिर उधर अगेन अप्लाई किया कि देखते हैं क्या होता है, एंड तो वहाँ चुनी गई मैं। और पहले 6 प्रोड्यूसर जो थे, भारत के पहले 6 टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, उसमें से मैं एक हूँ, ये मुझे बहुत नाज के साथ
1: क्या
0: कहने
1: शानदार
0: कह
1: बात है,
0: हाँ,
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: नाज के साथ मैं कहती हूँ। और मेरे साथ थे ए प्रताप करके थे, फिर एक वासुदेव थे,
1: पी
0: कुमार
1: कुमार
0: वासुदेव,
1: वासुदेव
0: पी
1: जी,
0: कुमार वासुदेव, जिसने अच्छे कुछ सीरियल्स पेश किए, और एक स्वदेश कुमार करके थे, और शमा जहदी थी,
1: ओहो
0: और हबीब तनवीर थे।
1: क्या बात
0: हाँ,
1: है, वाह वाह
0: लेकिन
1: वाह,
0: हबीब और शमा जल्द ही कुछ महीनों बाद छोड़ गए, तो हम 4 रह गए, लेकिन ये हम 6 लोग थे पहली पलटन में,
1: वाह
0: तो विच
1: वाह,
0: इज वंडरफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड सो इट वॉज फैबुलस, 8 मैजिक ईयर्स इन टेलीविजन। और वहाँ ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि कैसा करना है क्या करना है, जो मर्जी करो, क्योंकि देर वॉज नो एग्जाम्पल यू नो कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमें सिखाने जरूर आए थे, एक बहुत मशहूर ये BBC से आए थे वॉरन ये करके, तो उन्होंने सिखाया अच्छी तरह, लेकिन ये हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहे।
1: जी
0: हाँ, और बहुत कुछ कर पाए टेलीविजन में, और मज़ा भी बहुत आया।
1: वहां आपने बहुत अलग अलग तरह के काम किए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई,
0: जी
1: अबू अवार्ड जीता,
0: हाँ, यस, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, हाँ,
1: जी
0: तेहरान में।
1: वो चाय की टपरी वाला जो
0: हाँ जी, वो
1: वाली
0: छोटी सी
1: डॉक्यूमेंट्री,
0: फिल्म थी 10-11 मिनट की, वो मेरी पहली फिल्म कह सकते हैं हाँ
1: जी
0: टेलीविजन में। और वो क्या थी कि एक सीधी सी एक छोटी चाय की टपरी हाईवे पे, दिल्ली आगरा हाईवे, हाँ उसके एक किनारे, और वो एक सिर्फ एक औरत चलाती थी वो टपरी, चाय वही बनाए, कप वही धोए, वही पेश करें, पैसे वही गिने, झगड़ा वही करे ग्राहक के साथ वगैरह। और
1: बिल्कुल
0: वो छोटी सी औरत, ये तगड़े वहां ट्रक वाले रुकते थे, वो उनसे अच्छा निपटती थी, और बिल्कुल वो मजे से उसका चल रहा था, और इट वॉज वंडरफुल, ये अनपढ़ औरत कैसे चला रही है अपना काम और धंधा। तो इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल कि ये हमारे देश में एक अनपढ़ औरत भी कुछ कर दिखा सकती है। सो आई थॉट दैट वॉज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो इट वॉज, इट डिडन्ट हैव एनी डायलॉग, नथिंग, तो एक 10 छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उसको ये अवार्ड मिल गया, और हाँ मैं दंग रह गई, अरे ये ऐसा भी होता है। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर टेली फिल्म बनाई, मतलब ड्रामे ही कहो, टेली फिल्म तो क्या हुआ, ड्रामा ही हुआ ना एक तरह से।
1: जी जी
0: हाँ,
1: पोस्टर बनाने वालों पर काम
0: पोस्टर,
1: किया,
0: हाँ, तो दैट वाज आल्सो, दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री।
1: जी
0: तब ये फिल्मों के पोस्टर्स ये बनाते थे, हाँ, एक पूरा
1: हैंड
0: उनका
1: पेंटेड पोस्टर्स,
0: हैंड पेंटेड, हाँ, उनका एक जत्था होता था, तबका होता था उनका, और वो बेचारे कहीं गैराज वराज नुमा जगह उनको मिलती थी, वहां वो अपना ढेरा लगाते थे।

0: ढेर लगा सगा पोस्टर्स पड़े हैं, और वो अपने कच्छे पहने, बनियान पहने, रंग सब लगा हुआ, ऐसे वो बनाने में मशगूल होते थे। और वहां हम पहुंच गए तो क्या बात करें वो लोग, और जा मतलब पूरी दिल्ली की स्काईलाइन इनके पोस्टर्स से भरी हुई है ना। तो उनसे फिर बातें की, तो मुझे इतना अच्छा याद है कि एक वो सीढ़ी पे चढ़ के एक पोस्टर में किसी की आंख, मेरे ख्याल से शर्मिला टैगोर की आंख बना रहा था, और वो ऐसे नीचे देख के बात कर रहा था, हम ऐसे ऊपर देख के उसको सवाल पूछते थे। तो उसने कहा कि भाई हमारी ये असली लोक कला है,
1: वाह,
0: इसको लोक कला कहो, क्योंकि और लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते हमारी कला देखने को।
1: क्या
0: तुम
1: बात है।
0: लोग जाते हो बड़े बड़े उसमें एग्जीबिशन हॉल में, यहाँ वहाँ पैसे देके टिकट खरीद के देखते हो, और हमारी कला तुम्हारे पास आती है हाँ, और मुफ्त में वगैरह वगैरह। और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे भड़कीले पोस्टर बनाते हो, कोई बंदूक ताने हुए है, कोई नाच रही है, इसका घाघरा जो हवा में उड़ रहा है वगैरह वगैरह, तो ये बच्चे भी देखते हैं, उन पे असर होगा, बुरा असर, ऐसे नहीं तुम्हें लगता? तो उसने कहा अजी हम ये पोस्टर बनाते हैं, अब ये शत्रुघ्न ये देखो, और वहां सब ये थे हाँ पोस्टर, ये बंदूक ताने हुए हैं लेकिन इससे गोली नहीं छूटेगी,
1: वाह,
0: और ये मुमताज नाच रही है गोल गिरकी मार के, उसका घाघरा और नहीं ऊपर जाएगा, बस यहीं रुकेगा, लेकिन अंदर तुम फिल्म देखोगे तो क्या धुआंधार ये गोलियां चलेंगी, बारिश गोलियों की और तूफान ये, और नाच एक से भद्दे एक, तुम देखोगे खुश हो जाओगे, और वो चलता है वो नहीं, बच्चों की नीति बिगड़ जाती, हमारे पोस्टर देख के नीति उनकी बिगड़ती है वगैरह वगैरह, इतने चाव से वो बोला। मैंने कहा कान छुए मानती हूँ, और चलने दो, आपका काम बढ़िया हो रहा है, चलने दो। तो इट वॉज, अब ये पूरी दे आर नो मोर, पूरी गायब हो गई है,
1: पूरी
0: पूरी
1: वो, क्योंकि
0: वो
1: अब तो
0: कॉम
1: पोस्टर सब
0: कॉम ही
1: डिजिटल हो
0: गायब
1: गए
0: हो
1: हैं
0: गई।
1: ना। एमएफ हुसैन मिले थे
0: हाँ, अरे सॉरी, अरे एन एफ हुसैन इस डॉक्यूमेंट्री में थे ना, थैंक
1: जी।
0: यू, मुझसे ज्यादा आपको मालूम है। क्या है, किसी ने बताया कि अरे एम एफ हुसैन स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टर पेंटर, ऐसे
1: महाराष्ट्र में एक बड़ी
0: तोबा
1: परंपरा थी
0: हो,
1: जी।
0: तोबा तोबा। मैंने कहा अरे तब तो उनको पकड़ना ही है, और इत्तफाकन मेरी एक दोस्त के वो बहुत अच्छे करीबी थे तो उनसे मिले, और वो बहुत ही, ही वॉज अ वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी जेनरस, वेरी काइंड हार्टेड मैन। तो बहुत खुशी से वो हाँ हाँ मैं बिल्कुल पोस्टर पेंटर करके शुरुआत की, और बहुत बढ़िया बोले हो। उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरा पहला पोस्टर था जब दुर्गा खोटे का पाया की दासी, पायाची दासी करके मराठी फिल्म थी, वो पोस्टर मैंने बनाया, और क्या कहूँ, जब दुर्गा खोटे की होठों की लाइनें मैं खींच रहा था तो
1: जी
0: जो मैं बेहोश था, मतलब नशा जैसे चढ़ा, और कहता है हमको कितनी बिदागी मिलती थी, अठन्नी दिन की,
1: अरे अरे
0: अठन्नी, ये तो मेरे 50 रुपए से भी बदतर है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने उस दौर में एक बड़ा ही कठिन काम किया, और वो था एक डॉक्यूमेंट्री जो आपने पंकज मलिक पर बनाई।
0: हाँ,
1: ये
0: यस,
1: ख्याल कैसे आया था, और ये कठिन काम क्यों था? मैंने कठिन कठिनाई का जिक्र
0: हाँ,
1: किया क्योंकि इसको
0: कठिन
1: तोलो तो ये नाराज
0: ये,
1: वाला
0: हाँ
1: जो मामला था
0: नहीं
1: वो
0: वो
1: बताइए।
0: कठिनाई आई, और फिर उनको निपटते भी गए हम
1: जी,
0: बड़े चाव से। तो
1: ये
0: ये
1: आइडिया कहां से आया?
0: आइडिया ऐसे आया कि उस साल उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिक्लेयर हुआ था पंकज दा को
1: जी
0: हाँ, तो फिर मैंने कहा इन पर फिल्म बनाई जाए, तो फटाफट मैंने, मैं इस मामले में बहुत तेज थी, मैंने एकदम से वो बना के दिया हमारे स्टेशन डायरेक्टर को, वो तो बहुत खुशी से मान गई, हाँ हाँ वेरी गुड आइडिया, जाओ जाओ तुम कलकत्ता जाके ये फिल्म करो। फिर छोटा सा यूनिट बनाया, कैमरामैन ये वो, और कलकत्ता, अच्छा कलकत्ता जाके दादा ना माने पंकज मलिक, नहीं नहीं नहीं नो फिल्म, वो ऐसे वो बड़ी आवाज थी उनकी बुलंद,
1: हाँ,
0: कहते नो नो आई डोंट वांट एनी फिल्म, ऐसे नहीं नहीं दादा ऐसे कैसे वगैरह वगैरह, खूब फिर मैंने अपना इतना चार्म का जैसे ये लगाया दांव पे, मैंने कहा नहीं प्लीज ये यू हैव टू डू इट, ये देश के लिए जरूरी है, ये फिल्मों के लिए जरूरी है, हमारे लिए जो वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या बकवास किया, लेकिन आखिर में बेचारे मान गए और राजी हो गए। और मुझे इतना याद है वो मुझे माय डियर सिस्टर
1: हाँ
0: करके
1: वो इसी तरह
0: पुकारते
1: बोला
0: थे।
1: करते थे और खरजदार आवाज में
0: हाँ
1: रुक
0: बिल्कुल
1: रुक के बोलते
0: माय।
1: थे।

0: माय डियर सिस्टर करके फिर हम भाग के जाते थे पंकजा के पास। तो एनीवे और उन्होंने एक मुझे इतना अच्छा याद है कि टेरेस पे हमने शूटिंग किया और उनका वो गाना दो नैना मतवाले,
1: मतवारे
0: हाँ
1: तिहारे
0: हाँ
1: हम पर जुल्म
0: और
1: करें।
0: मैंने कहा अब यहाँ मेरा डायरेक्टर

0: होंगी। तो उन्होंने कहा उनको अच्छा लगा आइडिया, तो हमने शुरू किया और फिर दादा उसमें रंग में आए और वो फिर भाभी जी को देख के दो नैना वगैरह वगैरह आंखें मटक के ये वो, और फिर भाभी जी भी देखे हाँ, उन्होंने कहा
1: वाह वाह,
0: ऐसे क्या बताऊं मैं, सब हमारा पूरा यूनिट उछल गया। तो ये ऐसे ऐसे किया। और फिर मैंने कहा अच्छा दादा अब ये तो सब हुआ हंसी मजाक की वो उन्होंने किस्से सुनाए ये कर, फिर अब राय चंद बोराल जी का इंटरव्यू लेना बनता है,
1: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर।
0: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर। और रायचंद बोराल के बारे में कहते थे कि फिल्म म्यूजिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है,
1: ऑर्केस्ट्राइजेशन।
0: बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो दादा ने कहा नहीं, हाँ मैंने कहा नहीं, वो आदमी ये वो जो भी उनसे उनका था झगड़ा सालों से,
1: जी,
0: हमारी बातचीत नहीं है। मैंने कहा आप बेशक बात ना करो ना, बात हम करेंगे, आप क्यों बात करोगे उससे, लेकिन बोलेंगे तो जरूर उनको बोलना चाहिए। नहीं, फिर बहुत उनको सकती, ये एक इतिहास का हिस्सा है और ऐसे नहीं मना कर सकते हम, फिलहाल आपकी फिल्म पूरी नहीं लगेगी अगर उनको नहीं लिया। फिर आखिरकार मान गए, फिर बोराल साहब के पास गए, बोराल जी ऐसा था नहीं,
1: अरे
0: बंकर से
1: बाप
0: उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अरे वो, फिर उनको वही इतिहास और ये
1: रे
0: तो, अब तो मुझे अच्छी तरह प्रैक्टिस भी हो गई थी।
1: कैसे
0: मैंने
1: मनाया
0: कहा
1: जाता
0: नहीं
1: है।
0: नहीं बोराल साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं फलां का ये वो, फिर वो भी मान गए बहुत अच्छी तरह। और फिर इतना अच्छा अच्छा बोले पंकज दा के बारे में कि पूछो
1: वाह,
0: मत, बहुत तारीफ की।
1: एक और
0: और
1: शख्स को अपनाया
0: हेमंत कुमार
1: आपने।
0: बिल्कुल, और हेमंत दा का भी यही, उनसे भी बात नहीं थी, ये पता नहीं दादा किस किस से साथ झगड़े थे, लेकिन हेमंत कुमार से भी बातचीत बंद थी, लेकिन हेमंत कुमार भी फिर राजी हो गए, उन्होंने भी गाना गाया और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की। इस तरह हमारी फिल्म बन गई, लेकिन अफसोस कि इस फिल्म की एक फ्रेम भी नहीं अभी बची है।
1: ओहो,
0: एक आर्काइवल फिल्म देखो ना
1: जी
0: पंकज मलिक जैसे, और जब उनको ये अवार्ड मिला ना, तब जो अवार्ड लेने गए तो उनका ही गाना हमने साउंड ट्रैक पे बजाया, आई बहार आई
1: वाह,
0: आई बहार।
1: डॉक्टर फिल्म का गाना, क्या बात है। 40s की फिल्म है, शायद
0: जी
1: 41 की
0: जी
1: फिल्म है,
0: जी
1: आई
0: जी
1: बहार। लेकिन मुझे लगता है यहाँ दो नए ना मतवारे तिहारे ये गाना सुनते हैं।
0: अरे है आपके पास,
1: बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल।
0: बात है।

0: अब साज की तरफ आते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और मुझे लगता है आप अपने आप ही बताएं इस फिल्म के बारे में। कोई भी एक स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा।
1: मुझे अगर कोई फिल्म बनाते वक्त मजा नहीं आया हो तो दैट इज साज।
0: ऐसा क्यों?
1: पता नहीं, कुछ बात ही नहीं बनी। जहां इसके पहले हर फिल्म में एक कुछ जोश होता था, चाहे पपीहा हो, चाहे दिशा हो, कथा हो, कुछ भी, लेकिन इस बार ऐसे नहीं लगा। एक वो जो यूनिट का एक अपनापन होता है वो नहीं था, किसी के भी बीच एक को खोया खोया सा कुछ लगा। लोग बहुत गुस्सा हुए मुझ पर, बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि दे वर कन्विंस्ड दैट आई हैड स्क्रीन्ड द स्टोरीज ऑफ लता एंड आशा, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू। आशा और लता दोनों बहनें दूसरे को बेहद चाहती है, बेहद प्यार करती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धी राइवल्स करके एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं तो उनका रवैया क्या होता होगा, है ना? तो ये हमेशा मेरे ध्यान में ये था, तो उसको लेके फिर वो ये बात बनी। और शबाना हैड कम टू मी कि कुछ वुमन बेस्ड फिल्म करो, प्लस चैनल को चाहिए कि तुम फिल्म डायरेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो दिस केम अप एंड वी सिलेक्टेड दिस टू डू अ फिल्म ऑन आशा भोसले, बट अ फिक्टिशियस फिल्म टेकिंग द इंस्पिरेशन ऑफ आशा स्टोरी।
0: जी
1: हाँ, तो ना उसमें कोई उनका जरा भी, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म द मदर डाइज ऑफ द सिस्टर्स, हालांकि माई मंगेशकर वॉज टोटली देयर टू सी द यू नो सक्सेस ऑफ बोथ हर डॉटर्स राइट टिल द एंड, एंड शी डाइड एट अ वेरी राइप एज। देन इन माई फिल्म द लव स्टोरी ऑफ बोथ द सिस्टर्स हैव द सेम कनेक्शन विद द म्यूजिक डायरेक्टर, विच इज अगेन नॉट ट्रू फॉर आशा एंड लता एज फार एज आई नो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेज। इन फैक्ट इन द फिल्म द ओल्डर सिस्टर हरसेल्फ अरुणा ईरानी डाइज, यू नो, इन द फिल्म। सो अगेन एंड लता जी वॉज विथ अस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो देयर वॉज नथिंग, रियली नथिंग, इट वॉज नॉट एट ऑल
0: जबरदस्ती
1: बायोग्राफिकल फिल्म नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि दोनों प्ले बैक सिंगर्स, दोनों बहनें वगैरह वगैरह, और दो किस्से जो एक्चुअल थे वो मैंने जरूर इस्तेमाल किए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग नथिंग नथिंग इज फ्रॉम देयर लाइफ। बट आई सेड दिस एंड टोल्ड दिस एंड टिल आई वाज ब्लू इन द फेस। पर लोग मानने को तैयार ही नहीं है, दे आर कन्विंस कि नहीं ये तुमने ओके बाबा बनाई तो बनाई।
0: पर अब राकेश साहब को कैसे राजी किया?
1: वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, जट से मान गए, बहुत माने। He gave good music, but I had four music directors.
0: जी, पहली बार ऐसा हुआ?
1: Yeah, क्योंकि ये फिल्म ही प्लेबैक सिंगर्स की थी, तो मैंने कहा लाजमी है कि अलग अलग ये हो ना म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक ही का कितना भी चाहे वो वैरायटी लाने की कोशिश करे, इट विल मेक अ डिफरेंस इफ यू हैव फोर डिफरेंट पीपल। सो वी हैड राजकमल, वी हैड यशवंत देव, जाकिर हिमसेल्फ एंड भूपेन हजारिका,
0: जी,
1: फोर पीपल। एंड अगेन द सैड स्टोरी ऑफ साज वॉज दैट बाय द टाइम इट एक्चुअली प्लस चैनल हैड स्टार्टेड दिस वेरी एक्साइटिंग आइडिया दैट दे गॉट टूगेदर एट सो कॉल्ड गुड फिल्म डायरेक्टर्स, पैरेलल सिनेमा डायरेक्टर्स, नॉट द कमर्शियल यूजुअल पीपल। हाँ, उनसे एक एक फिल्म बनवाई, ऐसे उनका इरादा था और उस हिसाब से किया। बट आई वॉज थ्रू आउट बिजी एंड आई वॉज ओनली फ्री एट द एंड ऑफ दिस चेन, एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एट द एंड। तब तक बासु चैटर्जी हुए, अरुणा राजे हुई, सुधीर मिश्रा हुए, और भी ऐसे सात आठ लोग हुए, एंड एवरी फिल्म फ्लॉप्ड। एक भी फिल्म दो तीन दिन से ऊपर नहीं हुई, दे ऑल फ्लॉप्ड आई थिंक। एंड विथ द रिजल्ट दैट थिएटर्स took out proclamation saying that Plus Channel will not get any theatre to show any film because they have not paid their dues. So, Saz didn't have a theatre.
0: अरे अरे अरे.
1: Television पे दिखाई.
0: जी जी जी.
1: तो ऐसा ऐसा हुआ. So bad luck all the way. So it's not been a जो एक happy ये होता है ना experience. So unfortunately, Saz was not a happy experience for me.
0: जी. थोड़ा सा पीछे चलते हैं. यहाँ कुछ चीजें जो हैं उनका जिक्र मैं जरूरी तौर पर करना चाहता हूँ। एक तो ये लाल अडवाणी की प्रेरणा जो एक तथ्य आया, लेकिन इस फिल्म के लिए मूल रूप से जिन लोगों का आपने चुनाव किया था, मतलब

0: यहां संजीव
1: संजीव
0: कुमार या फिर
1: कुमार
0: वो अमोल पालेकर वाला क्या किस्सा है, वो सब मैं
1: वो
0: जानना चाहता
1: अभी
0: हूं।
1: वो क्या है, मैंने कहा ना कि बहुत लंबा किस्सा है,
0: जी,
1: तो
0: थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ते हैं।
1: अच्छा, तो जब ये फिल्म लिखी मैंने पटकथा, तो प्रोड्यूसर तो चाहिए ही, फिर
0: जी
1: मैंने कहा प्रोड्यूसर से पहले एक्टर्स तय करते हैं, और एक्टर सोचूं तो अमोल मेरा अच्छा दोस्त था,
0: जी
1: मेरे घर दिल्ली में मतलब रह भी चुका था, आके मैंने अमोल का टेलीविजन में इंटरव्यू करवाया था, तब वो बिल्कुल ही उभरता सितारा था, मतलब उभर गया था। हाँ, तो मैंने कहा अमोल तो है ही, अपना दोस्त है और वो बढ़िया ये रोल करेगा। फिर मैंने फोन किया अमोल को कि अमोल ऐसा ऐसा है, तब अमोल ने कहा अभी देखो सही मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम समझ सकती हो। मैंने कहा हाँ वो तो जाहिर है, लेकिन वो कहा कि शाम को आज ही मुझे अवार्ड मिलने वाला है, फिल्म मिरर करके एक पत्रिका थी, तो उनका मुझे अवार्ड मिलने वाला है, पार्टी है। मैंने कहा इत्तेफाक से मुझे भी इस पार्टी में बुलाया है, तो वहां ले आओ स्क्रिप्ट। मैंने कहा ठीक है, मन में कहा कि पार्टी में स्क्रिप्ट देना, लेकिन खैर कह रहे हैं तो क्यों नहीं। तो आई वेंट विद द स्क्रिप्ट, और पूरी शाम फिर मुझे ये एक बहुत मजे का ये रहा कि मैं अमोल को स्क्रिप्ट देने जाऊं और वो कुछ उसी वक्त अरे हाँ हाँ आया आया करके किसी और को दूर देख के वो इशारा करके एकदम से निकल जाता था। ऐसे 5-6 दफे हुआ, और मेरे साथ तब एस एन मूर्ति भी थे, वो हम साथ साथ घूम रहे थे पार्टी। तो फिर मूर्ति साहब ने मुझे कहा कि सही मुझे लगता है वो तुम्हें टाल रहा है, और तब मैं एकदम ऐसे बुत जैसे खड़ी रही, और मैंने कहा हाँ ये तो है ही, और मैं इतनी बेवकूफ कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये मुझे टाल रहा है, मुझे ये कर रहा है, और क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे यहाँ रह के गया है, ये वगैरह वगैरह, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ। तो फिर मैंने अमोल का ये छोड़ दिया, और तब तक अलकनंदा समर्थ करके एक बहुत बढ़िया मेरी एक दोस्त बन गई। अलकनंदा वॉज अ फैंटेस्टिक एक्ट्रेस, जो सत्यदेव दुबे के साथ बहुत काम कर चुकी थी, अलकाजी साहब की वो नंबर 1 हीरोइन थी, और अलकनंदा ने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल्स किए थे, वो लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में सीखी थी, पढ़ी थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी। और उसकी मौसेरी या कोई बहन थी तनुजा, ये तुम इत्तेफाक जरूर कह सकते हो, क्योंकि जब मैंने लिखा ना पटकथा, जब लिखी तब मेरे कैरेक्टर्स आते हैं सामने, है वो हवा में नहीं लिखा जाता,
0: जी
1: लेकिन कोई ठोस नजर के सामने होता है, वैसे संजीव कुमार और तनुजा ये मेरे सामने थे दोनों, और वो बोलते जाते और वो संवाद मिलते, तो तनुजा, और तो मैंने कहा ये तो कमाल है तनुजा, तुम क्या कह रही हो, कहते हाँ मेरी बहन है, लवली पर्सन, जरूर मिलो उसको वगैरह वगैरह। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तनुजा के साथ मैं मिली, और तनु मुझे संजीव कुमार के पास ले गई, संजीव कुमार का बिल्कुल ही मन नहीं था सुनने को, लेकिन तनुजा ने किसी तरह उनको चुप करवा के सुनवा ही दिया, और फिर वो उनको बहुत पसंद आई कहानी।
0: लेकिन वो शेव बना रहे थे।
1: अच्छा, तो जब हम पहुंचे तो बिल्कुल ही ऐसे जाहिर हो रहा था कि उनको जरा भी खुशी नहीं हुई है, और तनुजा ने बहुत जबरदस्ती से उनको ये पकड़ा है। तो खैर उन्होंने कहा कि देखो अपॉइंटमेंट है और मैं सिर्फ आपको 20 मिनट दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें। और फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं दाढ़ी करते करते सुनूं तो आपको एतराज तो नहीं। अब फिर वही बात, अब मैं कैसे कहूं कि हाँ हाँ मुझे इतराज है। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, आप दाढ़ी बनाते जाइए, मैं पढ़ते। तो खैर मैं पढ़ने लगी, और वो अपना साबुन लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, और धीरे धीरे क्या, मैं अच्छा पढ़ती हूँ यूनुस, इसमें कोई मॉडेस्टी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचपन से ही आपको बताया था नाना के साथ माँ के साथ मैं पढ़ती रही,
0: ओरेटरी वाला
1: फिर
0: सारा।
1: आकाशवाणी पुणे की एक सीख थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सीख थी, तो मैं अच्छा पढ़ती थी। बहरहाल तो वो मैं पढ़ने लगी, और धीरे धीरे उनका दाढ़ी का ब्रश का हाथ रुकता गया, धीरे धीरे धीरे नीचे आ गया हाथ, और अब बॉडी लैंग्वेज तो अपन लोग इस माध्यम में है तो समझ ही लेते। मैंने मन में कहा कि अच्छा आई हैव कॉट द फिश नाउ। तो फिर सुनते सुनते सुनते फिर वो आगे झुक के सुनने लगे, एवरी साइन की जो जिससे जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल उसमें आ, तो और 20 मिनट हुए और मैं रुक गई। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पढ़िए। मैंने कहा नहीं 20 मिनट तो हो गए। इसे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो अब खत्म करते। मैंने कहा नहीं अब मुझे कहीं जाना है, मुझे भी एक अपॉइंटमेंट है, और तनुजा मुझे आंखें फाड़ के देखे कि ये पागल तो नहीं होगी, इतना अच्छा मौका मिला और ये क्या कह रही है कि मेरा अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन मन में मैं कुछ नाराज सी हो गई थी उनके बर्ताव से, और ये भी मुझे समझ में आया था कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी कुछ सुना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्क्रिप्ट छोड़ के जाओगे क्या? मैंने कहा जरूर। तो स्क्रिप्ट फिर छोड़ के गए, 2 दिन बाद तनु का फोन आया कि ही हैज लव द स्क्रिप्ट और वो जरूर चाहते हैं करना, और फिर मिलते हैं। फिर हम मिल गए और उसके बाद फिर इतने दरवाजे खटखटाए, बीआर चोपड़ा और राजश्री प्रोडक्शंस और जीपी सिप्पी वगैरह वगैरह तब के जो जो, लेकिन कहीं बात कुछ नहीं बनी। फिर बाशु भट्टाचार्य से मुलाकात हुई और बाशु ने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ, और तब फिर प्रोड्यूसर मिल गया। तो फिर मैं इनके पास जब गई संजीव कुमार को मिलने, उन्होंने कहा था कि हाँ जब तुझे प्रोड्यूसर मिले तो मैं अपना टाइम निकाल के जैसा भी हो, कुछ भी मेरा चल रहा हो काम, मैं तुम्हें डेट्स दे दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इसकी वजह ये थी कि बाशु भट्टाचार्य के साथ पहला उनका जो था अनुभव, उन्होंने फिल्म जो बनाई थी वहाँ उनको बहुत बुरा ये उनका ये रहा एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जब सुना कि बाशु इसका प्रोड्यूसर है तो वो हट गए, और जैसे वो हट गए तो किसी ने मुझे बताया कि नसीर को क्यों नहीं तुम पूछती हो। तो नसीर तो स्कूल ऑफ ड्रामा के थे, तो नसीर से जब मिले, नसीर ने बहुत खुशी खुशी स्क्रिप्ट पढ़ा, ही लव द स्क्रिप्ट एंड देन शबाना नेम, बिकॉज तनु एंड नसीर वुड नॉट मेड अ गुड कपल यू नो। तो फिर शबाना को अप्रोच किया और शबाना वॉज थ्रिल टू बेस, और फिर शबाना और नसीर तय हो।
0: क्या बात है, शबाना और नसीर तय हो गए। नसीर और शबाना का जब जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एक बात ये आती है कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने दो दो फिल्में की हैं, चाहे नसीर हो, शबाना हो, दीप्ति हो और फारूक शेख। मेरे ख्याल से ये चार लोग तो मुख्य रूप से हैं। आपके डायरेक्शन के अम्ब्रेला के नीचे ये कलाकार दो दो बार आते हैं, जाहिर है कि उनसे एक खास आत्मीय रिश्ता आपका नजर आता है। तो इन चारों से जुड़ी कुछ कुछ बातें हम छोटी छोटी करते हुए आगे चलते हैं। मुझे यहाँ खासतौर पर जो मैं नसीर का जिक्र कर रहा हूँ,
1: एक और भी कलाकार रह गया इसमें, ओमपुरी।
0: ओमपुरी जी जी बिल्कुल, तो ये पांच हो गए। नसीर का जिक्र क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ी मजेदार घटना है जब उन्होंने अपनी बायोग्राफी मराठी में अनुवादित करने के लिए आपको अप्रोच किया, तो वो ड्रामा के डायलॉग में बात हुई थी।
1: ड्रामा के नहीं, वो नॉवेल
0: नॉवेल के डायलॉग में बात हुई थी,
1: और चार्ल्स डिकेंस जैसा नॉवेलिस्ट। हाँ, और नसीर, तो नसीर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वो एक महान कलाकार तो है ही, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, विच इज सो रेयर इन आवर इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली। कोई ज्यादा ये अच्छे मतलब क्लासिक्स पढ़ा हो या कुछ जानकारी जिन्हें हो लिटरेचर के बारे में, ऐसे कम ही नजर आते हैं लोग, लेकिन नसीर ऐसा था जिसकी बहुत ही जानकारी फैंटास्टिक थी। और इसका श्रेय मैं नसीर को नहीं है जो मुझे पूछा ट्रांसलेशन के लिए, बल्कि रत्ना को है। नसीर की बीवी रत्ना ने नसीर को बताया कि सई को क्यों नहीं पूछते हो, सई विल डू अ वेरी गुड जॉब। एक तो शी विल अंडरस्टैंड तुमने क्या लिखा है, और तुम्हारे बिल्कुल जो बारीकियां और जो उसमें से जो सटल चीजें हैं वो समझ पाएगी, तो सई को पूछ लो। नसीर को अच्छा लगा सुझाव, और फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं कब आऊं, तुम कब फारिग हो, और मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है नहीं बताया, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने कहा नसीर को मुझसे क्या बात करनी है, मैंने कहा कभी भी आओ फलाना, वो तय हो गया। तो फिर वो आ गए, नसीर आ गए, और उन्होंने कहा ऐसी मेरी आत्म कहानी है और मैं चाहता हूँ कि इसका मराठी तुम करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दे दो और मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, तो फिर कहते मिसाल के तौर पर मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ, और बदमाश इतना नसीर की वो चैप्टर स्पर्श के बारे में उन्होंने जो लिखा था वो चैप्टर नेचुरली वो ले आए, जिसमें मेरी तारीफ वगैरह थी। तो उसका ये एकदम जो चाहते थे वो उसका हो गया इफेक्ट, और मैंने सोचा कि हाँ ये तो करना ही है, दिस इज रियली अ मेजर कॉम्प्लीमेंट। मोटी किताब थी, हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो थोड़ा सा मैं डर गई थी क्योंकि मेरे और काम
0: एंड देन वन डे
1: एंड देन वन डे। लेकिन फिर मैंने उनको एक मैसेज भेजा
0: जी, हाँ? जी,
1: और मैसेज था कि वो डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर है, गाड़ी जो चलाता है, हाँ? उसका नाम है बार्किस,
0: बार्किस
1: बार्किस, और एक मुटल्लो औरत मेड उस घर में काम करने वाली, खूब मोटी, और वो सदियों से दोनों वो हैं, और वो दोनों का कुछ इश्क तो नहीं कह सकते लेकिन एक दूसरे को चाहते हैं दूरी से थोड़ा सा

0: और पेगटी बेचारी चाहती है कि ये कभी ना कभी तो पूछे मुझे शादी के लिए। तो लेकिन बार्केस बड़ा घुन्ना आदमी, वो कुछ बात बात नहीं करता,
1: चिकनी
0: चिकनी
1: चुपड़ी।
0: चुपड़ी। हाँ, लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो सिर्फ इतना ही कहता है कि बार्केस इज विलिंग, मतलब
1: वाओ।
0: बार्केस राजी है। राजी किस लिए? शादी के लिए। और तब पेगटी जो खुश हो जाती है, इतनी खुशी से वो फूली नहीं समाती। तो मैंने सिर्फ नसीर को ये एक सेंटेंस भेजा, बार्केस इज विलिंग,
1: वाओ।
0: और मुझे मालूम था कि ये तो डेफिनेटली उसको मालूम है 100% कि ये बार्केस क्या बला है, क्या है। हाँ, तो
1: हाँ।
0: फिर फट से नसीर का जवाब आया, पेगटी इज डिलाइटेड।
1: क्या बात है, इसको कहते हैं
0: नहले
1: नहले पे दहला।
0: पे दहला, बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: जी
0: फिर काम शुरू हुआ, एंड ही वॉज थ्रिल्ड विद द ट्रांसलेशन, एंड इट वन एन अवार्ड साहित्य
1: यस,
0: अकादमी का।
1: बिल्कुल।
0: हाँ,
1: और नसीर ने काफी तैयारी की थी स्पर्श के लिए।
0: अरे बाबा, काफी नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा कहो।
1: जी
0: उसका किस्सा मुझे सुनाने दो
1: जी
0: कि शूटिंग जाने से पहले नसीर को ये तो पता चला कि ये मेरी जो कहानी है, ये इसका इंस्पिरेशन अजय मित्तल है। हाँ, उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ, उनका पूरा काम देख के। उन्होंने कहा, नसीर ने, कि सही, मैं चाहता हूँ कि मेरे रोल के लिए बहुत मदद होगी कि एक तुम लोग आओगे उसके पहले मैं एक 8-10 दिन जाके थोड़ा मित्तल साहब के इर्द गिर्द रहूंगा, उनको देखता जाऊंगा और परेशान नहीं करूंगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन उनका मैं देखना चाहता हूँ रवैया और ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ उनसे, ऑब्वियसली आई कांट से कि हाँ जाओ, आई हैव टू आस्क हिम। तो मैंने फिर मित्तल साहब से पूछा, और मित्तल साहब वॉज वेरी फ्लैटर्ड नेचुरली के कितना अच्छा इंपॉर्टेंट स्टार अपने को स्टडी करना चाहता है। उन्होंने कहा हाँ, अरे जरूर, ये भी पूछने की बात है वगैरह वगैरह। तो फिर नसीर साहब पहुंचे, और उनका हमारे पहले ही पहुंचे, फिर हम लोग सब यूनिट ये वो कैमरामैन फलान ढिमका सब हम लोग शूटिंग के पहले 5-6 दिन पहुंच गए। और जैसे ही हम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में पहुंचे, तो गेट के पास ही मित्तल साहब भागे भागे भागे आए, सही जी प्लीज सुनिए सुनिए। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा परेशान है, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि प्लीज अपने हीरो को जरा हटा दो, अब ऐसी नौबत आई है, वो इतना मेरे पीछे पीछे पीछे, मैं क्लास जाऊं तो नसीर पीछे है, मैं प्रार्थना ले लूं बच्चों की, नसीर साथ में खड़े हैं, मैं बच्चों का खेल देखूं तो नसीर मेरे साथ हैं, खाने पे जाऊं तो नसीर मेरे टेबल पे बैठे हैं। इसे अब ऐसा वक्त आ गया कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता, मैं बहुत डर गया हूं, प्लीज आप अपने हीरो को जरा सा थाम लीजिए। फिर मैंने नसीर को कहा कि नसीर अब बस भी हुआ, बहुत हो कर गया ऐसे। नहीं नहीं हो गया हो गया, मैंने कहा बिल्कुल हट जा, डोंट डिस्टर्ब हिम ना। तो और फिर जो नसीर ने किया है, मैं क्या उसकी तारीफ करूं, वो तो पर्दे पे है, सबने देखा है, उनको अवार्ड भी मिला नसीर को, बेस्ट एक्टर
1: नेशनल
0: अवार्ड,
1: अवार्ड।
0: नेशनल अवार्ड मिला, और क्या कहना है, लेकिन बेहतरीन। और हाँ, एक मजे की बात यह, जब नेशनल अवार्ड जाहिर हुआ, तब नसीर बंगलोर में थे किसी और शूटिंग के लिए, और उस फिल्म में और कौन मौजूद थे? संजीव कुमार। तो जैसे ये सबने कहा अरे नसीर तुमको अवार्ड मिला, वाह वाह वाह वाह, तो संजीव कुमार ने वेरी स्वीटली ही सर, अरे ये तो पार्टी बनती है और पार्टी मैं दे दूंगा। बड़े जिंदा दिल थे, तो संजीव कुमार ने पार्टी बड़ी डिक्लेयर की, नसीर को अवार्ड मिला। देन ही सेड कि नसीर क्या आखिर क्या ये रोल किया क्या तुमने, ऐसी क्या तोप अदा की? तो नसीर ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा अंदर, फिर वो चुप हो गए, कहते अरे शायद ये रोल मैं करने वाला था, इसे मुझे भी शायद अवार्ड मिल ही जाता।
1: हो,
0: दैट वाज अ वेरी स्वीट
1: जिंदगी की
0: थिंग।
1: नाटकीयता का कोई मुकाबला नहीं है, का
0: जब
1: कोई
0: बताइए
1: मुकाबला
0: जरा कितना ये सब नाटकीय था। ओह नहीं, इसलिए ये स्पर्श जो है ना, मेरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन के रह गई है कि मैं कह नहीं सकती हूँ, इट्स वंडरफुल।
1: तीन अवार्ड्स मिले थे।
0: जी, एक पटकथा के लिए, मेरी मेरी अपनी पटकथा, एक बेस्ट हिंदी फिल्म और एक बेस्ट नेशनल अवार्ड एक्टर का।
1: बेस्ट हिंदी
0: हाँ,
1: फिल्म का अवार्ड बासु ले गए।
0: वो प्रोड्यूसर थे बाबा।
1: एक अमृता प्रीतम का कनेक्शन है,
0: हाँ,
1: वो बताइए।
0: वो वहां बाशु का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का था,
1: जी
0: बल्कि मेन वजह ये है कि मैं जो इतनी फिदा हो गई इस कैरेक्टर पे, बाशु भट्टाचार्य, इट वॉज सच अ डिलाइट। इतना बोलते वक्त, मतलब कहीं मेरे मन में अभी भी एक छोटी सी जगह अच्छी है बाशु के लिए।
1: क्या बात है,
0: यस,
1: वाह।
0: एंड ही हैड अ टेररिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। पहले जब मैंने उनका भाषण सुना, वो तब एक थे फिल्म हिस्टोरियन जिनका नाम अब याद नहीं आ

0: लेकिन हिंदी फिल्म्स पर उन्होंने कुछ मोटी सी किताब लिखी और बासु के हाथ से लॉन्च हुई किताब, फिरोज रंगून वाला।
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: फिरोज रंगून वाला की किताब। तो बासु बात कर रहे थे और मैं आई वेज गॉन टू हियर दैट फॉर द लॉन्च, आई वेज इन्वाइटेड। तो बासु ने कहा कि लोग कहते हैं कि स्टार वैल्यू हो तो फिल्म चलेगी खूब, अच्छे स्टार है। कहता ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, और दोनों उस वक्त अपने अपने फील्ड में चोटी पे थे। महिलाओं में शर्मिला के साथ में कोई नहीं था, और इधर राजेश खन्ना तो टॉप था ही था। और दोनों को लेके कहता है मेरी फ्लॉप वैल्यू इतनी महान थी कि मैंने फ्लॉप करके दिखाई फिल्म। कि ये दोनों को लेकर भी, तो ये बहुत
1: अनुभव
0: गलत है कि स्टार हो तो। इसलिए बासु मुझे लगा कि ये बिल्कुल फैंटेस्टिक बंदा है, अपना खुद का मजाक उड़ा सकता है जो आदमी, मुझे बहुत पसंद है। और फिर हमारी दोस्ती बन गई। अमृता प्रीतम की उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ बासुस। और हमारे फिल्म को अनफॉर्चुनेटली कहो, क्योंकि वो सारे पैसे मैंने बासु को दिए, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बकुल पटेल, उनकी मदद से, मेहरबानी से, और विजय मर्चेंट जैसे लोगों की मदद से हमें बहुत अच्छे अच्छे ये फंडिंग मिला। हाँ, और वो सब मैंने चेक बासु को दे दिया, जो उन्होंने गृह प्रवेश में डाल दिया अपनी दूसरी फिल्म। एनीवे, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए हमें उन्होंने कहा कि अमृता प्रीतम करेंगी इसका हिसाब किताब ये सब। और हमारा जो मैनेजर था सुदेश स्याल, दोस्त ही था मेरा, सुदेश को कहो कि जैसा जैसा खत्म होगा, जब तुमको नया वो चाहिए होगा अमाउंट, तो अमृता जी को पहला हिसाब किताब देना, उनको बताना कि किस लिए चाहिए आगे का, और फिर उनसे ये ले लेना अगला। तो फिर वैसा ही हमने किया। फिर बासु कहता था कि देखो, एक बढ़िया बेहतरीन कवियत्री को तुमने, तुम्हारी फिल्म के लिए बेचारी अकाउंटेंट बन गई।
1: लेकिन ये मजेदार बात है ये।
0: सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब का था ही
1: जी,
0: बासु का।
1: यहां मुझे लगता है तो
0: हाँ
1: अनुभव का गाना आप सुन लेंगे।
0: हाँ अरे वो तो गाना
1: मेरी
0: बहुत ही सुन, वो मुझे जान कहो मेरी जान।
1: जान मुझे
0: हाँ,
1: जान कहो,
0: क्या
1: गीता रॉय
0: बात
1: की
0: है,
1: आवाज।
0: कनू रॉय,
1: हाँ
0: अरे वो तो इतना गाना सुंदर है, प्लीज
1: जी,
0: जरूर जरूर सुन।
1: क्या बात।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए।

0: के उद्घाटन मैच में अब से थोड़ी देर बाद जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब के बीच मैच खेला जाएगा। रांची में ग्रुप सी के 6 मुकाबले होंगे, इसके अलावा एक क्वार्टर फाइनल मैच भी खेला जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हुई मुलाकात में प्यार चुपके से दिल का दरवाजा खटखटा देता है, और जब ये एहसास दस्तक देता है तो साधारण दिन भी खूबसूरत लगने लगता है। वो पहली मुलाकात का पल अपने साथ एक अलग ही एहसास लाता है। वो मुलाकात कुछ खास थी जब पहली बार मिले थे हम। क्या था उस लम्हे में कि धड़कनों ने तेज रफ्तार में आकर कह दिया कि दिल ढूंढ रहा था जिस खास को, वो तुम हो, बस तुम। याद है तुम्हें वो चांद की ठंडी चमकती चांदनी रातें, जब बेहिसाब प्यार लुटाते थे हम एक दूसरे पर। तुम्हारा यूं एक तक देखना और कह उठना कि तुम परी सी दिखती हो, इस सारे जहां में बस तुम ही तुम दिखती हो, जिसे सारे दुख सुख कह सकूं, तुम वो एक हमसफर सी दिखती हो।

कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो तो चुपके से बिन कुछ कहे दिल के किसी कोने में उतर जाता है। पहले एक एहसास बनकर, फिर एक आदत बनकर, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बनकर। पता ही नहीं चलता कि कब किसी की बातें अच्छी लगने लगती हैं, कब उसकी मुस्कान दिन की सबसे खूबसूरत वजह बन जाती है, और कब उसकी मौजूदगी से हर मौसम सुहाना लगने लगता है, जैसे लंबे अंधेरे के बाद सूरज की पहली किरण। उसकी मौजूदगी से मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। उसके साथ बिताया हर पल किसी खूबसूरत कविता की तरह लगता है, जिसमें शब्द कम और एहसास ज्यादा होते हैं। जब कोई दिल के करीब होता है तो उसकी खुशियां और दुख अपने लगने लगते हैं, और उसके साथ भविष्य के सपने सजने लगते हैं।

प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है। किसी के इंतजार में वक्त का ठहर जाना, किसी की आवाज सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाना और बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ लेना, यही तो है प्यार की सबसे खूबसूरत भाषा। ये वो एहसास है जिसमें दो दिल अलग होते हुए भी एक दूसरे की धड़कनों को सुन लेते हैं और खामोशियां भी कह उठती हैं कि मेरे दिल की हर धड़कन का नाम तुम हो, क्योंकि अब हर धड़कन में तुम्हारी मौजूदगी महसूस होती है। मेरे हर ख्वाब का मुकाम तुम हो, क्योंकि भविष्य की हर कल्पना में तुम्हारा साथ शामिल है और मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी तुम हो, क्योंकि तुम्हारे बिना ये कहानी अधूरी है।

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत, कोई ऐसा जिसके साथ जीवन जीने का अर्थ समझ आने लगता है, जिसके साथ बिताया हर पल किसी खूबसूरत कहानी की तरह लगता है, जिसमें भावनाएं हैं, सपने हैं, इंतजार है और प्यार की वो गहराई है जिसे शब्द पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। कभी कभी ये डर भी लगता है कि कहीं ये सपना टूट ना जाए, क्योंकि जो चीज दिल के सबसे करीब होती है उसके खोने का डर भी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन फिर उसकी एक मुस्कान, उसका एक विश्वास भरा शब्द सारे डर मिटा देता है और दिल फिर से उम्मीदों के आसमान में बेपरवाह सा उड़ने लगता है। और जब जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें तो लगता है कि जैसे जिंदगी की हर राह, हर मोड़, हर संघर्ष सिर्फ उस तक पहुंचने के लिए था, जैसे सारी दूरियां, सारे इंतजार और सारी अधूरी दुआएं बस एक उसके मिलने पर आकर पूरी हो गईं।

तुम्हारे मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने अचानक मुझे अपना लिया हो, जैसे बरसों से बंद पड़ी किसी खिड़की से धूप दबे पांव भीतर चली आई हो। उस पल एहसास हुआ कि कभी कभी एक व्यक्ति का मिल जाना पूरी दुनिया के मिल जाने जैसा होता है। तुम्हारे आने से पहले लोग तो बहुत थे लेकिन कोई अपना नहीं था। सपने तो बहुत थे लेकिन उन्हें साझा करने वाला कोई नहीं था। फिर तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा और हर अधूरा एहसास पूरा होने लगा। अब खुशियां आने की वजह नहीं ढूंढती। तुम्हारी एक मुस्कान दिल को रोशनी से सराबोर कर देती है। तुम्हारी एक आवाज मन के सारे शोर को शांत कर देती है। तुम्हारा साथ ऐसा लगता है जैसे किसी लंबे सफर के बाद मुसाफिर को अपनी मंजिल मिल गई हो।

जाता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो हमारी खामोशियों को समझता है, कोई है जो हमारी मुस्कानों के पीछे छिपी हुई भावनाओं को पढ़ लेता है और हमारे हर सुख दुख को हमारे साथ बांट लेता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है, तो मेरा बस यही जवाब होगा, तुम केवल मेरी कहानी का हिस्सा नहीं हो, तुम ही तो मेरी कहानी की खूबसूरती हो, तुम केवल मेरा सपना नहीं हो, तुम तो मेरी सपनों की ताबीर हो। तुम्हारे मिलने के बाद मुझे किसी और चीज की चाह नहीं रही, क्योंकि प्रेम का सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि किसी अपने को पा लेने में होता है।

हमारे श्रोता सुनते थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी

श्रोताओं, अभी अभी भारतीय प्रसारण सेवा सुन रहे थे। मैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:34 हुए हैं। आरंभ है आज की सायंकालीन सभा। सायंकालीन सभा में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सायंकालीन सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम विवरण।

अभी से थोड़ी देर बाद हम लेकर हाजिर होंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। आप सुनेंगे युवावाणी युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। कारगिल विजय दिवस पर चर्चा होगी डॉक्टर ही साथ ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर भी हम बातें करेंगे। वार्ता में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कैसे करें, वार्ताकार है मिथिलेश कुमार सिन्हा। रांची से आप सुनेंगे शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची केंद्र से। शाम के 6:02 पर हम लेकर हाजिर होंगे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी। चर्चा में बतख पालन के अतिरिक्त आय, साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भेंटवार्ता में सफल किसान से भेंट वार्ता आप सुनेंगे। भेंटवार्ताकार हैं अनिरुद्ध मेहता भोंगा पाटन पलामू से, भेंट करता है संतोष कुमार। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जननी, ग्रामीण महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम। चर्चा में महिलाएं अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, बेटियों को दे आत्मरक्षा का ज्ञान। वार्ता में स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, वार्ताकार हैं कृति सिंह। शाम 6:55 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी की रांची केंद्र की प्रसारण सेवा, जिसमें 7 बजे प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर जिले में आजकल, 7:15 पर हम लेकर हाजिर होंगे गीत गजलों का कार्यक्रम स्वराजली अपने स्टूडियो से, 7:45 पर लोकगीतों का कार्यक्रम महुआ। आज के कलाकार हैं जनक सिंह महतो। चित्रपट से फिल्म संगीत का कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8 बजे। 8:30 पर गीत संगीत गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे। 8:45 पर हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार, 9:30 पर विविध भारती की प्रसारण सेवा आप सुनेंगे आज के फनकार। रात्रि 10 बजे हम लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार। और अपनी सभा का समापन हमेशा की तरह श्रोताओं करेंगे।

रात्रि 11:10 पर। तो ये थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। युवा साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और आज खास दिन इसलिए है कि आज है 26/7/2026 और आज हम बात करेंगे कारगिल विजय दिवस पर। और आज के कार्यक्रम कारगिल दिवस पर विशेष जो है हमारा कार्यक्रम, जाहिर सी बात है उनके नाम है आज का दिन, जिन्होंने हमें खुले आकाश में जीना सिखाया, रहना सिखाया, उनकी वजह से हम हैं। अगर वो आज ना होते तो हम ना होते। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी हमें सिखाया कि अपने वतन के लिए कैसे हमें जीना है, कैसे हमें मरना है। साथ ही अगर हम उनकी बात करें, उन्होंने अपनी परवाह किए बगैर हमें हमारे रक्षा के लिए हमेशा आगे रखा। और कहीं भी ज़रूरत पड़ी देश के लिए तो उन्होंने जरा भी नहीं सोचा। आज का दिन समर्पित है उन शहीदों को। और आज का दिन समर्पित है उनको जिन्होंने हमेशा अपनी हिफाजत न करते हुए हमारी रक्षा की है, सुरक्षा की है। और इसकी वजह से हमें इन्हें भूल ही नहीं सकते। कारगिल दिवस पर आज विशेष जो कार्यक्रम है, आज का चर्चा है, उनके लिए है। हम सत सत नमन करते हैं वीर सपूतों को। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है उनको और उनके नाम से रोशन है आज हमारा पूरा भारतवर्ष।

0: और इस गाने के बाद आइए सुनते हैं चर्चा। अंग्रेजी भाषा अध्ययन कैसे करें, वार्ताकार हैं मिथिलेश कुमार सिन्हा।
1: अंग्रेजी भाषा को प्रभावशाली ढंग से कैसे पढ़ें। किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्यक्ति में उत्साह एवं प्रबल इच्छा का होना अनिवार्य है। इसके लिए समुचित संसाधनों का उपयोग एवं उचित माहौल की तैयारी आवश्यक है। इन बुनियादी भाषा कौशल को प्राप्त करने के लिए आपको अंग्रेजी भाषा को प्रभावशाली ढंग से कैसे पढ़ें। किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्यक्ति में उत्साह एवं प्रबल इच्छा का होना अनिवार्य है। इसके लिए समुचित संसाधनों का उपयोग एवं उचित माहौल की तैयारी आवश्यक है। इन बुनियादी भाषा कौशल को प्राप्त करने के लिए आपको अंग्रेजी के साथ साथ खुद पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। अपने खाली समय में घर पर काम कर अंग्रेजी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। किसी भी भाषाओं में लिपि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हमारी भाषा हिंदी की तुलना में अंग्रेजी की लिपि आसान है। अंग्रेजी की समुचित जानकारी प्राप्त करने हेतु शब्दों की शब्दावली एवं व्याकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अत्यधिक शब्दावली की जानकारी हमारे अंदर के आत्मविश्वास को और बढ़ा देता है। आज के शहरीकरण, औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण बदलाव को देखते हुए हमें अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है। हम समाचार पत्र पढ़कर, अंग्रेजी कहानी पढ़कर, सुनकर एवं किताबों की मदद से मोबाइल ऐप के द्वारा अपनी अंग्रेजी की समुचित ज्ञान को और आगे बढ़ा सकते हैं। रोजगार का अवसर ढूंढने के लिए अंग्रेजी एक सशक्त माध्यम है। अंग्रेजी सीखने के लिए अन्य माध्यम रेडियो पर अंग्रेजी समाचार सुनकर, कुछ मनोरंजक अंग्रेजी फिल्मों देखकर या कार्यक्रम देखकर भी सीखा जा सकता है। भारत के कई पर्यटक स्थल पर हम पाते हैं कि रिक्शा वाला, फेरी वाला भी टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि लगातार किया गया अभ्यास एवं प्रयास एवं विदेशी सैलानियों से वार्तालाप का प्रयास। कहा जाता है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए लिखना आवश्यक है। अतः अंग्रेजी में व्याकरण की जानकारी को लिखकर वाक्य बनाकर हम अपनी जानकारी और बढ़ा सकते हैं। हम अपने अध्यापकों के साथ एवं अंग्रेजी बोलने वाले दोस्तों के साथ बातचीत करना चाहिए तो इससे हमारे बोलने की कला में निखार आता है। किसी भी कार्य में शुरुआत में बाधा या उबाऊपन की स्थिति आ सकती है। हमें आत्मविश्वास एवं धैर्य के द्वारा सतत प्रयास कर अंग्रेजी के ज्ञान को हम बढ़ा सकते हैं। सवाल यह है कि इस भाषा को इतनी प्राथमिकता क्यों? इसका जवाब यह है कि आज के वैज्ञानिक युग में बैंकिंग के क्षेत्र में ATM, मोबाइल, कंप्यूटर, बाजार, मॉल, हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान एवं विदेशों में अंग्रेजी का बोलबाला है। अंग्रेजी भाषा के अगर हम आधार अंग्रेजी भाषा को प्रभावशाली ढंग से कैसे पढ़ें। किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्यक्ति में उत्साह एवं प्रबल इच्छा का होना अनिवार्य है। इसके लिए समुचित संसाधनों का उपयोग एवं उचित माहौल की तैयारी आवश्यक है। इन बुनियादी भाषा कौशल को प्राप्त करने के लिए आपको अंग्रेजी के साथ साथ खुद पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। अपने खाली समय में घर पर काम कर अंग्रेजी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। किसी भी भाषाओं में लिपि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हमारी भाषा हिंदी की तुलना में अंग्रेजी की लिपि आसान है। अंग्रेजी की समुचित जानकारी प्राप्त करने हेतु शब्दों की शब्दावली एवं व्याकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अत्यधिक शब्दावली की जानकारी हमारे अंदर के आत्मविश्वास को और बढ़ा देता है। आज के शहरीकरण, औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण बदलाव को देखते हुए हमें अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है। हम समाचार पत्र पढ़कर, अंग्रेजी कहानी पढ़कर, सुनकर एवं किताबों की मदद से मोबाइल ऐप के द्वारा अपनी अंग्रेजी की समुचित ज्ञान को और आगे बढ़ा सकते हैं। रोजगार का अवसर ढूंढने के लिए अंग्रेजी एक सशक्त माध्यम है। अंग्रेजी सीखने के लिए अन्य माध्यम रेडियो पर अंग्रेजी समाचार सुनकर, कुछ मनोरंजक अंग्रेजी फिल्मों देखकर या कार्यक्रम देखकर भी सीखा जा सकता है। भारत के कई पर्यटक स्थल पर हम पाते हैं कि रिक्शा वाला, फेरी वाला भी टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि लगातार किया गया अभ्यास एवं प्रयास एवं विदेशी सैलानियों से वार्तालाप का प्रयास। कहा जाता है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए लिखना आवश्यक है। अतः अंग्रेजी में व्याकरण की जानकारी को लिख कर वाक्य बनाकर हम अपनी जानकारी और बढ़ा सकते हैं। हम अपने अध्यापकों के साथ एवं अंग्रेजी बोलने वाले दोस्तों के साथ बातचीत करना चाहिए, तो इससे हमारे बोलने की कला में निखार आता है। किसी भी कार्य में शुरुआत में बाधा या उबाऊपन की स्थिति आ सकती है, हमें आत्मविश्वास एवं धैर्य के द्वारा सतत प्रयास कर अंग्रेजी के ज्ञान को हम बढ़ा सकते हैं। सवाल यह है कि इस भाषा को इतनी प्राथमिकता क्यों? इसका जवाब यह है कि आज के वैज्ञानिक युग में बैंकिंग के क्षेत्र में ATM, मोबाइल, कंप्यूटर, बाजार, मॉल, हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान एवं विदेशों में अंग्रेजी का बोलबाला है। अंग्रेजी भाषा के अगर हम आधार को लें तो टेंस इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक शिक्षा से ही हमें स्कूल में टेंस की जानकारी दी जाती है। जो बच्चे टेंस को गंभीरता से लेते हैं वे आगे चलकर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर जाते हैं एवं अंग्रेजी के अच्छा वक्ता भी बन जाते हैं। टेंस के बाद प्रीपोजिशन का अभ्यास जो शब्दों को जोड़ता है महत्वपूर्ण है। प्रीपोजिशन के कई पहलुओं पर अगर हम ध्यान दें, जैसे कोई भी चीज़ गति में हो तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ हो तो उसके अर्थ में ऑन का प्रयोग करेंगे, छोटे शहर के साथ एट का प्रयोग करेंगे, बड़े शहर में हम रहते हैं तो इन का प्रयोग करेंगे। यह प्रारंभिक जानकारी आवश्यक है। मॉडल का प्रयोग हमारे लिखित एवं व्यवहारिक ज्ञान में भी महत्वपूर्ण है। अगर हमें आदेश लेने के क्रम में हम MI का प्रयोग करेंगे या हम May I एवं का प्रयोग करेंगे एवं योग्यता, क्षमता एवं शक्ति में कैन का प्रयोग करेंगे, इसी प्रकार मॉडल हमारे अंग्रेजी के ज्ञान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को और मजबूत करने के लिए हमें कई विषयों पर लेख लिखकर अभ्यास करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी जीवन, अनुशासन, विभिन्नता में एकता। अगर हम इन विषयों पर लिखने लगेंगे तो हमें शब्दावली को की आवश्यकता होगी एवं हमारा ज्ञान और व्यापक होगा। शुद्ध शब्दों का उच्चारण भी अंग्रेजी के प्रभाव को और बढ़ाता है एवं वो हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। कुछ शब्दों को अगर हम वर्तमान परिवेश में देखें तो पहले फाइनल बोला जाता था, अब फिनाले का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार पुलिस के जगह कॉप्स का प्रयोग, पीपुल के जगह गाइज का प्रयोग, ये आधुनिक इंग्लिश एवं वर्तमान में चल रहे शब्दों का अगर हम प्रयोग करें तो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके हम अपने व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बना सकते हैं। आज के दौर में कम्युनिकेशन स्किल सबसे लोकप्रिय डिग्री में से एक है। एक कुशल कम्युनिकेटर की आवश्यकता आज जीवन के हर क्षेत्र में है। हमें वाद विवाद प्रतियोगिता, किसी अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा, राजनीति पर चर्चा अंग्रेजी में करने से इस भाषा का ज्ञान और हम बढ़ा सकते हैं। प्रबल इच्छा, दृढ़ संकल्प एवं सतत प्रयास अंग्रेजी सीखने में मददगार साबित होती है। इस भाषा के समुचित ज्ञान से हम रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार कर सफलता हासिल कर सकते हैं। आधुनिक समाज, आधुनिक तकनीक एवं दुनिया से जुड़कर अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के समुचित ज्ञान से हमें विदेशों में रोजगार, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार, होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में, सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र में, दूर संचार के क्षेत्र में व्यापक रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। भारत की आज़ादी में भी उस समय के शिक्षाविद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन महान नेताओं का अंग्रेजी भाषा पर समुचित पकड़ था। आज के दौर में पहले के मुकाबले अंग्रेजी सीखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आज कई YouTube चैनल, कई मोबाइल ऐप, गूगल साइट पर जाकर हम आसानी से अंग्रेजी भाषा को सीख सकते हैं।
0: आप सुन रहे थे युवा साथियों वार्ता, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कैसे करें। वार्ताकार थे मिथिलेश कुमार सिन्हा। और अब आइए एक सुनते हैं और देशभक्ति गीत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। इसी के साथ कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हमें इस कार्यक्रम से ज्यादा कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार शाम के।

0: 2024 में संशोधन करना है। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्र आज वीर शहीद जवानों को नमन कर रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कारगिल विजय दिवस पर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड द्वारा रांची में आयोजित समारोह में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया तथा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेत्री दीपिका पांडे सिंह आज गुड्डा जिले में बीएलए के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति और वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से सम्पन्न कराने पर विशेष बल दिया। राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। गुमला और खूंटी समेत कुछ अन्य जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कल इन दोनों के अलावा रांची और लोहरदगा में भी भारी बारिश के आसार हैं। राजधानी रांची के डुरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब के बीच मैच खेला जा रहा है। इससे पहले टूर्नामेंट का आज रंगारंग आरंभ हुआ। रांची में ग्रुप सी के 6 मुकाबले होंगे। इसके अलावा एक क्वार्टर फाइनल मैच भी खेला जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:00 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, फेम 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए हम सुनते हैं ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी। कुछ

कार्यक्रम ग्रामीण सभा में आप सभी कृषक बंधुओं का स्वागत है। कृषक बंधु पशुपालन ग्रामीण व्यवस्था की ऋण मानी जाती है। इससे किसान और ग्रामीण परिवारों को नियमित आय प्राप्त होती है। चाहे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी, सुअर आदि का पालन करके दूध, अंडे, मांस, ऊन, चमड़ा और गोबर जैसे उत्पादन प्राप्त होते हैं। इन उत्पादनों की बिक्री से लोगों की आय बढ़ती है और रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। जहाँ तक बात करें पशुपालन के प्रमुख आर्थिक लाभ, तो किसानों के अतिरिक्त आय का स्रोत बहुत है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दूध, अंडा और मांस जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता होती है। गोबर से जैविक खाद और बायोगैस का निर्माण देश की अर्थव्यवस्था और कृषि को मजबूत करती है। पशुपालन केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार है। इसीलिए आधुनिक तकनीक और बेहतर देखभाल के साथ पशुपालन को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। बत्तख पालन की हम बात करें तो ये बहुत ही आय का स्रोत है हमारे लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। बत्तख पालन आय का एक अच्छा स्रोत। बत्तख पालन ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने का एक सरल और लाभदायक व्यवसाय है। बत्तखों का पालन अंडे, मांस और बच्चों डकलिंग के उत्पाद के लिए किया जाता है। इन्हें तालाब, झील का जल स्रोतों के पास आसानी से पाला जा सकता है और इनके पालन में अपेक्षाकृत कम खर्च आता है। बत्तख पालन के लाभ अगर हम कहें तो अंडों और मांस की बिक्री में से अच्छी आय, पालन पोषण की लागत कम, रोगों का खतरा अपेक्षाकृत कम, जल स्रोतों का बेहतर उपयोग ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर देता है। अगर हम तो इससे हम कह सकते हैं कि बत्तख पालन किसानों की आय बढ़ाने, पोषक सुधारने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। उचित देखभाल और वैज्ञानिक तरीके अपना कर इससे अच्छे लाभ किए जा सकते हैं। और अब आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं। एक हम ग्रामीण सभा की बात कर रहे हैं तो कृषकों के लिए हम खेत खलिहान में बैठकर जब हम उसी मिट्टी की खुशबू से ग्रामीण सभा में अपने कृषक बंधु के लिए लेकर हाजिर होते हैं उस लोकगीत का कार्यक्रम भी, तो उन्हें बेहद ही पसंद आता है। तो आइए सुनते हैं।

सिंचाई योजना पीएम के एसवाई पर चर्चा। आज हम जो कृषि प्रधानमंत्री कृषि योजना की जिनकी शुरुआत वर्ष 2015 में हर खेत को पानी और हर प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य से की गई थी। जी हां कृषक बंधुओं, यह योजना का मुख्य लक्ष्य है कि देश के हर किसान तक सिंचाई की सुविधा पहुंचे और पानी का उपयोग सोच समझकर तथा आधुनिक तकनीकों के साथ किया जाए। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देकर कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। इस योजना के प्रमुख लाभ इस तरह से हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना, पानी की बचत और उसका कुशल उपयोग करना, फसल उत्पादन और कृषकों की आय में वृद्धि, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खेती को सहारा, आधुनिक सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देना। आज जब जल संरक्षण की आवश्यकता पहले से अधिक है, तब यह योजना केवल किसानों के लिए नहीं बल्कि देश के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि पानी की हर बूंद का सही उपयोग होगा तो खेती भी समृद्ध होगी और किसान भी आत्मनिर्भर बनेंगे। इसीलिए पानी बचाइए, आधुनिक सिंचाई अपनाएं और समृद्ध खेती की ओर कदम बढ़ाएं। और अब आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत।

आइए अब सुनते हैं वार्ता, भेंट वार्ता अनिरुद्ध मेहता भोंगा पाटन पलामू से। भेंट वार्ता का विषय है सफल किसान से भेंट। भेंट वार्ताकार अनिरुद्ध मेहता भोंगा पाटन पलामू, भेंट करता है संतोष कुमार।

0: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के पाटन प्रखंड के भोंगा गांव के एक सफल कृषक अनिरुद्ध महतो, जिनसे आज हम विस्तृत बातें करेंगे खेतीबाड़ी की। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अभी क्या क्या लगाए हैं खेतों में?
1: अभी जैसे धान का बिचड़ा लगाए हैं, मक्का लगाए हैं, अरहर की फसल लग रहा है, और यही उस अन्य जैसे भिंडी है, बोदी है, ये उसमें कुछ बराई है, तिल है, यही फसल का मैंने खेती किया जा रहा है, कर रहे हैं।
0: धान की जो नर्सरी है उसकी तैयारी कैसे किए थे?
1: धान की नर्सरी को तैयार करने के लिए बारिश होने के पहले हम लोग खेत को उसको जोताई करते हैं, जिसके पास जो व्यवस्था हो, हल बैल, हर हलचल बैल या ट्रैक्टर, रोटावेटर जैसे भी, और हम तो अपना ट्रैक्टर से जोताई किए। इसके बाद बारिश हुआ, बारिश में हम लोग और खेत को लेबल मैंने पट्टा चलाकर और बिचड़ा को छिड़काव किए। अब इसके बाद उसमें पुनः एक बार पट्टा चला दिए और एक बहुत बढ़िया मैंने उसका जमा हुआ।
0: अच्छा अच्छा
1: और इसके बाद बारिश तो हो ही रहा है,
0: रुक रुक कर हो रहा है, थोड़ा
1: रुक रुक कर हो रहा है। बिचड़ा लगभग लगभग तैयार ही है, अब कुछ ही दिनों में हम लोग आगे रोपाई का वर्क काम करेंगे।
0: अच्छा, तो अभी रोपाई नहीं हुई, सिर्फ नर्सरी में लगा के रखे हुए हैं?
1: जी, नर्सरी में लगा के रखे हुए हैं, अब तैयारी स्थिति में है। कुछ ही दिनों में अगर बारिश हुआ तो हम लोग धान का फसल लगा देंगे।
0: अच्छा, अभी रोपाई की बात जहाँ तक आ रही है, तो हमारे कृषक वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारा यंत्र उतारा गया है खेतों खलिहानों में, तो रोपाई कैसे करते हैं आप इसको?
1: रोपाई हमारे यहाँ जनरली बहुत पहले से जो पुराना रीति रिवाज से
0: अच्छा
1: चले आ रहा है, उसी को हम लोग अधिकांश लोग उसी को अपनाते हैं। कुछ कुछ किसान हैं जिसको हम लगाते हैं, कुछ और लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं कि अभी जो श्री विधि से खेती धान लगाने का, तो उसमें थोड़ा लगाने में लोगों को लगता है कि ये बड़ा महंगा काम है, लेकिन बहुत आसान काम है
0: जी,
1: और उससे हर तरह का मैंने बचत होता है, निकाई गुड़ाई करने में अच्छा होता है, कटाई करने में भी बेहतर सुविधा मिल होता है, और फसल का उपज भी बहुत अच्छा होता है। वो
0: मतलब श्री विधि से पंक्ति में बुआई करने की आवश्यकता है हमारे किसान भाइयों को
1: जी,
0: ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। और यहाँ धान में मुख्यतः क्या क्या परेशानियाँ आती हैं आपको इस क्षेत्र में?
1: धान में विशेष कुछ ऐसा परेशानी नहीं, ऐसा नहीं समझा जाता है, लेकिन कुछ कुछ बीमारी हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे पत्ती में पीले रंग का धब्बा होना, और उससे ऊपर जब गया तो बाली में आने लगा, तो बाली जब कुछ निकलता है इसके बाद कुछ बाली सूख जाते हैं, ये इसके बाद कुछ मक्खी चूसक कीड़ा होते हैं, तो उसमें परेशानी है, पर दवा का एक्सप्रे करते हैं, उससे सहूलियत तो मिलता है।
0: अच्छा।
1: लाभ होता है।
0: अच्छा, और घरेलू उपचार के लिए?
1: और घरेलू उपचार के लिए तो नीम का तेल हम लोग तैयार करते हैं, और नीम का तेल का भी छिड़काव करते हैं, और घरेलू उपचार तो यही है, इससे दूसरा कुछ तो नहीं कर पाते हैं।
0: और इस प्रकार धान की खेती होती है
1: जी।
0: अभी कितने क्षेत्र में लगाए हुए हैं आप?
1: करीब करीब 1 एकड़ धान लगाना है, जिसके लिए हमको 8 केजी धान बीज का नर्सरी लगाए हैं।
0: ये तो धान की बात हुई
1: जी।
0: अब हम सब्जियां पर आते हैं, खासकर हमारे किसान भाई लोग सब्जियां बृहद पैमाने पर उगाते हैं, क्योंकि सब्जियां बहुत जल्द तैयार होती हैं और झटपट आमदनी दे जाती हैं, नकदी फसल हैं सब्जियां। तो सब्जियां में आपने बताया कि भिंडी लगाए हैं आप, और कुछ लत्तर वर्गीय सब्जियां के भी नाम आपने लिया
1: जी,
0: तो कौन कौन सी सब्जियां वो हैं एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, और उसकी खेती कैसे कर रहे हैं आप?
1: जी, अभी सब्जी में वर्तमान भिंडी है, नेनुआ है,
0: हाँ,
1: करेला है,
0: हाँ,
1: झींगी है,
0: सब बरसात वाली,
1: सब बरसात वाली, और लोबिया जिसको
0: अच्छा,
1: बोदी हम लोग हिंदी में कहते हैं,
0: हाँ,
1: वो बोदी का भी फसल लगाए हैं।
0: अच्छा,
1: सब्जी।
0: अच्छा, तो इसकी देख रेख कैसे करते हैं आप? जैसे भिंडी वाले बात जहाँ तक आती है, भिंडी बहुत से किसान भाई लोग उपजाते हैं, तो उसकी खेती कैसे करना चाहिए?
1: भिंडी का खेती सर्दी छोड़ कर, सर्दी से बचते हुए सभी दिन भिंडी का खेती होता है।
0: अच्छा।
1: और हम देखते हैं कि अभी जो भिंडी का सब्जी जो निकल रहा है मंडी में, हम बेच रहे हैं, खा रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, इसके लिए हमें मई महीना में खेत को जुताई करना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: इसके बाद मई महीना के लास्ट, जून के फास्ट में उस भिंडी का बीज को खेत में हम लोग लगा देते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: उस समय थोड़ा अधिक धूप मैंने होता है, धूप में कुछ कष्ट तो होता है, पर पानी अवेलेबल है और पानी से हम लोग सिंचाई कर लेते हैं। और जैसे ही जुलाई लास्ट, जुलाई फर्स्ट हुआ और जुलाई मध्य होते होते वो फल आना मैंने चालू हो जाता है। और अभी भिंडी को मैंने रेट में भी कहा जाए तो बहुत मैंने लगभग बढ़िया रेट है, तो उससे हम लोग को आय अर्निंग भी हो जाता है। और उसको देख रेख के लिए अभी भिंडी में छोटे छोटे कीटनाशक, बहुत कीड़ा होते हैं, अगर उसमें दवा का स्प्रे नहीं किया, देखते रख रखाव ठीक से नहीं देखे, तो कीड़ा उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है।
0: अच्छा,
1: सब फल टेढ़ा हो जाएगा तो मैंने थोड़ा कीड़ा लोग खा जाते हैं उसको, इसलिए उसमें एक्सप्रे का भी ज़रूरत पड़ता है। तो एक्सप्रे हम लोग बीज दुकान से
0: खरीद लेते हैं। अच्छा,
1: और वैसे कुछ कुछ किसान को हम स्वयं करते हैं और लोगों को बताते हैं कि नीम तेल,
0: हाँ,
1: नीम तेल ब्लॉक में कृषि विभाग की तरफ से
0: दिया जाता है,

0: उसमें लेकिन जमीन पर जो नीचे जो पड़े रहते हैं बरसात के समय में ना,
1: हाँ
0: वो फल अधिकांशतः गंदा हो जाते हैं।
1: अच्छा
0: उससे
1: अच्छा
0: बचाव के लिए
1: मचान जरूरी है।
0: मचान का व्यवस्था हम लोग बनाते हैं। वो मचान से ही बहुत अच्छा फसल
1: प्राप्त होता
0: सब्जी
1: है।
0: प्राप्त होता है।
1: तो ये तो आप सब जितने भी लतर वाली सब्जियां हैं सब में उपयोग करते होंगे मचान का।
0: जी मचान बरसात के समय में जितने भी सब्जियां हैं उसमें सभी में मचान का व्यवस्था अनिवार्य जरूरी है। अगर वो नहीं किया गया आपको जो लाभ मिलना चाहिए
1: हाँ
0: वह
1: हाँ
0: लाभ आपको नहीं मिल पाएगा।
1: जी। और ये लतर वर्गीय सब्जियां हुई अनाज फसल में हमने बातें की धान की,
0: जी
1: और इसके अतिरिक्त जैसे दलहन की अगर हम बात करें तो, जो कि दलहन
0: जी
1: पर काफी विशेष बल दिया जाता है, इसलिए कि दलहन एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है और अच्छा खासा उपज भी हमारे किसान भाई बहन प्राप्त कर लेते हैं। तो
0: जी
1: दलहन की क्या स्थिति, दलहन में किसकी खेती अभी करने जा रहे हैं आप?
0: दलहन की खेती में अभी अरहर जैसे मुख्य दलहन फसल है।
1: हाँ
0: हमारे यहाँ जो अरहर होता है
1: जी
0: हम लोग लगाते हैं, होता भी है, और अभी वही दलहन का फसल लग रहा है अरहर। और ये बराई भी एक दलहनी फसल है,
1: हाँ
0: वो बहुत कम मात्रा में अभी लगाया
1: लेकिन
0: जाता
1: इसका
0: है,
1: दाल बहुत चाव से लोग खाते हैं।
0: लेकिन कम मात्रा में लगाया जा रहा है। अब उसको उसके तरफ ध्यान लोग कम दे रहे हैं, पर उसका शारीरिक लाभ की ओर देखा जाए तो बहुत बेहतर, खाने में भी अच्छा लगता है और लाभ भी होता है उसका।
1: बराई के लिए मुख्यतः कैसे तैयारी करते हैं आप?
0: बराई लगाने के लिए मुख्यतः बहुत विशेष आजकल तैयारी नहीं हो किया करते हैं, इसलिए कि बरसात के समय में खेत को जोतिए वो बारिश हो जाएगा तो तैयारी के लिए, इसलिए हम लोग लगातार ही खेत को जोतते हैं उसमें लगा देते हैं। अब हो भी जाता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन जो हुआ वो ठीक है, नहीं
1: मतलब
0: भी
1: बराई
0: हो
1: में दिक्कत नहीं आती है।
0: नहीं वैसे दिक्कत।
1: और अरहर की अगर बात की जाए तो
0: अरहर भी उसी तरह से सबसे पहले अरहर का बारिश होने से पहले खेत को हम लोग जुताई कर देते हैं और जैसी बारिश हुआ तो उसको लगा देते हैं। उसे सिंचाई सिंचित सींचने की कभी जरूरत नहीं है और बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। और उसमें कभी कभी परेशानियाँ आती है, जैसे ठंडी के समय आता है तो उसमें देहाती देहात में लोग कहते हैं कि धुंध आ गया, पाला आ गया, तो उसमें कुछ
1: हाँ
0: नुकसान होता है। अभी कुछ वर्तमान तो नीलगाय से भी कुछ परेशानी हो रही है,
1: अच्छा
0: अगर ये सब से बच गया अरहर भी मैंने बहुत बढ़िया हो जाता है। और दाल उसको कुछ अपने खाते हैं, कुछ ज़रूरत से अधिक हुआ उसे कुछ
1: बिक्री भी कर देते
0: बिक्री
1: हैं।
0: भी कर देते हैं।
1: यहाँ बाजार व्यवस्था कहाँ है, कहाँ बिक्री करते हैं आप?
0: आज जनरली बाजार व्यवस्था तो वैसे मेरा शहर डाल्टनगंज है, अब अधिक बिक्री करने की आवश्यकता है तो बाजार समिति बैरिया।
1: अच्छा, वहाँ पर बिक्री कर देते
0: जी
1: होंगे। और हम समझते हैं कि शहर में जाने से ज़्यादा लाभ मिलता होगा।
0: शहर में ज़्यादा लाभ होता है, इसलिए कि वहाँ बहुत छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा लेके बेचिए, और कुछ किसान लोग हैं जो कुछ मतलब खाने वाले लोग हैं ग्राहक जो घर का दाल समझकर वो बहुत चॉइस से अपना
1: लोकल
0: वो
1: समझते हैं वो
0: लोकल समझ के वो पसंद करते हैं।
1: जी। स्थानीय होने के नाते और भी बहुत फायदे
0: जी
1: हो जाते हैं,
0: जी जी
1: और जो भी ग्राहक हैं खासकर स्थानीय सब्जियां की अगर बात की जाए तो इसकी मांग बराबर बनी रहती है
0: बराबर बराबर बनी रहती है,
1: और
0: सही बात।
1: अच्छा खासा मुनाफा हमारे किसान भाई प्राप्त
0: जी
1: करते हैं।
0: जी जी
1: तो अभी सब्जी की जो मैंने बातें की, तो सब्जी में अभी क्या हाइब्रिड लगाए हैं या सब स्थानीय वाले हैं?
0: कुछ स्थानीय जो लोकल प्रभेद है वो भी लगाए हैं और कुछ हाइब्रिड का भी लगाए हैं,
1: जी
0: जैसे भिंडी है, नेनुआ है,
1: हाँ
0: तो हमें लगता है कि अधिकांशतः हाइब्रिड ही लग रहा है
1: अच्छा
0: और लोकल वाले में कुछ उस तरह के लाभ, पूंजी तो कम लगता है पर लाभ उससे थोड़ा कम दिखता है।
1: उपज में कमी
0: हाँ
1: आती है।
0: उपज में कुछ कमी आता है वो।
1: तो इसके लिए जो वैज्ञानिक विधियां तकनीकियां बताई जाती हैं तो उसका प्रयोग नहीं करते?
0: जो बन पाता है करते हैं,
1: जी
0: कुछ वैज्ञानिक नियम को अपनाते हैं, कुछ अपना नियम घरेलू अपनाते हैं। जैसे उर्वरक में कहा जाए तो उर्वरक के लिए ये जो रासायनिक खाद पदार्थ हैं
1: जी जी
0: और उससे बेहतर तो हम लोग का घर का है
1: गोबर खाद।
0: गोबर खाद, तो उससे ज़्यादा बेहतर लाभ होता है, खेत भी दुरुस्त रहता है, फसल भी बढ़िया रहता है और खाने में भी अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल। और

0: ये तो बातें हो गई सब्जियां की, थोड़ी
1: जी
0: थोड़ी बातें हम सारी फसलों की कर रहे हैं,
1: जी
0: खासकर धान फसलों की भी हमने कर ली, दलहन की और सब्जियां की। अब हम बातें करते हैं पशुधन की। भोंगा गांव में पशुधन की क्या स्थिति है?
1: पशुधन का लगभग बहुत अच्छा स्थिति है
0: अच्छा,
1: जी।
0: किस तरह के गाय यहाँ पाले जाते हैं?
1: गाय कुछ देसी नस्ल के हैं,
0: जैसे?
1: जैसे अब देसी नस्ल में क्या कहें, छोटा छोटा गाय है वो लोग,
0: अच्छा।
1: और अभी अधिकांश गाय साहिवाल नस्ल के हैं गाय, और हर घर में एगो दुगो गाय अपना घरेलू उपयोग के लिए
0: रखे हुए हैं सब।
1: सभी किसान भाई रखे हुए हैं।
0: तो निश्चित रूप से कंपोस्ट वगैरह की कमी नहीं होती होगी।
1: नहीं, कंपोस्ट की कोई कमी नहीं है, उसी से गाय उधर दूध भी देती है, उसका
0: हाँ,
1: गोबर से कंपोस्ट भी तैयार हो जाता है।
0: अच्छा। और बकरी पालन पर?
1: बकरी पालन तो सर जो देसी नस्ल की बकरियां हैं
0: जी
1: सभी लोग तो नहीं रखे हैं, लेकिन कुछ हमारे यहाँ लोग रखे हैं जो हमें लगता है कि बहुत बेस्ट बेनिफिट की ओर जा रहे हैं,
0: अच्छा।
1: जिसे 18 महीना के अंदर दो बार बच्चा निश्चित तौर पर वो दे देती है।
0: और एक बकरिया कितना बच्चा
1: एक
0: बच
1: बक एक बकरियाँ दो बच्चा तीन बच्चा तक वो दे रही है
0: दे
1: जी।
0: रही है? जी
1: हाँ, और बच्चा को बहुत कम ही समय में वो बहुत बड़ा हो जाता है, और उसको वो लोग बिक्री करके
0: वो तो
1: पैसे
0: आपके
1: का,
0: खिलाने पर निर्भर
1: हाँ
0: करता है।
1: हाँ हाँ जी, उसको अपने हिसाब से जो
0: दाना पानी आहार
1: दाना
0: जो उसका
1: पानी
0: है।
1: आहार दिए,
0: हाँ
1: और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, और उससे किसान लाभान्वित है,
0: जी।
1: लाभ उठा रहा है उसका।
0: तो यहाँ समूह में भी बकरी पालन करते हैं?
1: वैसे समूह में तो सर बकरी पालन विशेष लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं उन लोग को सभी को बता रहा हूँ कि समूह के द्वारा बकरी पालन का भी एक गवर्नमेंट के तरफ से स्कीम चल रहा है, उससे सभी
0: हाँ,
1: लोग लाभ उठाएं।
0: और सरकार द्वारा ढेर सारी योजनाएं चलाई गई हैं
1: हाँ
0: जिसमें
1: बहुत
0: बकरी पालन के लिए भी लाभ दिया जाता है,
1: जी
0: और शेड निर्माण वगैरह का भी
1: जी
0: मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत दिया जाता है, उनको शेड वगैरह बनवाए
1: जी
0: जाते
1: जी
0: हैं गांव
1: जी
0: में। तो इसका लाभ गांव में लेते हैं कि नहीं लोग?
1: ले रहे हैं,
0: अच्छा
1: ले रहे हैं सर। काउ शेड बहुत सारा बना जो
0: अच्छा
1: गाय के लिए बना
0: मनरेगा के तहत।
1: जी,
0: अच्छा
1: और बकरी के लिए, बकरी पालने के लिए अभी आवेदन हो रहा है,
0: अच्छा
1: और कुछ एक मुर्गी फॉर्म भी है,
0: अच्छा अच्छा
1: पोल्ट्री फॉर्म, उसके लिए भी अप्लाई हो रहा है।
0: अच्छा
1: हमें विश्वास है कि सरकार जो मदद कर रही है और आगे भी मदद करते रहेगी, और
0: तो
1: इसका
0: शेड का
1: लाभ
0: नाम यहाँ करवाया गया, शेड निर्माण
1: शेड निर्माण जी
0: जी। तो उससे तो काफी फायदा होता
1: जी
0: होगा।
1: हाँ बिल्कुल फायदा है, बहुत अच्छा।
0: आपके पास कुल कितने गाय हैं अभी?
1: हमारे पास दो गाय हैं,
0: अच्छा।
1: और एक गाय अभी दूध दे रही है, और एक गाय पाल खाली है,
0: अच्छा
1: तो पाल खाने के बाद भी वो कुछ दिन गाय लगती है दूध देती है,
0: जी।
1: अधिकतम 1.5 से 2 महीना तक उसको दूध लेते हैं, बाकी उसको अपने आप छोड़ देते हैं उसको।
0: जी। और सरकार द्वारा जो योजनाओं की बात आ रही है हमारे सामने,
1: जी
0: तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं कृषि के क्षेत्र में, खासकर किसान क्रेडिट कार्ड है,
1: जी
0: तो उसका भी लाभ हमारे ग्रामीण भाई उठाते हैं, क्योंकि
1: जी
0: उन्हें कभी किसी साहूकार के पास जाने की फिर आवश्यकता नहीं रहती, और सरकार द्वारा खेती के लिए पूंजी दी जाती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ आपने लिया?
1: जी सर, किसान क्रेडिट कार्ड का हम अपने खुद मैं अपने ही ले रहा हूँ,
0: अच्छा,
1: आज नहीं करीब करीब 2005 से इसका लाभ मैं उठा रहा
0: वाह,
1: हूँ,
0: क्या बात है।
1: और अभी तक जो पैसे की मैंने कमी अनुभव होता था इस सीजन में खेती करने का, जैसे खरीफ या रबी के टाइम समय में,
0: जी।
1: हमें आज उस पैसे का मैंने कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि पैसा हमारे पास नहीं है, हम खेती नहीं कर पाएंगे। उससे बहुत अच्छा हम लोग को सहयोग मिला और लाभ उठा रहे हैं उसका।
0: अभी कितना लेते हैं लोन?
1: अभी करीब करीब हम 1,50,000 रुपया का लोन ले चुका हूँ
0: अच्छा, तो हर सीजन में लेते हैं, हर मौसम में लेते हैं,
1: जी,
0: खरीफ हो गया
1: जैसे
0: चाहे रवि।
1: वो एक हमें खेती लगाने के लिए पैसे, अभी हम खेती लगा लिए उनका पैसे से,
0: हाँ
1: जब खेती हुआ उसको बेच दिए,
0: हाँ
1: कुछ
0: जी
1: कुछ खाए या कुछ बेच दिए, तो उनका पैसा मैं वापस कर देता हूँ,
0: जी
1: पुनः फिर जब ज़रूरत पड़ा तो पैसा वहाँ से ले लाएंगे और ले लाते हैं, और फिर उसका अगले फसल में उपयोग कर लेते हैं। और जब फिर अगला फसल को तैयार हुआ, कुछ खाए और कुछ बेच दिए, इसके बाद जो बेचे वो पैसा उनको फिर वापस कर देते हैं। अब इसी कड़ी से सरकार का योजना जो कृषि लोन है उसका लाभ उठा रहे हैं।
0: किसान क्रेडिट कार्ड का,
1: जी
0: तो प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ अब उठाते हैं और वर्षों से उठा रहे हैं, अब 2005 से उठा रहे
1: जी
0: हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और 1,50,000 रुपया आप खरीफ रबी में
1: उपयोग
0: लेते
1: करते
0: हैं,
1: हैं।
0: उपयोग
1: जी
0: करते हैं, और फिर इसकी वापसी भी समय पे कर देते हैं।
1: वापसी, बस फसल तैयार हुआ, फसल काटे और अपना खाने के लिए रखे जरूरत के अनुसार, और बाकी जो बचा उसे बेचकर बैंक का पैसा वापस कर देते हैं।
0: जी, और उससे फिर आपका शक जो है वो बना हुआ रहता है,
1: जी
0: ये बहुत बड़ी बात है। किसान भाइयों, हम ऋण को समय पे चुकता करें तो उससे बहुत फायदा हमें प्राप्त होता है। और अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो इसका लाभ कब से ले रहे हैं आप?
1: ये इसका लाभ हम 2020 से ले रहे हैं।
0: अच्छा,
1: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मैं 2020 से इसका लाभ ले रहे हैं। और ये इस तरह का मैंने कहा जाए कि ये मैंने डूबते का एगो तिनका का सहारा जो कहते हैं,
0: जी जी
1: उस तरह से इसका लाभ नज़र आता है कि जब हमें पैसे की जब मैंने दिक्कत होना अनुभव हुआ,
0: हाँ
1: तो हर 4 महीना पूरते पूरते बस 2,000 रुपया अकाउंट में आ जाता है। और उस पैसा को मैं अपने खेत में कभी कभी खाद की ज़रूरत
0: हाँ
1: पड़ा,
0: खाद बीज जो भी आवश्यकता
1: बीज
0: पड़े।
1: का ज़रूरत पड़ा, या कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ दवा जिसे
0: हाँ
1: दवाई का स्प्रे करना हो, उसमें बहुत सहयोग मिलता है। उससे हम लाभ उठा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे किसान भाई लोग वो लोग भी लाभ उठा रहे हैं।
0: आप थे पलामू जिला के पाटन प्रखंड के भोंगा गांव के एक सफल कृषक अनिरुद्ध मेहता जी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्कार सर।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम जननी, महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में आज बात करेंगे हम कि महिलाएं अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रहें, और ये बेहद ही ज़रूरी बात है कि हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। कारण ये कि लगातार बच्चे मोबाइल पर रहने से, अभी देखिए छोटे छोटे बच्चों की आँखों में चश्मे लग चुके हैं, उसके बावजूद बच्चे मोबाइल, कभी कभी हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम बच्चों को मोबाइल देकर अपने काम में व्यस्त हो जाएं। हम देखते नहीं, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती, और बच्चों को जो मोबाइल आज मिलता है तो उनके लिए इससे खुशी की बात और क्या है। लगातार बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते हैं, मोबाइल देखते हैं, अब तो पढ़ना भी मोबाइल पे है, इससे और भी ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर होता है। बच्चे तो अनजाने में ये काम करते, लेकिन हम बड़े खुद को अपने काम में इतना बिजी कर लेते हैं कि देखते नहीं कि हमारे पीठ पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो समय समय पे बच्चों को उतना ही फ़ोन दे देने की ज़रूरत हो। अब तो जैसे कि बच्चा खाना नहीं खाता है तो बच्चे को मोबाइल में देकर हम खाना खिलाते हैं, तो ये तो आदत है, ये बच्चे की आदत हमारी है, ये शुरू से उसकी गलती नहीं हुई, गलती हमारी होती है। अपने वक्त को बचाने के लिए फटाफट खिलाने के लिए मोबाइल दे दिया, गेम लगा दिया, बच्चों ने खा लिया। उससे क्या है, दो नुकसान है। एक, बच्चों का हेल्थ भी ख़राब होता है। बच्चे मोबाइल देखते हुए खाते हैं तो ना खाने का स्वाद उन्हें पता चलता है और ना बच्चे के शरीर में वो खाना लगता है। इससे दो बातें आती है कि बच्चे वो खाना भी बच्चों के शरीर में नहीं लगता और सेहत भी ख़राब होती है। हम जल्दी जल्दी में करके खाना तो उन्हें खिला देते हैं, लेकिन वो असर बच्चों पे नहीं दिखता जो बच्चे बिन मोबाइल के खाना खाते हैं। खाना चबा चबा कर खाना, स्वाद से खाना, हम इतने व्यस्त हैं कि बड़े बड़े जैसे किसी तरह उनके मुँह में बच्चे को खाना दे दिया, वो खा रहे हैं, बस ये हो गया कि एक हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, बच्चे ने खाना खा लिया। बस ये नहीं कि बच्चे ने कैसे खाना खाया, किस हिसाब से खाया, उसे कैसे खाना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी हम बहनों को बहुत होनी चाहिए। क्योंकि बचपन से हमारी सोच जो होती है मोबाइल देने की, बच्चों को डांस कर रहा है बच्चा, म्यूज़िक गेम, घंटों बच्चा हाथ में मोबाइल लेके देख रहा है, और बच्चे भी खुश होते हैं इसमें, माँ अपने काम भी निपटाने लगती हैं, लेकिन ऐसा गलत है। पहले बच्चे क्या मोबाइल नहीं लेते थे तो काम घर की महिलाएं नहीं करती थीं, बहुत अच्छे से करती थी। ये हमारी सोच है कि फटाफट ठीक है, ये हम आगे निकले हैं, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, लगातार कुछ ना कुछ लगा रहता है, लेकिन ऐसे में हम बच्चे को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बच्चे को नज़रअंदाज अगर करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा? बस यही मिलेगा कि बच्चे हमेशा मोबाइल से लगे रहेंगे। तो मोबाइल से अगर बच्चों को दूर रखना है, तो बच्चों पे नज़र देने की ज़रूरत हमें है। बच्चे तो वही करते हैं जो उनका मन चाहता है। और अब आइए सुनते हैं वार्ता स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। वार्ताकार हैं कृति सिंह।
3: दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की कुल आबादी की आधी महिलाओं को सशक्त बनाए बिना सुदृढ़ और विकसित भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। हमारा देश शुरू से ही पुरुष प्रधान देश रहा है। महिलाओं की आर्थिक पराधीनता, सामाजिक रोक टोक, पर्दा प्रथा, अशिक्षा एवं संयुक्त परिवार के कारण महिलाओं को हमेशा दबा कर रखने की प्रवृत्ति ने भारत में महिलाओं की स्थिति को और भी खराब किया है। समाज में इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा महिलाओं को भी पुरुषों के समान संपत्ति में अधिकार प्रदान किया गया है। इन प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में अनेक परिवर्तन हुए, फिर भी स्थिति संतोषप्रद नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वर्तमान समय में भी सिद्धांत एवं व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। भारतीय संविधान पुरुषों व महिलाओं के बीच अधिकारों की मान्यता देता है, परंतु भारतीय समाज में आज भी स्त्रियों की भूमिका एवं क्रिया में भेद किया जाता है। महिलाएं संवैधानिक दृष्टि से तो सुदृढ़ हो गई, किंतु वास्तविक रूप से वे आज भी शोषण व उत्पीड़न का शिकार बनी हुई है। महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए उनकी सामाजिक रूपरेखा को जानना अति आवश्यक है। आज हमारे देश में महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की शुरुआत करने में बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस का प्रयास उल्लेखनीय रहा है। इन्होंने 1970 में ही लघु वित्त आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके तहत गरीबों, विशेषकर औरतों को बिना किसी शर्त के ऋण देने की व्यवस्था की गई। और आज लघु वित्त आंदोलन विश्व के 7,000 संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह गांव की महिलाओं का एक ऐसा संगठन है जो अपनी इच्छा से संगठित होकर नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बचत कर सामूहिक निधि में जमा करती है, तथा जिसका उपयोग वे सदस्यों की आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए करती हैं। इस प्रकार समूह की महिलाएं हफ्ते अथवा महीने में एक बार बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर एक दूसरों की समस्याओं का समाधान करती हैं, जिससे ये महिलाएं गरीबी, बेरोजगारी तथा निरक्षरता के चक्रव्यूह से निकलकर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लघु ऋण उपलब्ध कराना है, तथा इसके साथ ही बैंकिंग गतिविधियों के साथ जोड़कर बचत तथा महिलाओं में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में समानता की भावना को विकसित करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, आत्मनिर्भर बढ़ाना तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। स्वयं सहायता समूह के सुचारू रूप से संचालन के लिए महिलाएं अपने सदस्यों में से ही 3 प्रतिनिधि, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिव की नियुक्ति करती हैं। पदाधिकारियों को चुनने का आधार मुख्यतः शिक्षा तथा आत्मविश्वास होता है, ताकि समूह में हिसाब किताब का काम ये स्वयं कर सकें। प्रत्येक महीने समूह की नियमित मीटिंग होती है, जो किसी सार्वजनिक स्थान अथवा प्रत्येक सदस्य के घर पर बारी बारी से होती है। समूह की मीटिंग में प्रत्येक सदस्य का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। मीटिंग के दौरान प्राय महिलाओं द्वारा आपस में भिन्न विषयों पर चर्चा होती है, जैसे ऋण के लेन देन, बचत, नए सदस्यों के शामिल होने की प्रक्रिया, गांव या जहां वे रहती हैं उसके आसपास की समस्या तथा समाधान

पर्यावरणीय समस्या, स्वास्थ्य समस्या, बच्चों की शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी, ऋण का उपयोग तथा बजट के तरीके आदि। समूह की महिलाएं इस सदस्य इस बात के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करती हैं कि वे किस प्रकार छोटी छोटी बचत कर एक बड़ी राशि समूह से प्राप्त कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह संचालित करने से उनमें विभिन्न क्षमताओं का विकास होता है, जो इस प्रकार है स्वनिर्माण का शक्ति। स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में काम करने के कारण महिलाओं की स्वयं निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। महिलाओं द्वारा बैंकों के साथ लेन देन, कागजी कार्रवाई करने से उनमें आत्मविश्वास पनपता है। जानकारी तथा संगठन की उपलब्धता। समूह के सदस्य के रूप में महिलाओं की गतिशीलता बढ़ जाती है। घर की चार दीवारी में कैद रहने वाली महिलाएं इन समूहों के माध्यम से पंचायत, संस्थाओं, बैंक, सरकारी तंत्र, गैर सरकारी तंत्र, वित्त संस्थाओं इत्यादि से संपर्क में आती हैं, जिससे उनके पास अधिक सूचना एवं संसाधन होते हैं। सामूहिक निर्णय के मामले में अपनी बात बलपूर्वक रखने की समर्थता। स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं की सामुदायिक कार्यों में सहभागिता, पंचायत की बैठकों में उपस्थिति अधिक सक्रिय होती है, जिससे ये महिलाएं अपनी बात समुदाय के सामने अधिक बलपूर्वक रख पाती हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता। स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा समूह से उपलब्ध धन का इस्तेमाल वे अपने निजी आवश्यकताओं तथा बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की पूर्ति में करती हैं। मनोवैज्ञानिक विकास। स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाओं द्वारा स्वयं की पहल पे सामाजिक बदलावों के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है। उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता के प्रति विश्वास सुदृढ़ होता है। कौशल विकास। हमारे देश में प्राय महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं। इन्हीं कार्यों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है। इन समूहों को सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे महिलाओं की स्वयं की व्यक्तिगत तथा सामूहिक शक्ति बेहतर करने के लिए कौशल सीखने की क्षमता का विकास होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास। इन समूहों में सामान्यतः सभी सदस्य एक जैसी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं तथा इनकी कार्रवाई में लोकतांत्रिक विधियों को अपनाया जाता है, जिससे महिलाओं का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास मजबूत होता है। वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी। आज दुनिया भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को गरीबों का मुकाबला करने में सबसे ज़्यादा आशाजनक माना जाता है। भारत में 80% से अधिक स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हैं, जिनका भुगतान दर 95% के आसपास है। आज भारत के विभिन्न राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना इत्यादि में महिला स्वयं सहायता समूह विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। तमाम ऐसे समूह हैं जो महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। इनमें फूल वासन यादव ने वर्ष 2001 में महिला स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 2 मुट्ठी चावल और 2 रुपए से की थी। इस समूह को चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। घने व पिछड़े गांव में महिलाओं ने मिलकर कई समूह का संगठन किया, जिससे वे घर बैठे मोमबत्ती, बकरी पालन, बल्ब व अपने घर के पुरुषों को ई रिक्शा लोन पे दिलाकर उन्हें नशा से मुक्त तथा रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं। जो महिला घर में प्रताड़ित की जा रही है, उन्हें समूह के माध्यम से न्याय दिलाने का भी कार्य समूह कर रही है। अतः इस प्रकार स्वयं सहायता समूह देश के विभिन्न राज्यों में अनेक गतिविधियों द्वारा न केवल महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, अपनाया जाता

0: है, जिससे महिलाओं का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास मजबूत होता है। वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी, आज दुनिया भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को गरीबों का मुकाबला करने में सबसे ज़्यादा आशाजनक माना जाता है। भारत में 80% से अधिक स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हैं, जिनका भुगतान दर 95% के आसपास है। आज भारत के विभिन्न राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना इत्यादि में महिला स्वयं सहायता समूह विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। तमाम ऐसे समूह हैं जो महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। इनमें फूलभूषण यादव ने वर्ष 2001 में महिला स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 2 मुट्ठी चावल और 2 रुपए से की थी। इस समूह को चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। घने व पिछड़े गांव में महिलाओं ने मिलकर कई समूह का संगठन किया, जिससे वे घर बैठे मोमबत्ती, बकरी पालन, बल्ब व अपने घर के पुरुषों को ई रिक्शा लोन पे दिलाकर उन्हें नशा से मुक्त तथा रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं। जो महिला घर में प्रताड़ित की जा रही है, उन्हें समूह के माध्यम से न्याय दिलाने का भी कार्य समूह कर रही है। अतः इस प्रकार स्वयं सहायता समूह देश के विभिन्न राज्यों में अनेक गतिविधियों द्वारा न केवल महिलाओं के सामाजिक व
1: कार्यक्रम किसान वाणी हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। 103 MHz पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा, प्रादेशिक समाचार जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, जिसमें खोरठा वार्ता हुई पर्यावरण संतुलन के लिए वन जरूरी। वार्ताकार थी रितु घांसी, साथ ही खोरठा भाषा के उद्भव और विकास के बारे में भी चर्चा हुई। वार्ताकार थे मणिक कुमार, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
6: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
7: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
6: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
10: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रेरक और अनुकरणीय पहलों से कराया अवगत, पर्यावरण, जल संरक्षण और उपलब्धियों का किया जिक्र। कारगिल विजय दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल ने रांची में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को किया सम्मानित, बलिदान को किया याद। नेता प्रतिपक्ष ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की जांच की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, कांग्रेस ने भाजपा पर किया पलटवार। रांची समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान गरज के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान, येलो अलर्ट जारी। रांची में डुरंड कप का रंगारंग आगाज, सेना के शौर्य और लोक संस्कृति का दिखा अनूठा संगम। जमशेदपुर FC और डिफेंडर्स FC के बीच पहला मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी में आज देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विविध विषयों का जिक्र किया और लोगों को प्रेरक तथा अनुकरणीय पहलों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण और जल संरक्षण तथा युवाओं की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।
11: विक्रम 1, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
10: मन की बात कार्यक्रम को आज झारखंड समेत देश भर में लोगों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सुना। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा स्थित चाराडीह आवास पर सामूहिक रूप से इसका श्रवण किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने रांची के ओरमांझी स्थित पैतृक गांव कुच्चू में कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के कांके रोड स्थित भाजपा के मंडल कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। कारगिल विजय दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कारगिल विजय दिवस पर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड द्वारा रांची में आयोजित समारोह में अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया तथा उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।
3: आज आवश्यकता है कि हमारे युवा पीढ़ी राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और सेवा के इन आदर्शों को अपने जीवन का आधार बनाए। आइए हम सब संकल्प लें कि हम अपने वीर सैनिकों के सपनों का एक ऐसा भारत बनाएंगे जो समृद्ध, विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व में गौरव के साथ अग्रणी हो। यही हमारे अमर शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
10: कारगिल विजय दिवस पर आज गुमला में लांस नायक अल्बर्ट एक्का समेत शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, उनके बलिदान को याद किया गया।
4: सभी वासियों से और भी आग्रह करते हैं, युवाओं से आग्रह करते हैं, हम सैनिक न बन सकें तो कम से कम उनका सहयोग, सम्मान और समर्थन जरूर करें। इस कालखंड में जो विक्रम बत्रा और ऐसे मनोज पांडे जी जैसे लोगों ने जो अपने शहादत दी, हम उनको भी नमन करते हैं। आज जो विकृतियां हैं समाज में, हम इनको आने वाले समय में दूर करने का प्रयास करेंगे।
10: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के रांची पिस्का पलमा खंड पर पतराचोली टोल प्लाजा पर आज मध्य रात्रि से टोल टैक्स लागू हो गया है, जिससे रांची गुमला मार्ग पर सफर महंगा हो गया है। नई दरों के अनुसार कार, जीप और वैन के लिए एकल यात्रा का टोल 40 रुपये तथा दो एक्सल बस और ट्रक के लिए 140 रुपये निर्धारित किया गया है। NHAI ने 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय गैर व्यवसायिक वाहन मालिकों के लिए 360 रुपये मासिक पास की सुविधा दी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, धांधली और पेपर लीक का मामला चरम पर है। इस बीच केंद्र सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दे पर राजनीतिक मंच पर बयानबाजी तेज है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले पर फिर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए CBI जांच की मांग दोहराई है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें चेताया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त, ऐसे में राज्य में विकास की उम्मीद बेमानी है।
12: सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोग अगर गड़बड़ करते हैं तो कभी भी प्रमाणिकता से उस रिपोर्ट को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो नहीं करते। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो सरकार कर रही है, सीआईडी से जांच करा रही है, वो एक प्रकार से आईवास है। और इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आप पूरे मामले को आप CBI से जांच कराइए।
10: इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की ने JPSC और कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े विवादों पर भाजपा पर पलटवार किया है। श्री तिर्की ने आज गुमला में पत्रकारों से बातचीत में तत्कालीन राज्य सरकार और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
13: दल तक आप बोलिएगा कि भाई पेपर लीक परीक्षा है, ये बात तो 3 साल से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि पेपर लीक। आप मानने के तैयार नहीं थे, बोल रहे थे कि विदेशी फंडिंग से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, तो धर्म का मामला को जोड़ देते थे। आखिर इस्तीफा देना पड़ा ना। इंतजार कीजिए, झारखंड में भी जांच चल रही है, ऐसे लोग बक्से नहीं जाएंगे।
10: देवघर पुलिस ने फर्जी साइबर पुलिस बनकर घरों में छापेमारी करने के नाम पर लूटपाट करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। SDPO कुलदीप कुमार ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य लंबे समय से देवघर और आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार समेत कई चीजें बरामद की गई हैं।
14: साइबर क्रिमिनल्स के यहाँ चिन्हित करते थे और उसके घर में जाकर लूटपाट करते थे और पुलिस का धमक दिखाकर डर दिखाकर उनके घर से जो पैसा होता था और जो सामान होते थे उसे लूटकर चले जाते थे और यह वर्दी गैंग की तरह ही कार्य कर रहा था, एक गिरोह बना लिया था।
10: राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। गुमला और खूंटी समेत कुछ अन्य जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कल इन दोनों के अलावा रांची और लोहरदगा में भी भारी बारिश के आसार हैं। आगामी 28 जुलाई को पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी और लोहरदगा समेत कुछ अन्य जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। राजधानी रांची में आज से डुरंट कप टूर्नामेंट रंगारंग आगाज के साथ शुरू हो गया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय सेना के शौर्य और झारखंड की लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। रांची में ग्रुप सी के 6 मुकाबले होने वाले हैं और एक क्वार्टर फाइनल मैच भी खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रेरक और अनुकरणीय पहलों से कराया अवगत। पर्यावरण, जल संरक्षण और उपलब्धियों का किया जिक्र। कारगिल विजय दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल ने रांची में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को किया सम्मानित, बलिदान को किया याद। नेता प्रतिपक्ष ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की जांच की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने भाजपा पर किया पलटवार। रांची समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान गरज के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान, येलो अलर्ट जारी। और रांची में डुरंट कप का रंगारंग आगाज, सेना के शौर्य और लोक संस्कृति का दिखा अनूठा संगम। जमशेदपुर FC और डिफेंडर्स FC के बीच पहला मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
15: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
16: आगे सैलरी? नहीं झुमके? ना, पहले बचत,
17: पहले झुमके।
16: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
17: लेकिन झुमकों का क्या?
16: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
18: RBI कहता है,
19: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
20: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की पारदर्शिता को लेकर SMS करने की व्यवस्था लागू की है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि
2: लगभग हमारे जिला में 98% SMS हो रहे हैं स्कूल में, लेकिन जो 2% जो हमारे स्कूल बच रहे हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। और ये कार्रवाई कोई नई नहीं है, इससे पहले भी उन लोगों को स्पष्टीकरण लिया गया था। जो भी स्कूल SMS नहीं कर रहे थे उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्कूल लापरवाही बरत रहे हैं। वैसे जो है हमारे यहाँ अभी 34 ऐसे स्कूल हैं जहां पर SMS नहीं हुआ है कल, वैसे स्कूलों पर जो है आज हम लोग स्पष्टीकरण के साथ उनका वेतन SM का वेतन स्थगित करने जा रहे हैं। अगर जो है इसके बाद भी उनमें सुधार नहीं आती है तो इसको जो है हम लोग स्थापना में रहकर उनके ऊपर गंभीर कार्रवाई करेंगे, या तो उनका निलंबन की कार्रवाई की जाएगी या उनका वेतन जो है वेतन कटौती का कार्य किया जाए।
1: राज्य सरकार ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से विद्यालयों में लाने के लिए सुबह की धूप के नाम से अभियान शुरू की है, ताकि ड्रॉप आउट बच्चे पढ़कर अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकें। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि
2: पूरे राज्य में गुमला जिला के 2 ऐसे ब्लॉक हैं जिनको चिन्हित किया गया है। एक हमारा घाघरा ब्लॉक है जिसमें 99 स्कूल के पोषक क्षेत्र को, और दूसरा भरनुआ है जहां 58 स्कूल के पोषक क्षेत्र में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चे हैं। उसको ध्यान में रखकर जो है एक सेतेंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सेतेंग एक संथाली शब्द है जिसका अर्थ है सुबह की रोशनी। इसका मतलब है कि बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, और यह अभियान 7 जुलाई से लेकर 7 सितंबर तक जो संचालित है।
1: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के तहत गुमला जिला के किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि
3: हम लोगों को इसमें धान का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें हाइब्रिड धान आया है, जिसमें हम लोगों को लक्ष्य 360 हेक्टेयर का दिया गया है और 54 क्विंटल इसमें धान हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही प्रोसेस में जो हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है अरहर और उड़द का दिया गया है।
1: गुमला वन प्रमंडल क्षेत्र में अवैध खनन तथा अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए वन विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि
4: हम लोग को सूचना मिल रही थी कि कुछ बॉक्साइट क्षेत्र से वन के इलाके में से टालीनाथ के टेम्पल जो है उसके ऊपर आपका लुचुट पाट पड़ता है। वहां सूचना थी कि वहां पे इलीगल बॉक्साइट माइनिंग हो रहा है फॉरेस्ट लैंड में, तो हमारी टीम ने इंटेलिजेंस गैदर किया और फिर चीजों को ट्रैक किया और फिर वहां पे बॉक्साइट का ट्रक सीज हुआ। उसके अलावा करीब करीब 5 गाड़ियां और पकड़ाई हैं जो कि आपको टिम्बर लेके जा रही थी इलीगल तरीके से बिना परमिशन के, वहां पर सीजर हुआ है। इसके अलावा कुछ जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि जलावन का लकड़ी जो होता है वो पिकअप पे ट्रैक्टर्स पे बेतहाशा मार्केट मतलब बेतहाशा मात्रा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जंगलों से काट के लेके जाते हैं, तो उससे भी कार्रवाई हुई है।
1: बहरहाल गुमला जिला में शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया जा रहा है, वहीं कृषि विभाग भी किसानों को लाभ दे रही है। इसके साथ ही वन विभाग भी वन क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए कार्य कर रही है, जो एक बेहतर कदम है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
0: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

0: हम आकाश।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए पेश है गीत एवं गजलों का प्रोग्राम स्वरांजलि। आज इस प्रोग्राम के तहत हम आपको सुनवाएंगे गुलाम अली की गाई चंद गजलें।

गुलाम अली की आवाज़ में अभी आपने चंद गज़लें सुनी। इसी के साथ स्वरांजलि कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम महुआ। गायक कलाकार हैं जनक सिंह महतो और साथी।

अभी आप सुन रहे थे जनक सिंह महतो और साथियों के स्वर में नागपुरी लोकगीत। इसी के साथ महुआ कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। आज के इस कार्यक्रम में हम नमन करते हैं अपने उन वीर सेनानियों को, भारत के वीर जवानों को, जो जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। तो आइए सुने कुछ देशभक्ति गीत।

नाम फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज़ में, और इसी के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

0: घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और

0: जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया।

0: ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
3: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी

0: में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Diwas. Prime Minister Modi urges citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defense Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event and Rishikant Singh Chanambang bagged silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somanath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities. Mr. Modi reaffirmed the government's commitment to protecting the integrity of competitive examinations and safeguarding the future of millions of students.
3: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
2: यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी टुडे अज्यूम चार्ज एट द एजुकेशन मिनिस्टर। मिस्टर जोशी वाज अपॉइंटेड टू द पोस्ट यस्टरडे फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। मिस्टर जोशी ऑल्सो कंटिन्यूज टू होल्ड द पोर्टफोलियोज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, food and public distribution and new

0: with a total of 190 kilograms. With this victory, Mirabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games gold medal, having also bagged the yellow medal in the 2018 and 2022 editions. Earlier in the day, another Indian weightlifter, Rishikant Singh Chanambam, won the silver medal in the men's 60-kilogram event. Rishikant lifted 121 kilogram in the snatch, setting a new CWG record before Malaysia's Muhammad Ani Kasdan equaled the mark. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi congratulated Rishikant Singh on winning the silver medal. The Vice President said that Chanambam's consistent medal-winning performances for India at the highest level over the years reflects his exceptional dedication, resilience and pursuit of excellence. Prime Minister Modi also wished that the Indian weightlifter continues to scale greater heights and inspire many young athletes. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 35 runs in the third and the final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare. This win for the men in blue marks the first series win under the captaincy of the new T20 skipper Shreyas Iyer. Chasing a target of 193 runs set by India, Zimbabwe managed to score 157 for 7 in their allotted 20 overs. For India, Mayank Yadav clinched 3, while Yash Thakur took 2 wickets. Earlier, opting to bat, India posted 192 for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. Vaibhav Suryavanshi was the standout performer, smashing 81 runs from just 49 balls, while Ishan Kishan contributed 29 of 26 deliveries. Vaibhav Suryavanshi was adjudged player of the match and player of the series as well. The India Meteorological Department, IMD, has forecast very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh and Odisha tomorrow. Isolated places of northeastern states are also likely to experience heavy rainfall tomorrow. In Odisha, a deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in the state from tomorrow, with the IMD issuing red alerts for several districts. We have a report.
1: The India Meteorological Department has forecast widespread heavy to extremely heavy rainfall across Odisha from tomorrow under the influence of a deep depression over the Bay of Bengal. Red warnings have been issued for Bhadrak, Jajpur, Kendrapada, Jagatsinghpur, Cuttack and Keonsar districts, with the zone of intense rainfall expected to extend to Mayurbhanj and Sundargarh as the system intensifies. As a precautionary measure, the state government has ordered the closure of all government and private schools, higher secondary institutions and Anganwadi centers in Mayurbhanj and Jagatsinghpur districts. Authorities have cautioned against flash floods and severe waterlogging, while maritime operations have been suspended. Local cautionary signal number 3 has been hoisted at all ports, and fishermen have been advised not to venture into the sea until further notice. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: In Maharashtra, light to moderate rainfall was witnessed across several parts of the state yesterday, while heavy showers in Dhule district triggered flood-like conditions, claiming 2 lives in separate incidents. Meanwhile, the IMD has predicted increased rainfall activity along India's west coast, including heavy to very heavy rain over Konkan and the adjoining Ghat regions. The sacred Adharaparna ritual of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra is being solemnly observed on the respective chariots at Puri in Odisha this evening, drawing thousands of devotees. During this unique post-Rath Yatra ceremony, the Holy Trinity is offered a specially prepared sweet beverage in large earthen pitchers. The AI holobox of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee was inaugurated at Pradhan Mantri Sangrahalaya today, offering visitors an immersive experience of his life, leadership and legacy. The inauguration ceremony was attended by family members of the former Prime Minister. As the 1999 Kargil War took place during Atal Bihari Vajpayee's tenure as Prime Minister, the Sangrahalaya is also showcasing a special exhibition on Kargil Vijay Divas. The exhibition features microfilms, archival videos, photographs and personal letters highlighting the courage and sacrifice of the Indian Armed Forces. Foreign portfolio investors have turned net buyers of Indian equities, purchasing shares worth 14,946 crore rupees so far in July. According to the latest depository data, FPIs infused 3,049 crore rupees in the domestic stock market last week. Meanwhile, India's debt market continued to attract strong foreign inflows. So far in July, foreign portfolio investors have invested 9,521 crore rupees in debt securities through the fully accessible route and 27,391 crore rupees through the general route. UNESCO today added the World War II D-Day landing beaches in France, Greece's Mount Olympus, Japan's ancient capitals of Asuka and Fujiwara, and South Sudan's Boma Badingilo migratory landscape to the World Heritage List. The designations were approved during a UNESCO committee meeting in Busan, South Korea, which reviewed global nominations. The newly inscribed sites recognize outstanding cultural and national heritage, including the historic Normandy invasion beaches, Greece's mythical Mount Olympus, Japan's early imperial capitals, and South Sudan's vast wildlife migration landscape. A massive wildfire in southwest France has forced the evacuation of around 55,000 more people overnight, taking the total number of residents displaced in the region to nearly 2,20,000. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-power task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Divas. Prime Minister Modi urges citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defense Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in women's 48-kilogram event, and Rishikant Singh bags silver in men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And that's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इस्लाहात के लिए आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है, जिसकी सरबराही टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकनी करेंगे। इम्तिहानात में बदउनवानी से निमटने के लिए कल पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मुल्क ने आज करगिल दिवस के मौके पर अपने फौजियों के बेमिसाल हौसले और जानों की कुर्बानी दिए जाने पर उन्हें सलाम पेश किया। वजीर आजम मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो करगिल जंग के शहीदों का एहतराम करें और महफूज, बासलाहियत और खुद मुख्तार भारत की तामीर के अज़्म को और पुख्ता करें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके जेर कब्जा जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के मुकाबले में सोने का तमगा जीता है और ऋषि कांत सिंह चंबन ने मर्दों के 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है और मर्दों के क्रिकेट में हरारे में भारत ने तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज इम्तिहानात की इस्लाहात के बारे में टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन नीलकेनी की क्यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तिहानात की इस्लाहात पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि आइंदा इम्तिहानात के एतबार को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क का इम्तिहान का निज़ाम काबिल एतबार, शफाफ और टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। यह टास्क फोर्स साबिक आईबी डायरेक्टर तपन डे का, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स के माहिर अमृतलाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। वजीर आजम ने यह भी कहा कि कल पार्लियामेंट में हुकूमत इम्तिहानात से मुतालिक सख्त कानूनी शिकों वाला एक नया बिल पेश करेगी। जनाब मोदी ने मुकाबला जाति इम्तिहानात की दियानतदारी और लाखों तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज के हुकूमत के अज़्म को भी उजागर किया।
3: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
2: हुकूमत कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में 2026 का तरमीमी बिल पेश करेगी। ये बिल कल के कामकाज में लाजमी तौर पर शामिल है। इस बिल में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीके अपनाए जाने की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। ये बिल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जुमा को मरकजी काबीना ने तेज रफ्तार अदालतें कायम करने के लिए इस बिल के मसौदे को मंजूरी दी थी, ताकि पेपर लीक और इम्तिहान में गलत तौर तरीकों के मामलों में सख्त तर सजा को यकीनी बनाया जा सके। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने आज वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। उन्हें कल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस ओहदे पर मुकर्रर किया गया था। वो सारफीन उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा व नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत की जिम्मेदारियां भी संभालते रहेंगे। उन्होंने वजीर तालीम के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के फौरन बाद मुख्तलिफ स्कीमों और अहम इकदाम पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए वजारत की एक मीटिंग की सदारत की। तालीम के वजीर मुमलिकत जैन चौधरी और वजारत के बहुत से सीनियर अफसरान ने इस मीटिंग में शिरकत की। बाद में जनाब प्रहलाद जोशी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। जनाब जोशी ने कहा कि वो वजारत की कारकर्दगी, पॉलिसियों और इकदाम को पूरी तरह समझने के लिए फिलहाल जायजा मीटिंगें कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ा और अहम महकमा है और उनकी फौरी तरजीह वजारत तालीम के प्रोग्रामों और नए इकदाम पर अमल दरामद के पहले इसकी कारकर्दगी को पूरी तरह समझना है।
4: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के बहादुर सिपाहियों को याद किया। उन्होंने शहीदों और सिपाहियों को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मादरे वतन के दिफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जनाब मोदी ने हरेक से कहा कि वो इन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करे और एक महफूज, बासलाहियत और खुदकफील भारत की तामीर के अज़्म को मजीद मुस्तहकम बनाए। उन्होंने कहा कि भारत लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, खाह वो दिफाई साजो सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हों या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी तआवुन। जनाब मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए कहा कि 24 जुलाई एक ऐसी तारीख है जिसे याद करने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है।
5: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। करगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
2: जनाब मोदी ने कहा कि भारत अपनी टेक्नोलॉजिकल सलाहियतों को लगातार मजबूत बना रहा है। उन्होंने हाल ही में आईएनएस महेंद्र गिरी को भारतीय बहरिया के कामकाज में शामिल किए जाने का खास तौर पर जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि पिछले इतवार को विक्रम 1 को कामयाबी के साथ खला में भेजे जाने से हर भारतीय का सख्र फख्र से बुलंद हुआ है। कैच द रैन मुहिम के बारे में वजीर आजम ने कहा कि 4 जुलाई से एक खसूसी मुल्कगीर मुहिम जारी है।
5: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
2: आज मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने कहा कि हर एक भारतीय दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स की हौसला अफजाई कर रहा है। वजीर आजम ने साइंस ओलंपियाड्स के बारे में भी कहा कि इन मुकाबलों में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया। मन की बात के इस नशरिए में जनाब मोदी ने कश्मीर की रवायती वागो चटाई का जिक्र किया जिसे सरकंडों और धान की बालियों से बुना जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से जोर देकर कहा कि वो कश्मीर की वागो चटाई को अपने घरों की जीनत बनाएं। जनाब मोदी ने हरेक से कहा कि वो भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार की गई मूर्तियों के बजाय उन मूर्तियों की पूजा करें जिन्हें गणेश उत्सव के दौरान मुल्क की अपनी मिट्टी से बनाया जाता है। कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी है। जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम की शख्सियत के कई तहरीक देने वाले पहलू हैं और एक उस्ताद का रोल उनके दिल के सबसे करीब है। जनाब मोदी ने अपने खिताब का इख्तिताम करते हुए यौम आजादी के बारे में इजहार ख्याल किया। उन्होंने सभी से जोर देकर कहा कि वो माई गवर्नमेंट पर हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले बेशुमार ख्यालात और तजवीजों से नवाजें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के नौजवानों का एक विकसित भारत की तामीर में अहम रोल है। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ एक तरक्की याफ्ता भारत की मुहिम को आगे ले जाने वाले हैं बल्कि वो इसके सबसे बड़े मुस्तफिदीन भी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित दरख्शां गांव प्रोग्राम के शुरका से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता गांव एक विकसित भारत की बुनियाद हैं और नौजवानों का इस तसव्वुर को हासिल करने में एक अहम रोल है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि सरहदी गांव के बाशिंदों में चैलेंजों के बावजूद वतन परस्ती का एक पुख्ता जज्बा बरकरार रहा है।
6: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और किसी भी मुजाकरे में पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर पर ही तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने इसे भारत का एक अटूट हिस्सा करार दिया जिसे पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले रखा है। वजीर दिफा लद्दाख के शहर द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस की तकरीबात से खिताब कर रहे थे। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी नफरत आमेज कार्रवाई से उसी अंदाज में निपटा जाएगा जो भारत की दिफाई फौजों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेमिसाल बहादुरी के साथ दहशतगर्दों और उनके पुश्तपनाहों के खिलाफ इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी इस बात का सबूत है कि भारत में सलाहियत है कि वो पाकिस्तान की किसी भी मनफी कार्रवाई का जवाब उसके तसव्वुर से ज्यादा शदीद अंदाज में दे।
7: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
2: खलीज बंगाल में गहरे दबाव के बायस कल उड़ीसा में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने मुतअद्दिद अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और मयूरभंज व जगत सिंहपुर जिले में हायर सेकेंडरी तालीमी इदारों और आंगनबाड़ी मराकज को बंद करने का हुक्म दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
8: भारत के महकमे मौसमियात ने खलीज बंगाल में गहरे दबाव के बाईस कल से ओडिशा से बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, कटक और केउनझार अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हवा के तेज दबाव के बाईस मूसलाधार बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने का खदशा जाहिर किया गया है। एहतियात के तौर पर रियासती सरकार ने मयूरभंज और जगत सिंहपुर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी तालीमी इदारों और आंगनबाड़ी मराकज को बंद करने का हुक्म दिया गया है। हुक्काम ने अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा होने और वसी पैमाने पर पानी भर जाने का इंतबाह दिया है। इसके अलावा समंदरी सरगर्मियों को रोक दिया गया है। तमाम बंदरगाहों पर लोकल कॉशनरी सिग्नल नंबर 3 नस्ब किया गया है और माहीगीरों से अगले अहकाम तक समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
2: ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वजन के जुमरे में सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेटलिफ्टर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए स्नैच में 85 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेलों में एक रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले

0: को तीसरे और आखिरी T20 मैच में 35 रन से हरा दिया। इस तरह भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इसलाहात के लिए आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है, जिसकी सरबराही टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकनी करेंगे। इम्तिहानात में बदउनवानी से निमटने के लिए कल पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मुल्क ने आज करगिल दिवस के मौके पर अपने फौजियों के बेमिसाल हौसले और जानों की कुर्बानी दिए जाने पर उन्हें सलाम पेश किया। वजीर आजम मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो करगिल जंग के शहीदों का एहतराम करें और महफूज, बासलाहियत और खुद मुख्तार भारत की तामीर के अज़्म को और पुख्ता करें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर की वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक संगीतकार की बातें। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है अनूठे संगीतकार सुधीर फड़के पर।

फड़के का नाम लेते ही स्मृति में ज्योति कलश छलकने लगता है और संगीत के पवित्र सुरों से मन आंगन आलोकित हो जाता है।

सुधीर फड़के ने बहुत फिल्में तो नहीं की हैं, पर मराठी सिने जगत और गैर फिल्मी संगीत जगत में सुधीर फड़के एक शीर्षस्थ संगीतकार रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का असर मुंबई के फिल्म जगत पर बड़ा गहरा पड़ा था। मराठी क्षेत्रीय सिनेमा पर भी इसका झटका देखा गया। स्टूडियोज बंद होने लगे, इसलिए वो कलाकार जो कभी स्टूडियो के नौकरी पेशा कर्मचारी होते थे मुसीबत में पड़ गए थे। मजबूर होकर उन सबको फ्रीलांसिंग यानी स्वतंत्र काम करना पड़ रहा था। उन दिनों फिल्म निर्माण से जुड़ी चीजों के दाम इस कदर बढ़ गए थे कि मराठी सिनेमा ठप्प पड़ गया था। 1945 में मराठी में कोई फिल्म नहीं बनी थी। सन 1946 में सिर्फ दो मराठी फिल्में आईं, रुक्मणी स्वयंवर और सासूवास। फिल्म रुक्मणी स्वयंवर से सुधीर फड़के का मराठी फिल्मों में पदार्पण हुआ।

सुधीर फड़के ने संगीत की शिक्षा कोल्हापुर में पाध्ये गुरुजी से पाई थी। उनकी आवाज गजब की थी, उतार चढ़ाव ऐसे कि शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता मुग्ध हो जाएं। गायक और संगीतकार दोनों ही रूपों में सुधीर फड़के ने अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाया।

आगे चलकर मराठी गीतकार माडगुलकर और निर्देशक राजा परांजपे और स्वयं गायक और संगीतकार सुधीर फड़के की एक त्रिमूर्ति बन गई, जिसने ऐसे कालजयी गीत दिए कि दुनिया चकित रह गई। आइए सुने ये गीत।

सुधीर फड़के ने 100 से भी ज्यादा मराठी फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता स्वयंवर, माया बाजार, पुढ़चा पाउस, जीवाचा सखा, लाखाची कोष्ट, इन मीन साढ़े तीन और सुवासिनी वगैरह।

हिंदी फिल्मों में सुधीर फड़के को लाने का श्रेय जाता है वी शांताराम को। उनकी 1946 में आई फिल्म गोकुल सुधीर फड़के की पहली हिंदी फिल्म थी। सन 1959 में आई गोकुल का चोर।

सुधीर फड़के ने किराना घराने के ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी से फिल्मों में गवाया और सिनेमा पारंपरिक किराना घराने की सुगंध से सुवासित हो उठा। सुधीर फड़के ने 1954 में राजा नेने की फिल्म पहली तारीख में भी संगीत दिया था। किशोरदा ने इस फिल्म में एक गाना गाया था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। आइए

0: मराठी में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसकी रचना मराठी कवि ग. दी. माडगुलकर ने की थी। संगीत और गायन स्वयं सुधीर फड़के का था।
1: तव मानसि आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व बोध शब्द कहि

सुधीर फड़के अपनी सीधी साधी और सरल धुनों के लिए याद किए जाते हैं। उनकी धुनें आपकी जुबान में रच बस जाती हैं। उनमें ना तो कोई कलाबाजी है और ना जरूरत से ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग।

हिंदी में सुधीर फड़के की कुछ गिनी चुनी फिल्में ही हैं। भाभी की चूड़ियां के अलावा उनकी एक फिल्म आई थी गोकुल का चोर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रस्तुति। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

दूर गगन की छाँव में, इस फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी की डाल्टनगंज केंद्र

आशा भोसले के गाए इसी गीत के साथ रजनीगंधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं।

11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। प्रातः 5:55 पर हम पुनः हाजिर होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद।